वही है ये भिक्षुक है। हाँ अच्छा, पर इतना तो यहाँ तक हमको पता है, अभी एक गीत के बाद में हम उकर और आगे में सुनेंगे कि व्यर्थ्या कैसे हो और आगे में कैसे इसका बढ़े।

0: जय भोले है तो गजबी कहानी, बहुत ही सुंदर सुप्रसिद्ध साई भजन जो सुना है, बड़ा ही मनमोहक रहा। बढ़ते हैं आगे की ओर, अकबर और बीरबल की कहानी की तरफ बढ़ते हैं और ब्राह्मण देवता की तरफ बढ़ते हैं। तो अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, मैं तो इससे आज पहली बार मिला हूँ। फिर बीरबल ने कहा, महाराज आप इसे अच्छी तरह से जानते हो, यह वही भिखारी ब्राह्मण हैं जिस पर आपने व्यंग कसकर कहा था कि ये है तुम्हारी ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता कहा जाता है। आज आप स्वयं उसी ब्राह्मण के पैरों में शीश नवा कर आए हैं। अकबर के आश्चर्य की सीमा न रही, बीरबल से पूछा, लेकिन यह इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे? तो जब अकबर में देखा कि उस दिन तो भिखारी ब्राह्मण रहा और आज इतना बड़ा कि मुझे भी दर्शन करने का जाना पड़ा और वहाँ लाइन में खड़ा होना पड़ा, तो ये सब कैसन रहेला? तो अकबर बीरबल से पूछे आगे। तो बीरबल कहेला कि महाराज, वह मूल रूप से मैं ब्राह्मण ही है, परिस्थिति बस वह अपने धर्म की सच्चाई व शक्तियों से दूर था। वो कहा कि उधर रहा तो ब्राह्मण, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी हो गई कि वो उसका जो धर्म है उस पर ना उतर पाए पूरा, इसलिए वो थोड़ा दूर हो गए। पर धर्म के एक गायत्री मंत्र ने ब्राह्मण को साक्षात ब्रह्म बना दिया और कैसे बादशाह को चरणों में गिरने के लिए विवश कर दिया, यही ब्राह्मण अधीन मंत्रों का प्रभाव है। वो बोले कि देख लो, एक मंत्र ने ही इतना उसको महान बना दिया कि अकबर भी उसके चरणों में जाके गिर गया। तो यह नियम सभी ब्राह्मणों के समान रूप से लागू होता है, सभी ब्राह्मणों के लिए यही नियम लागू होता है, क्योंकि ब्राह्मण आसान और तप से दूर रहकर जी रहे हैं। ब्राह्मण के जो दशा है इस समय, वो अगर किसी की खराब है तो वो अपने तप से दूर रह रहे हैं, नहीं तो सब ब्राह्मण अच्छे से मोई से रह ला इधर, इसलिए पीड़ित हैं। वर्तमान में आवश्यकता है कि सभी ब्राह्मण पुनः अपने कर्म में जुड़े, अपने संस्कारों को जाने और माने। मूल ब्रह्म रूप में जो विलीन होने की क्षमता रखता है वही ब्राह्मण है। यदि ब्राह्मण अपने कर्म पथ पर दृढ़ता से चले तो देव शक्तियाँ उसका साथ चल पड़ती है। तो ब्राह्मण की ऐसी शक्ति है कि अगर वो अपने कर्म में चले तो देव शक्ति भी उसके साथ साथ चलती है। और इस प्रकार का जो अकबर को एहसास हुआ कि ब्राह्मण कितना महान है, तब जाके उसको हुआ।
1: तो राजेंद्र जी, इस पे जब देखा जाए कि सभी को अपना अपना और स्वाभाविक रूप से अपना अपना तरीका रहना चाहिए
0: जी,
1: तभी उसमें और तरक्की हो पाएगा।
0: हाँ,
1: और जो अपना तरीका से नहीं रहेंगे लोग, क्योंकि हर बार ये कार्यक्रम में रखते हुए रखते समय ये तो हमारे विशेषज्ञ लोग हम लोग के लिए सब खोज खोज कर रख देते हैं, पर हर बार ऐसा होता है कि लोग इस पे ऊंच नीच बड़े छोटे करने लगते हैं, पर इसमें महत्व ये है कि सभी को अपना स्वाभाविक रूप में और रहना और अपना रहन सहन करना, तो कोई प्रकार से और इसमें तकलीफ नहीं होने वाला। इस पे भी एक राजेंद्र जी, कभी हम लोगों ऐसे होते कि हम लोगों अपना मातृभाषा जो हिंदी है उसे तो हम कोशिश करते रहते हैं सीखने के, पर देखा जाए कि ये एक देश है जहाँ पर हम लोग के सिखाने के लिए कितने लोग तैयार हैं, और तैयार है सिखाने के लिए, पर हम सब इतना भीड़ भाड़ में जी रहे हैं और जीते जीते बस समय विपरीत हो जाता है, अब बूढ़ा हो जाते हैं, सीख नहीं पाए कभी काल के। और ऐसा है कि हम लोग के लिए इतना सो फिर मोखलक है इधर फॉर ऑन्स ऑम द लेरन, ऐसा है कि ना शांता जी?
2: एकदम से सहमत है।
1: इसमें एक है जैसे कि हमारे ICC होते हैं ना, तो हम लोग के लिए हिंदी का और संस्कृत का आदि सीखने के लिए जिसे इच्छा है तो सब चीज वहाँ मुफ्त में, और न सिर्फ वहाँ पर भी कितने और ब्यूर्थ हाउस और भी स्थान हैं जहाँ पर हम सब के लिए लोग तैयार रहते हैं सिखाने के लिए। तो इसमें जब देखा जाए कि जो आज का विशेष और विषय रखा गया है कि ब्राह्मण का महत्व, तो हमारे पुरुषोत्तर में एक मंत्र होता है ना कि वो मंत्र से हमें इस बात को ज्ञान होता है कि हमारे जो शरीर को अंग है ना, तो उसमें कहाँ और कहाँ कौन बसा हुआ है। जैसे कि ब्रह्मनश्य मुखमा सिद्ध बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य यद्वस्य पाद्भ्यम सुद्रो अजायत। तो इसमें हमारे शरीर के अंग में, हमारे शरीर में सब कुछ बसा हुआ
2: है,
1: सब कुछ बसा हुआ है। और मैं देख रहा हूँ राजेंद्र जी, इस समय आप जोर तोर से गाना का तैयारी में भिड़े हुए हैं। शांता जी,
3: पर अपने राह से आप भटक गए, आप कुछ और कह रहे थे।
1: राह से भटकना तो लाइव प्रोग्राम में तो ऐसे हो ही जाता है। नहीं, बस वही वृतांत के बारे में रहा शांता जी, कि हम सब इसे कोशिश करें पढ़ने के लिखने के, और ताकि हम सब अपने जो कभी उल्टा और ऊंच नीच बना देते हैं इस पे ध्यान दे सकें। राजेंद्र जी, अगला गीत जो हमारे पिटारा से निकाला गया है, कौन सा गीत है?
0: और पिटारा से निकला हुआ गीत जो है, एक ज्योति बहुत सुहानी।
1: तो ज्योति बहुत सुहानी, और हमारे कार्यक्रम के नाम है
0: ज्योति का प्रकाश।
1: तो लक्ष्य यही रहता है कि हमारे जो जीवन के ज्योति जो जल रहा है, इसमें थोड़ा और प्रकाश आ सके।
0: हाँ, यही लक्ष्य रहा है।
1: तो क्यों ना गीत को चला देते हैं।
0: जरूर।

0: जानी।
1: एक ज्योति है बहुत सुहानी, जिनसे शक्ति बहुत मिल जाए। तो संजय जी, आप शक्ति के बारे में कुछ चाहे बोले?
2: नहीं, शक्ति के नहीं, पर कुछ और चाहता हूं बोलने।
1: बोले, कह दे।
2: कह दूं कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सुख की ताला किसने लगाया है। तो राजेंद्र जी, यही बात हो जाता कि सुख को ताला किसने लगाया है। तो आज का विषय में तो हमारे विशेषज्ञों ने, मैंने सोचा था ये तो हो ही नहीं पाएगा आज, पर इसे तो हम लोग के तो रखना पड़ेगा। तो क्यों ना हम थोड़ा से इसके बारे में कि कपूर और सुखियों में है, क्या इसके बारे में हम सुना सकते हैं अपने सुनने वालों को कि नहीं?
1: जरूर, हाँ, कपूर सुर्खियों में है, इसके बारे में हमें लोगों को सुनाना चाहिए।
2: सुनाना ही पड़ेगा क्योंकि हम जैसे कि हमारे खोजी सेना है ना, तो उन्होंने हम सब के लिए सब कुछ खोज करके रख दिए। मेरे ख्याल से इसी कारण ये वृतांत भी इसी में रख दिए गए हैं।
1: जरूर।
2: तो दोस्तों, आप सुनते रहना और राजेंद्र जी हम सबको और उस ओर ले जा रहे हैं, तो सुना दीजिए राजेंद्र जी।
1: डॉक्टर भी कपूर इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। कल तक जिस कपूर के धुएं को पर्यावरण विधि ने प्रदूषित कहकर खारिज कर दिया था, आज वही धुआं संकट में प्राणवायु बन गया है।
2: कपूर?
1: हाँ, कपूर कैसे प्राणवायु बन गया है? प्राण का संकट जिसमें रहा प्राणवायु, कहे कि जिस धुआं को लोग कल तक प्रदूषण कहते थे, उसी धुआं को प्राण की वायु मतलब अच्छा मानने लगे। तो कैसे मानने लगे, इस पे विचार विषय है। एक समय था जब प्रत्येक घरों में सुबह शाम कपूर की आरती गाई जाती थी। संपूर्ण घर में कोने कोने में कपूर का धुआं किया जाता था। तत्पश्चात घर के सभी सदस्यों को कपूर की आरती दी जाती थी, जिसमें जलती लौ का धुआं दोनों हाथों से लेकर चेहरे से लेकर सीने तक हथेलियां फेरी जाती थी।
2: ऐसा?
1: हाँ,
2: पहले
1: किंतु
2: राजेंद्र जी, ऐसा अब क्यों नहीं होता?
1: अब क्यों नहीं होता, वही तो विषय है। वही क्यों होने वो लगेगा, उसी की बात चल रही।
2: वैज्ञानिक के माध्यम से अब
1: विज्ञान के माध्यम से लोग सब समझने अच्छे से समझ जाता है, तो वही विषय आगे का है। किंतु आधुनिकता मतलब अभी की जो बात है, अंधी दौड़ और चंद किताबें पढ़कर पाई डिग्रियां की आंखट घमंड में हम इतने चूर हो गए हैं कि इन्हें अंधविश्वास मान लिया। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम आरती हमें ढोंग और समय बर्बाद करने लगी। अब का जो किताब डिग्री डॉक्टर हो गए हैं, वो सोचते हैं कि ये सब बेकार की चीज़ें, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम को भी नहीं मानते हैं। तो इसी पे आगे का जो मेन विषय अब आने वाला है, वो इसी की बात कर रहे हैं। प्राणवायु कर्पूर आरती धुआं लगने लगी। खुद को वैज्ञानिक समझने वाले हमने ये नहीं जानते, को जानने की कोशिश भी न करी कि आखिर हवन कर्पूर रीति रिवाज हमारी जीवन शैली का हिस्सा क्यों थे।
2: पर राजेंद्र जी, ये लोग कहते थे कि कपूर से धुआं होता है वो घर काला होता है।
1: हाँ,
2: तो वो उसमें तो बात सही है।
1: हाँ,
2: कि थोड़ा काला होता था। वास्तव में ये उसमें कोई ऐसा चीज नहीं जो हमारे सेहत के लिए खराब है,
1: ऐसा कुछ नहीं। तो हमारे पूर्वज विज्ञान से भली भांति परिचित थे। सनातन स्वयं एक विज्ञान है, लेकिन उस वक्त कोई वैज्ञानिक शब्दावली तो थी नहीं, अतः उन्होंने विज्ञान को धर्म से जोड़कर दिनचर्या का अहम हिस्सा बना दिया। आज वैज्ञानिक प्रयोग कर मान रहे हैं, आज के वैज्ञानिकों ने प्रयोग कर माना है।
2: वैज्ञानिक माने तो
1: रिसर्चर।
2: हाँ, खलेरदन है।
1: खलेरदन कि जहाँ नित्य हवन होता है, वहाँ कोविड का खतरा सबसे कम है।
2: अरे राजेंद्र जी, थोड़ा से इस पे थोड़ा से ठहर जाओ, क्योंकि यहाँ से गीत चला देते हैं।
1: हाँ जरूर, एक पहले गीत,
2: क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ मन करता है कहने को।
1: हाँ जरूर।

0: साईं मार सके ना कोई, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है और अटल विश्वास है तो उसका कोई मार ना सके, कोई एक रोवा बिगाड़ ना सके।
1: ये तो बड़े बात कह दिया शांता जी,
0: बड़े बात नहीं है ये, सही बात
1: बहुत
0: है,
1: बहुत बढ़िया, सही बात, सही बात, बहुत मोई, बहुत।
0: और कहते हैं कि मानना ना, जानना नहीं, मानना चाहिए भगवान को,
1: सही बात,
0: जाना तो चाहिए पर मानना चाहिए।
1: और ये जरूर कहना चाहूंगा राजेंद्र जी कि जल, जो जल होता है ना, शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से और बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। तो हम अभी कपूर के बारे में कुछ हमारे विशेषज्ञ लोग जो हमारी खोजी सेना हैं हम सब के लिए रखे हुए हैं, तो क्यों ना हम अपने सुनने वालों को उसके बारे में सुना देते हैं कि कपूर का महत्व जो आज हमारे पास है उसके बारे में और जानकारी रखते हैं।
2: हाँ, आज वैज्ञानिक प्रयोग कर मान गए हैं कि जहाँ नित्य हवन होता है वहाँ कोविड का खतरा सबसे कम है।
1: कोविड का खतरा,
2: यानी कि कोरोना,
1: कोरोना का।
2: मात्र 3-4 दशक पूर्व तक प्रत्येक घरों में हवन होते थे, किंतु आधुनिकता का सर्वश्रेष्ठ और सनातन का पिछड़ा मानने की मानसिकता के चलते हमने सब कुछ भुला दिया। आधुनिकता का मतलब होता है कि आजकल के जमाना नया, नवा चले रहा सब यंगरा।
1: हाँ जी।
2: तो वो पिछले जैसे बूढ़ों ले गए, वो न माने ले कोई
1: नहीं।
2: तो
1: जैसे कि आज पहला, जैसे आज पहला वृतांत में हम सब रखे गए थे, पहला वृतांत में रखे गए थे कि बूढ़ा बूढ़ा नाना वाला ना, कोई मानता ही नहीं आ जाओ नाना को, पर काम किसने निकाला,
2: नाना ने।
1: हाँ, क्योंकि ऐसा बात सुन के सभी पिछड़ जाएंगे, क्योंकि नदी में कैसे कहाँ दूध बह सकता है ना। और बस कहने वाला बात था, और उन्हें समझने के लिए बस हमारे जो पुरखों हैं उन्हें, उनके हम सब, उनसे हम सबको बहुत सीखना है।
0: और ये भी जो राजेंद्र जी ने पढ़ के और बताए ना कि पुराना के सभ्यता जो है तो आप आज के दौर में वो सब नहीं मानते हैं,
1: जैसे समय नहीं लोग देश में है।
0: और जैसे ये कोरोना आ गए तो वही सभ्यता हमको आज प्रयोग करना पड़ेगा कि हाथ जोड़ के नमस्ते करो, हाथ जोड़ के प्रणाम करो, हाथ ना मिलाने के अब वो मिनहाई है ना
1: जी,
0: तो वो नमस्कार हाथ जोड़ के सभी को,
1: सही बात
0: तो वो भी सभ्यता पुराना के है और मानते नहीं थे लोग, और आज के दौर में वो भी। तो जैसे भी राजेंद्र जी कह रहे कि कपूर के उसका वायु
1: प्रयोग करने से कौन कौन सा और जा करके उसमें हमारे लिए कितना प्रयोग करने से हमारे लिए कितना लाभदायक है, सही बात आप कह रहे हैं।
2: तो इसका दोष भी हमने अपने बड़े बुजुर्गों पर मर दिया, यानी उन पे कह गए भी दोष है, किंतु आपके बड़े बुजुर्ग तो पढ़े लिखे नहीं थे।
1: तो राजेंद्र जी, इस ये टुकड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसे कम से कम आपको हमारे सरनामी,
2: इसके जो दोष रहिला उसका हाँ। बूढ़ो लोगों पे मर दिया जाए उन्होंने सोचा, लेकिन आपके लिए आपके बड़े बुजुर्ग तो बड़े बूढ़े लोग पढ़े लिखे नहीं थे उस समय, परंतु आप तो थे, वो न पढ़े लिखे थे तो आप तो थे, आपने क्यों नहीं रीति रिवाजों के पीछे छुपे विज्ञान की जानने की कोशिश की, जो हमारे रीति रिवाज चले आ रहे थे,
1: पर रीति रिवाज को
2: उसका विज्ञान क्या था,
1: विज्ञान के कैसे पाछे चलेंगे, कैसे खोज पाएंगे, कैसे जांच कर पाएंगे, तो उसके लिए तो कम से कम कुछ पढ़ना लिखना जरूरी है।
2: पुराने लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो भी वो विज्ञान था
1: उसके पास, था
2: तो वो विज्ञान हमें चाहे कंटिन्यू करे और उसको खोजे कि ऐसा क्यों है। तो जो आज के पढ़े लिखे लोग हैं वो उसी को खोज के अभी भी अपना विज्ञान बना रहे हैं। तो कहने वाले हम ये भूल गए कि विज्ञान बिना प्रमाण के किसी को विश्वास अंधविश्वास नहीं मानता, फिर आपने कैसे बिना प्रमाण के मात्र दुष्प्रचार में बहकर सर्वश्रेष्ठ सनातन परंपराओं को अंधविश्वास ठहरा दिया। कहे कि आपने कैसे बगैर प्रमाण के हमारा जो सनातन का विश्वास है उसको, उनकी परंपराओं को अंधविश्वास, मतलब आंखी बंद करके विश्वास करें अंधविश्वास।
1: हाँ जी।
2: तो कैसे विश्वास करें, तो ये चाहे हमें ढूंढे कि इसके पीछे क्या विज्ञान रहा। आज दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी के वक्त, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रहा दुनिया का उसके वक्त, मानवता पर संकट के वक्त, आधुनिक दुनिया पुनः सनातन की शरण में है, सनातन हो गए सब, दोबारा
1: सब हो गए,
2: सब हो गए।
1: जैसे शांता कह रहे थे कि हाथ जोड़ लो,
2: हाथ जोड़। तो हवन, कर्पूर, अजवाइन, हल्दी, हस्त प्रक्षालन, नमस्ते लड़ाई जीतने के मुख्य अस्त्र बन गए। हवन करे, कर्पूर से आरती करे, अजवाइन खाए पानी में उबाल के, हल्दी खाए, हाथ हस्त प्रक्षालन हाथ धोए और नमस्ते करे, ये चीज करे, नमस्ते करे, तो ये जो लड़ाई रहे कोरोना से जीतने की, इसी से जीत जा सके,
1: इसी से जीत जा सके। तो ये बात हो जाता है कि हमें कैसे उसे बच सकते हैं।
2: तो मजबूत, हाँ मजबूत
1: एक तरीका है।
2: तो मजबूत जड़ों वाला वृक्ष ही आंधी तूफान झंझावतों में टिक पाता है। जो कल तूफान आएगा, आंधी तूफान आएगी, हाँ। जिसके वृक्ष मजबूत रहे, जो वृक्ष मजबूत रहे, जिनका जड़ लंबा रहे, उनको कोई फर्क ना पड़े,
1: कोई फर्क।
2: लेकिन जो हल्का रहे उनको फर्क पड़े कल, देखना। अतः अपनी जड़ों सनातन से जुड़े रहिए, सनातन जो धर्म है उससे जुड़े रहिए, हम सबके लिए यही लड़ाई अवश्य जीतेंगे और इसी के बाद सब लोग जीत जा सके। तो क्यों ना हम आज अपना सूरीनाम, हमारा प्यारा देश।
1: राजेंद्र जी बस यही प्रतीक्षा था कि सूरीनाम, हमारा प्यारा देश, कम से कम सुना दो।
2: सुना देते हैं जरूर।

0: सूर्य नाम हमारा प्यारा देश, इससे मिलने को कोई इनकार नहीं। तो संजय जी, आपका सूर्य नाम इतना प्यारा देश है, तो आप कुछ बोले?
1: नहीं राजेंद्र जी, बोलूं क्या, पर इच्छा कर रहा हूं सूर्य नाम जाने को।
0: तो चलो,
1: और सूर्य नाम जाने को तो वहां पर आपको पता लिफोर्नो का है ना?
2: राजेंद्र
1: जी,
0: जी
1: लिफोर्नो आपको नहीं पता का?
0: लिफोर्नो हमने जाने लमन।
1: ये कार्यक्रम को सुनने वाले एक हमारे हर सप्ताह वो कार्यक्रम को सुनते हैं भाई सुग्रीम जी, जो कैक अर्थ और सरमक्का के रहने वाले।
2: अर्थ कैक जी, कैक अर्थ। हाँ, वहाँ पे गाड़ी वो नदी में गिर गया था ना उस समय पे, तो इसलिए वहाँ पे प्लस वन कैक अर्थ कैक धर दी,
1: ऐसे रख दिया।
2: हाँ,
1: तो यानी कि राजेंद्र जी अर्थ कैक के मतलब आपको भी नहीं पता क्या? ना,
0: ना हमने जान ला।
1: उसका मतलब ध्यान से देखना है। और ये कार्यक्रम जो हर सप्ताह वो श्रीमान जी ये कार्यक्रम को सुनते रहते हैं, और उसके लिए भी हम सब किस दिन एक गीत भी रखने वाले हैं कार्यक्रम में। पर जी समय पे ध्यान देना है, और समय के माध्यम से हम सब अब वो सीमा पे पहुंच गए हैं जहां पर हमें
0: पहुंचना चाहिए,
1: कहीं वो गीत को और रखना है।
0: जरूर,
1: तो चला देते हैं और फिर उसके बाद में देखा जाए कि कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा।
0: जरूर।

हाँ जी सुनने वालों, जैसे आपको पता है तो यहाँ पर समय भी हो गए हैं, तो समय से पहले तो मैं भी ये कहूँगी कि पापा के होने से बचपन खुशियों के साथ में होते हैं, कि पापा के होने से बचपन खुशियों साथ में होते हैं, होते हैं हर राह आसान, होते हैं हर राह आसान जब मेरे हाथ पापा के हाथ में होते हुए। सुनने वालों, आपको हम यहाँ से दिल से धन्यवाद कहती हूँ प्रोग्राम को सुनने के लिए। आपको शांता की प्यार भरे राम राम प्रणाम।

दूर है फिर भी दिल के करीब निशाना है तेरा, लागी छूटे ना अब तो सनम। जैसे ही ये गाना के बोल आते हैं, सब सुनने वाले यही समझते होंगे और समझ रहे होंगे कि हमारा जो समय है 2 घंटे का, वो यहाँ पे विराम लेने वाला होता है। और भावन हिंदुस्तान रेडियो के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा यानी राजेंद्र सिंह का नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली बार इसी समय कार्यक्रम को लेके ज्योति का प्रकाश। तब तक के लिए सबको

छोटे नहीं होती है। लोग जीना ही देरी से शुरू करती है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। मैं यहाँ से अपने विशेषज्ञों जैसे कि संजय शर्मा पहाड़गंज न्यू दिल्ली से, प्रवेश कालिया जो प्रधान बजरंगी सेना का है, और श्रीमती रत्ना जी जो दनहाख से है, हम सबके लिए कई मास खोज खोज कर रखते हैं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथी शांता खिमई, राजेंद्र सिंह और मैं हूँ आपका सेवक संजय। बस यही कहना चाहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक सच्चे दोस्त ने कहा कि मिलते रहेंगे तो जिंदगी रहेगा। सभी को नमस्कार।

और दोस्तों जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और आज फिर हम आ गए हैं कुछ पुराने गीतों की संगम बहार लेके। तो फरमाइश श्री मोहम्मद रफी का गाना है, रफी के गाने आपको हम आज कुछ सुनाएंगे। और ढल चुकी शाम, एक गम मुस्कुराने के

कुछ पुराने कुछ नए गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। हमारे यारों, हमारे दोस्तों, हम चलते हैं अगला गीत की ओर। हम हमसे मोहब्बत करके कुमार शानू साधना सरगम का ये गीत है।

और दोस्तों हम उनसे मोहब्बत करके और मोहब्बत करके अगर मोहब्बत हो जाते हैं तो क्या होते हैं हमारे यारो, क्या होता है उसके बाद हम और एक गीत की ओर बढ़ते हैं, वो है तेरी याद दिल से और भुला ना पाए। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता 1966 का, जिसमें मनोज कुमार, माला सिन्हा, हेलेन ने काम किए हैं।

और तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, जब किसी से नफरत हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं तो लोग उसके याद भुलाना चाहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और होगा मत कर इतना गुरूर, जो कभी कभी लोग कितनी गुरूर करते हैं हमारे दोस्तों। अलका याग्निक पंकज उदास की ओर हम चलते हैं, और आओ मिल्क सुना जाए, मूवी का नाम है आदमी खेलो।

दोस्तों मत कर इतना गुरूर। फिल्म के नाम है झनकालाल का यांगनी। पंकज उदास का गाया हुआ सॉन्ग है। इस फिल्म में रीना रॉय और गोविंदा ने काम किए हैं हमारे यारो। उसके बाद हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं। कुछ नए और कुछ पुराने गीतों के बहान प्रोग्राम हमारा चलेंगे। तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर कब लोग दिल में उतारते हैं, ये किसी से बेहद बहुत बेहद दिल से और उससे प्यार करते हैं। नैतिक गेल्ला था जी, परमाश्री मोहम्मद रफी का सुपर हिट सॉन्ग देवानंद मालधान सिन्हा का ये सॉन्ग है। आप सुनते रहो।

रूठ आई। और उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या है हमारे यारो, आज हम कुछ लवली सॉन्ग के मूड में हैं। और लवली सॉन्ग कब होता है, जब प्यार बढ़ जाता है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की ओर। अब भी या महिया, अब देखो भैया क्या है।

और आपकी आजानी से कभी कभी बहार हो जाता है और बहार के बाद में कभी कभी मार भी हो जाता है। ये तो प्यार में चलते हैं हमारे यारों, हमारे सुनने वालों, उसके बाद तो हम चलते हैं और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं, और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं। आओ मिलकर सुना जाए।

दोस्तों इसके बाद हम और आगे को अपनी प्यार भरी गीतों के बिहार जोन और प्रोग्राम लेकर चलेंगे

और जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, क्या आपको मालूम है? आपको पता है कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं हमारे यारो? तो जरूर हमसे आप बता देना। हम चलते हैं अलका की ओर, अलका याग्निक की ओर, और फिल्म का नाम है खल नायक। इट्स नॉट एन ओल्ड फिल्म एंड मार, इट इज अ हेल मोय नंबर। लात वे इफ दियो के gaan draaien voor de mensen die namelijk niet alleen oude nummers, maar ook nieuwe nummers horen. Het is niet helemaal nieuw, maar toch wel.

चक्की में होके सवार चली रे। फिल्म का नाम है खलनायक। खलनायक के बाद समझाते हैं, क्या आपको भी प्यार हो चुका है और अपने प्यारी को कहते हैं कि आज नहीं कल नहीं लेकिन 100 साल पहले भी हमें तुझसे मोहब्बत थे। नाइटिंगेल लता जी, आशा परेख देवानंद का ये फिल्म है। सॉन्ग है पद्मा श्रीमान मित्र रवि और नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। बहुत लोग इस गीत को पसंद करते हैं, मुझे यही उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा लगेगी। कारण कि ये गीत सुनते सुनते सुनते सुनते लेकिन दिल कभी भरता ही नहीं है। आओ सुना जाए।

सौ साल पहले तो मुझे ये प्यार था, मालूम नहीं है कि सौ साल पहले हम क्या थे दोस्तों, वो तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक गीत आपको हम सुनाते हैं और वो है कभी कभी दिल से लग जा गले। नैतिकी लता जी फिल्म के नाम है, मूवी का नाम है वो कौन थी। वो कौन थी निकट होंड एंड फिनेस अस्तका। इस फिल्म में काम किया है मनोज कुमार, साधना, हेलन, प्रेम चोपड़ा। आओ चला जाए लग जा गले में। क्या है

फिरिए मुलाकात हो ना हो, नाइटिंगेल लता जी फिल्म का नाम वो कौन थी, और ये गीत जो है दोस्तों हम चलते हैं हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं है, किसी से जब प्यार करते हैं तो उसका जवाब तो कभी हो ना हो, हो ना सके। परमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है, मूवी के नाम है घराना 1961।

ए हुस्ने वाले तेरा जवाब नहीं है, और हुस्ने वाले तेरा जवाब के बाद हम जाते हैं, और वो भी एक ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग आज के मूड में है, वो है और ये है फिल्म का नाम है, मूवी का नाम है आपकी परिछाइयां। मैं निगाहें तेरी चेहरे से परमाश्री मोहम्मद रफी, एक रोमांटिक सॉन्ग है जिस फिल्म में धर्मेंद्र काम किया है। आओ सुना जाए ये क्या है भाई, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा गीत होगा।

जरूर दोस्तों। और मैं निगाहे तेरी चेहरे से परमान श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है। उसके बाद हम चलते हैं एक सुपर हिट ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग है और वो है माइती मुकेश नाइटिंगेल लता जी का एक फिल्म है। आपको ये गीत जरूर सुनना चाहिए।

0: नैनू में क्या आने वसी फिल्म के नाम है वारंट मेंशन, दैट इज इंग्लिश नाम, और अतन ही लमोया जोंग जो आपके हम लिए चला चुका है. तो ये बात है हमारे यारो दन खाव नाम लगनर अंदर मोये नंबर वीर फिल्म के नाम है हांगकांग 1962 के एक पास नोख नहीं खबर है मेंसे एंड स्टार ओ माय गॉड हसीनो को और क्यों दे दी तूने है. और इस फिल्म में जैसे देखा है तो ये फिल्म हांगकांग है, परमाचिन मोहम्मद रफी आशा जी का फिल्म है. ओम प्रकाश एक्टर किया है इस फिल्म में, काम किया है. आओ सुना जाए.
1: ओह माय गॉड.

मित्रों, आत्मविश्वास, भरोसा अपने आप पर और दृढ़ निश्चय, प्रेरणा और समर्पण के साथ अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। और यदि आपको विश्वास है कि सभी चीज़ों संभव है और आप इसके लिए प्रयास करते हैं तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आप लगभग कभी नहीं गिरेंगे या निराश होंगे।

साथियों, भरोसा एक रबर यानी एक इलास्टिक की तरह है जिसे दो लोग खींचते हैं। जब तक दोनों पकड़े रहते हैं तब तक वे खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनमें से एक चला जाता है तो दूसरे को भयानक दर्द होता है। इसलिए ये अति अधिक सलाह दी जाती है मित्रों कि किसी पर भी भरोसा ना करे या उससे कोई वादा ना करे, और करना है तो समझ बूझ कर जानो किस से वादा और किस पे भरोसा करते हैं। मित्रों, क्या आप कृपया इसे सोच समझ कर अपने जीवन में लागू करेंगे?

साथियों, जब हम अपने चारों ओर निरंतर अशांति और प्रजातीय घृणा देखते हैं तो शांति के बारे में बात करना भी व्यर्थ लगता है। और ये संतोष की स्थिति है, वे हमें शांति का एक निजी स्रोत खोजने के लिए मजबूर करता है, ताकि हम इससे शांति पाकर हमेशा शांति से रह सकें। फूलों को देखो मित्रों, वो भी लगातार परेशान परिस्थितियों में रहते हैं। उन्हें इस भौतिक संसार का प्रदूषण अपने साथ ले जाना पड़ता है, लेकिन वे जहां भी पाए जाते हैं, चाहे वे व्यस्त सड़क के किनारे, कांटों के बीच, दलदल के पास हो, या कभी कभी गोबर के ढेर पर भी, वो सुगंध के साथ हमेशा सुंदर खिलते रहते हैं और अपनी खुशबू फैलाते रहते हैं। तो मित्रों, फूलों का प्रयोग हर अवसर पर किया जाता है। फूल शांति के प्रतीक है, ये उसका स्वभाव है। और साथियों, हम भी फूलों की तरह है, हम भगवान के बगीचे के फूल हैं। हम भी दैनिक प्रसिद्धि के इस सांसारिक असीमित बगीचे में प्रदूषित और बहुत परेशान और अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ता है। और मित्रों, फूलों के रूप में हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी प्राकृतिक शांति की स्थिति में रहकर हर जगह अपनी खुशबू फैलाएं। मित्रों, कोशिश करते रहना। ऐ मेरे कृष्णा, मेरे अंतर्यामी, तुझसे अब क्या कहूँ मैं। सबों से दुखी और हार कर अब आकर तेरे पास बैठा हूँ।

मम माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद

सुनने वालों के सेवा में मैं हूं संजय और आपके साथ जुड़ गए हैं। सभी जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। सभी जिनके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है, नया परिवार जो आए हैं परिवार में, तो आप सभी को हार्दिक से बधाई दिया जाता है। सभी जो अपने काम की तैयारी के ओर बढ़ रहे, तो आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत किया जाता है। और ये भूलना मत कि महात्मा गांधी जी ने कौन सा संदेश रखा था कि हम ये ना सोचे कि हमारे देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, पर हम जरूर ये सोचे कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। सभी जो इस समय तैयारी कर रहे हैं स्कूल यानी कि अपना ज्ञान के ओर बढ़ने के लिए, तो माँ सरस्वती को आपको भूलना नहीं चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे न संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमम। जरूर माँ सरस्वती का ध्यान दे करके और निकलना।

और जो सफर पे आए हैं हमारे देश में, तो आपको एक फैन फकंसी तुखलेंस। हॉलैंड एक सुंदर देश है जहाँ पर लगभग 18 मिलियन व्यक्ति रहते हैं और यहाँ कुछ 23 मिलियन साइकिलों भी होते हैं। हर एक घर में साइकिल जरूर होते हैं। तो अगर आप हॉलैंड में आए हैं तो जरूर आप कुछ उसके बारे में यानी कि थोड़ा से शेयर करके जाना। अन इसी प्रकार से अन्य शहरों जैसे हीथोरन है जो बनाया गया है, जहां पर रास्ते नहीं पर पानी के माध्यम से लोग अपने कार्य काम करते हैं, तो वो ऐसा स्थानों को जरूर देख के जाना।

ढूंढना हम हिंदुओं के लिए जो कुछ 200,000 के तादाद में हॉलैंड में रहते हैं, तो तनहाख जैसा शहर में 3-4 मंदिरों है। अलमेर में मंदिर है और विष्णु मंदिर के नाम से, गोल्डन टेंपल के नाम से बनाया गया है एक इतना सुंदर मंदिर तनहाख में, जो कि जाकर के राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर और इसी प्रकार से और भी मंदिरों है। रोटरडाम शहर में शिव मंदिर, राम मंदिर और भी मंदिरों जो वहां पर उपस्थित है। इसी तरह से जाकर के अरनहेम में भी मंदिर आप पाएंगे। वहां हर रविवार को 2 से 5 बजे तक मंदिर लगाया जाता है। तनहाख में जो कि जाकर के राधे कृष्ण मंदिर जो 6 से और 8 बजे तक लगाया जाता है। तनहाख में खासलान देव मंदिर को, जहां हर रविवार को 2 बजे से कार्यक्रम 5 बजे तक लगता है। इसी प्रकार से अम्स्टरडाम शहर में द राधे कृष्ण मंदिर जो उस दौरप में है, और वो भी सुबह में हर रविवार को 11 बजे से 1 बजे तक हर रविवार को लगाया जाता है। सभी सेवकों जो मंदिर में सहयोग देते हैं,

इसी प्रकार से हॉलैंड में कितने स्थानों हो जो कि आप देख सकते हैं, हेर फिल बसिंस आर्दन इन नीदरलैंड, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए और आप सुन रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो जो इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में सुना जा सकता है।

कि दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। तो पहला भजन की ओर हम बढ़ेंगे। आपके साथ जुड़े हुए

गीत तेरे लिए राधा, ये सुंदर सा गीत का जो 2025 में गाए गए है स्वस्ति मेहुल के आवाज में, सुंदर सा गीत को और सुनते हुए हम जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, और मीना जी ने एक संदेश को और रखे हैं व्हाट्सएप पे, और संदेश इस तरह से है कि कभी सोचा है कि हाथ के लकीरों भी कितना अजीब है, कमबख्त मुट्ठी में है पर काबू में नहीं रहती है।

ईश्वर की शरण में निस्वार्थ जाइए, वो सब जानते हैं आपको क्या चाहिए।

सुनने वालों, ये जरूर कहना चाहूंगा कि भाग्य से जितना ही अधिक उम्मीद रखेंगे वे उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा।

आज एक ऐसा दिन बनाइए, अपना मित्र को ऐसा सोचिए कि रघुपति कीन ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भारत संभाई। कुछ ऐसा करके दिखाइए कि जैसे हनुमान जी का प्रेम श्री राम जी के साथ।

जाता भी है कि अनुशासन कठिन जरूर लगता है, पर आदत बन जाए तो सफलता की गारंटी देता है।

किसी संत ने बड़ा अच्छा से लिखा है कि 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए और 1,00,00,000 काम छोड़ करके भगवान का स्मरण करना चाहिए।

समय अवस्मरण, सात समय अवस्मरण दुनिया की सबसे अच्छे भेंट है। सुप्रभात कहते हुए मैं अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

काश गांधी के आवाज में ये सुंदर सा गीत कनक भवन के अंतर्गत में हम सुने। सुनने वालों, अगर आप राम मंदिर के दर्शन करने को जाए तो कनक भवन भूलना नहीं, क्योंकि उसका वृतांत तो बड़ा कठिन है। पुराने समय के बात है, अयोध्या में कोई ऐसा स्थान था जहां लोग बहुत कम जाया करते थे। मंदिर कनक भवन जो थे उसका कर्ता धर्ता श्री राम प्रसाद जी कोई प्रकार से, और जो आरती और जो चढ़ाव आता था मंदिर में उसी से सभी संतों और वहां का सेवकों का खाना पीना और होते थे। और ऐसा हुआ कि एक दिन मंदिर दर्शन करने को कोई नहीं आए, वहाँ कोई प्रकार से चढ़ाव नहीं मिला था, कोई आए ही नहीं तो चढ़ाव मिलेगा कैसे। पर सभी सेवकों और संतों जो मंदिर से है और उनका तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा, तो राम प्रसाद क्या कहते हैं अपने एक चेले से कि जो जहाँ से रोज का और राशन लाया जाता था, एक बनिया जिनका नाम पलटू बनिया था, और कहते हैं अपने चेलों से जाकर के वहाँ पलटू बनिया के पास इस बात को कहो कि आज कोई प्रकार से चढ़ाव नहीं मिला है, हमें कुछ राशन मिल जाए तो हम बाद में जो पैसा मिलेगा उन्हें भर देंगे। पर पलटू बनिया में ये था कि हम किसी को कर्ज नहीं देते, कर्जे पे नहीं देते हैं। राम प्रसाद जी के जो चेले थे बहुत गुजारिश किए, फिर भी पलटू बनिया ने कहा कि कर्ज में हम कुछ नहीं देते हैं। राम प्रसाद जी के चेलो वापस जा करके राम प्रसाद जी से ये संदेश सुनाते हैं कि पलटू बनिया ने कहे कि करस पे हम कुछ नहीं देते हैं, जो लेना है तो नगद ले लो। राम प्रसाद जी बस यही कहते हैं जो भगवान की इच्छा। और इसी प्रकार से उस दिन संतों और सेवकों बस जल पान करके और सो गए। पर कनक भवन में एक नियम था, सभी जो रात को राम जी के आगे बैठ करके और उन्हें भजन को सुनाते हैं, सभी संतों और सेवकों सो गए, पर राम प्रसाद जी रोज का कार्य अपने करने लगा, जा करके राम जी के पास बैठ करके और भजन करने लगा। और इसी प्रकार से जब अपना कार्य कर चुके तो रात को एक चादर उड़ा दिया जाता था, और भगवान को चादर उड़ा करके राम प्रसाद जी भी सोने को चले गए। रात व्यतीत होता है और कुछ रात के सुबह होने को आ रहे हैं। पलटू बनिया के दरवाजा पे ठोका जा रहा है। कहा जाता है कि पलटू बनिया दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। और इस बात को सुन करके पलटू बनिया के लगा कि कुछ बच्चे परेशान कर रहे हैं। मन में यही आशा लेकर के पलटू बनिया निकल रहे हैं कि अभी डांटूंगा ये बच्चों को, इतना रात हो गए हैं और अभी बाहर खेल रहे हैं। जैसे पलटू बनिया दरवाजा खोलते हैं तो वहां देखते हैं चार चार सुंदर सुंदर युवा यानी कि बच्चे दरवाजा पे खड़े हैं,
और कहते हैं दरवाजा खोल, और जैसे दरवाजा खोलते हैं पलटू बनिया सभी अंदर आ जाते हैं। बच्चे इतना सुंदर था पलटू बनिया, उसे देखते देखते मोहित हो गए। और बच्चे क्या कहते हैं पलटू बनिया से कि आज तुमने राशन राम प्रसाद जी के नहीं दिए हैं, देखो एक चादर जो चारों बच्चे ने ओढ़े थे। और वो पलटू बनिया के इशारा से दिखाते हैं कि देखो ये चादर में कुछ और पैसे बांधे हुए हैं, इसे लेकर के और आप जरूर से जरूर राशन राम प्रसाद जी के पास भेज दीजिए। पलटू बनिया देखते हैं चादर एक कोने में गांठ बना करके ढेर सारे पैसे बांधे हुए थे। पलटू बनिया देख करके हैरान हो गए और कहते इतना में तो हम साल भर राशन नहीं दे पाएंगे, ये तो बहुत सा पैसा है। पर वो बच्चे क्या कहते हैं, कहने के तात्पर्य ये है कि पलटू बनिया का दुकान बस एक छोटा का किराने के दुकान थे और उनमें। और तभी बच्चे कहते हैं कि आप इतना हैरान मत हो, आपको बस रोज थोड़ा सा जितना राम प्रसाद जी के इच्छा है उतना ही राशन बस दुकान पे भेजना है। इसी बात पे और बच्चों फिर चले गए। अब सुबह जब होते हैं तो पलटू बनिया अपना गाड़ी में सामान भर करके और आ करके राम प्रसाद जी के पास पहुंचते हैं। राम प्रसाद जी देखते हैं पलटू बनिया ढेर सारे सामान राशन आदि लेकर के पहुंचे और वहां जाकर के राम प्रसाद जी के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आपने रात में क्यों बच्चों को भेजे, हमें तो क्षमा कर दो, हमने गलती कर दिए हैं और आज से आपके लिए और रोज राशन पहुंचा दिया जाएगा। राम प्रसाद जी कुछ समझा नहीं, उन्होंने कहा मैं तो कोई बच्चों को नहीं भेजा था। पलटू बनिया ने तभी सारा कथा का वृतांत राम प्रसाद जी को और सुनाते हैं। राम प्रसाद जी ये कथा को सुन करके और समझ गए और जाते हैं और भगवान राम जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि मैं सदैव आपके सेवा में लगे हूँ, पर आज आपने ये संदेश हमें रखे कि आज हमें आप दर्शन नहीं दिए और ये पलटू बनिया का दर्शन दे करके भगवान के चरणों में गिर के रोने लगे। और होता है क्या, पलटू बनिया भी वहाँ जा कर के इस बात को समझ गए कि जो चार बच्चे के रूप थे वो स्वयं भगवान अपने भाइयों के साथ वहाँ जा कर के उपस्थित हुए थे। दोनों साथ मिल कर के और रोते रोते भगवान के चरणों में। और तभी राम प्रसाद जी जो बेहोश हो गए यानी कि मूर्छित हो गए और उनको स्वयं माँ सीता ने अपने ओर से उनके टीका लगाए और जा कर के राम प्रसाद जी बहुत प्रसन्न हुआ और आज तक कनक भवन का टीका बहुत मान्यवर कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ सीता जी का आशीर्वाद है। तो सुन वालों, अगर आप राम जी का दर्शन करने को जाए अयोध्या में तो ना सिर्फ राम जी का दर्शन पर कनक भवन, हनुमान भगड़ और इसी प्रकार से जमुना जी के आरती, भरत जी जो गुफा में और 14 बरस बैठ करके और तपस्या किया था, वो स्थान जहाँ पर अयोध्या में
हनुमान जी जब पहाड़ लेकर मौस जीवन जो लेकर के जा रहे थे लक्ष्मण जी के अंतर्गत, और भरत जी ने बाण मारे थे, सभी स्थानों को आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से सूर्य मंदिर जो बनाया गया है, जरूर देख के आना।

0: एक बार प्रेम से बोलिए त्रिसूर्य भगवान
1: की जय।
0: ये त्रिसूर्य भगवान की तपोभूमि है, ये पौराणिक स्थल है, मान्यता प्राप्त है। ये भूमि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये त्रिसूर्य पुण्य उस समय का है जिस समय त्रेता युग में राम जी का जन्म था। रामायण में लिखा हुआ है बालकांड में, मास दिवस का दिवस है वो मरम न जाना कोई, रवि समेत रक्त को निशा को निज हो। जिस समय त्रेता युग में त्रि अयोध्या जी में भगवान प्रभु राम जी का जन्म था, तो राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता रहे थे आकाश मार्ग से। त्रिसूर्य भगवान का रथ आ रहा था, त्रिसूर्य भगवान का रथ सभी देवताओं के रथ के आगे चल रहा था प्रकाश करते हुए, क्योंकि 33 कोटि देवता थे, प्रकाश की विशेष हो सकता थी। त्रिसूर्य भगवान ने रथ को आकाश मार्ग में रोक दिया, राम जी के जन्मोत्सव में खुश होकर के एक महीने तक रक्षा किया, क्योंकि भगवान प्रभु राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता थे, मनुष्यों को कोई गणना कितने मनुष्य थे। राम जन्म समय जाने ब्रह्मादि पधारे, धाये सुरचर विमान देव वधू करत गान, शीतल सुगंध पानी धवल नियूर धारे। भगवान राम संसार के जितने देवता थे सभी अयोध्यापुरी को आए हुए थे, देवियां मंगल गान को गाती थी और माँ कर्ज जी का जल दूध के सामान निर्मल उज्जवल धारा बहने लगी। वेद मंत्र शोध शोध कर पुराण सब संत और संत को भेद को बताते हैं, ज्योतिषी लोग विद्वान लोग वेदों में गणना करते हैं, कहते संसार के पालनहार का अवतार हो गया है, इसलिए सूर्य भगवान ने एक महीने का दिन कर दिया कि भगवान राम जी की 6 दिन की छठी हो जाए, 12 दिन की वरही हो जाए, एक महीने के शुद्धिकरण हो जाए जो हिंदू में नाम रखा जाता है। एक मास के एक दिन कर दिया, किसी को नहीं मालूम एक मास के एक दिन का। इधर कलयुग में अयोध्या के महाराजा दर्शन पैदा हुए, श्री सूर्यवंशी अयोध्या नरेश, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण हुआ। प्राचीन समय में जंगल था, इसी के जल से राजा का कुछ दूर हुआ, शिकार को नहीं किए चले गए स्थान दुर्गापुरी। रात्रि में सूर्य भगवान ने सपना दिया, राजन मेरा सूर्य कुंड धाम इसको खुदवाइए बनवाइए, तुम्हारा कल्याण होगा। महाराजा दर्शन ने फौड़ा चलाया तो 7 घोड़े के रथ पर सूर्य भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई, जो मंदिर में स्थापित के दर्शन होता है, इसी से इसको त्रिसूर्य कुंड कहा जाता है। शंकर जी के नीचे खजाना निकला, उसी खजाने से राजा ने श्री सूर्य कुंड का निर्माण कराया। अयोध्या का महापम देखा गया तो मुख्य रूप से अयोध्या 14 कोष की मानी जाती है। श्री अयोध्या में 360,589 मंदिर पाए, सभी मंदिरों की मिट्टी से राजा ने वो बेदी बनाई। नीचे आरती घाट जिस पर आरती होती घंटा बना हुआ है, 11,000 मन का यज्ञ करवा करके 360 का जल कुंड में डाला गया। इसका महात्म है, जो भी यात्रीगण यहाँ आते हैं त्रिसूर्य कुंड धाम को प्रणाम करते हैं, 7 बार जल को मस्तक पर लगाते हैं, त्रिसूर्य भगवान का दर्शन करते हैं, तो 360 यात्रा का फल मिलता है। दोनों कुंड अगल कुंड ईश्वर कुंड हनुमान कुंड सुग्रीव कुंड प्रजा कुंड दुर्गा कुंड काल कुंड सतीश कुंड ऋषि कुंड मणि कुंड श्याम कुंड वेद कुंड विद्या कुंड सीता कुंड अग्नि कुंड ईश्वर कुंड हनुमान कुंड सुग्रीव कुंड इतना लेकर के 360 का मतलब। तीर्थों में 2 स्थान पौराणिक हैं। सबसे प्रथम माँ सरयू, जो भगवान राम जी के जन्म के 6 लाख वर्ष पहले से बह रही है, श्री गुरुवर्षी जी महाराज की देन है, जो कि अयोध्या में सरयू जी विद्वान है। रामायण में दोनों का वर्णन है, बालकांड में सूर्य कुंड का वर्णन लिखा हुआ है, उत्तरकांड में माँ सरयू जी का वर्णन है, जो भगवान राम जी ने अपने मुखारविंदों से माँ श्री सरयू जी का वर्णन किया। श्री अवधपुरी समझ लेते हैं आप लोग ना, श्री अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तरे ऋषि सरयू बहे पावनी, जो मंजई सो विनय प्रयासा, मम समीप नरे पावहि वासा, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासे, मम धाम रापुरी सुख राशे। बोले मुनि सुनि प्रभु की वाणी, धन्य अवध जहि राम बखानी, अवध शरीक प्रिय नहीं और कोई, जाने यह प्रसंग कोई कोई, यद्यपि है वैकुंठ बखानी। अति सुंदर है क्योंकि मेरी अयोध्यापुरी के उत्तर दिशा में सलिला सरिता पावनी वशिष्ठ पुत्री नेत्र यात्री सरयू कुमारी की बहती कैक नाम है माँ सरयू जी का, जो कि पाप को जलाकर भस्म कर देती हैं। जो भी मनुष्य श्री सरयू जी में स्नान करते हैं, श्री सरयू जल को मस्तक पर लगाते हैं एवं सरयू जल को चढ़ा मूर्त लेते हैं, सो मनुष्य तपस्या के बिना ही मेरे हृदय में निवास करते हैं। मेरी अयोध्यापुरी में क्षण मात्र भी बात करने वाले प्राणी, सो मुझे मेरे लिए प्राणों के समान प्रिय हैं। मेरी अयोध्यापुरी सुखों का खजाना है, सुखों का भंडार है, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थों को प्रदान करने वाली है, धन धान्य संतान आदि को बढ़ाने वाली है। श्री गुरुवर्षी जी महाराज भगवान प्रभु राम जी के मुखारविंदों से वर्णन सुन करके कहते हैं, धन्य अयोध्यापुरी धन्य है, किसी स्वयं नारायण ने अपने मुखारविंदों से प्रसन्नता की है, अयोध्या साक्षात साकेत धाम है, वैकुंठपुरी के समान है, सभी तीर्थों का मस्तक है। 7 पुरियां हैं, सबसे ऊंचा स्थान श्री अयोध्यापुरी जी का। हाथ जोड़िए सभी लोग, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, बोलिए राम जी के नाम, भरत जी के नाम, लक्ष्मण जी के नाम, सप्तम जी के नाम, जानकी जी माता, 5 बजे होता भोग लगे, सूर्य भगवान आपके पुरी में यात्रा किया, अयोध्या यात्रा पूर्ण करना, शरीर को कल्याण करना, धर्मपुत्र लक्ष्मी को अपना नाम कह करके प्रणाम कर दिए।

कार्यक्रम का मोड़ कुछ और दिशा की ओर ले जाने को कोशिश करेंगे। हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद में हम आपके साथ फिर जुड़ जाएंगे।

सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत का मांग करने वाले श्रीमान रबीन जी जो फैखल से ये कार्यक्रम को सुनते हैं और इस बात को कहते हैं कि मैं हूं ना, ये तीन छोटे छोटे शब्दों से जुड़े हुए कि मैं हूं ना आपके द्वारा कहे गए ये तीन शब्द किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं। सुनने वालों, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये फाहून हिंदुस्तानी रेडियो है, इंटरनेट द्वारा आप दुनिया के हर एक प्रांत में सुन सकते हैं और अगर आपके पास भी कोई संदेश है

तो जरूर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम कोशिश रखेंगे कि आपके जो संदेश है हम यहाँ से सुना सके। हम अगला सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे और जैसे कि रबीन भाई जी ने कहा है कि ओल्ड इज गोल्ड, तो क्यों ना एक और पुराने गीत की ओर बढ़ते हैं।

ओल्ड इज गोल्ड कहा गया है ये सुंदर सुंदर गीतों को, और आज मैं उसी के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। भाई रामेश्वर जी ने संदेश को रखे है, और संदेश का बोल ये है कि सीमेंट, जिसे हम सीमेंटी कहते हैं, सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नंबर यानी कि द क्वालिटी होना जरूरी है, और जुड़े रहने के लिए सख्त होना भी जरूरी है। तो ये सुंदर सा संदेश है जो हमारे लिए और भेजे भाई रामेश्वर जी, धन्यवाद हो आपको। हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और गीत का बोल, गीत जो निकाला गया फिल्म एक फूल दो माली नेखती नेखन शस्त्र से, और जो बनाया गया, पिक्चराइज किया गया फिल्म,

ये सुंदर सा प्यार भरी गीत को हम सुने सुने वालों, ये भी कहा जाता है कि बस अपना प्यार में फंसे मत रहना, और ये भी सुन लेना कि माँ का प्रेम वह अमृत है जिसको पाने के लिए स्वयं परमात्मा भी तरसते हैं। तो क्यों ना एक वैसा गीत हम सुने।

ये सुंदर सा गीत जो सुनाया गया सभी माताओं के लिए, जो आज कितने माताएं हैं जो अकेले घर से और बैठे हुए, ना कोई बच्चे उनके पास, ना कोई रिश्तेदार उनके पास। प्रकृति ये हमें सिखाते हैं कि पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देता है, वे तो बस उसे उड़ने की कला सिखाते हैं। इसी तरह से हम मनुष्य को भी, हम लोगों को भी ऐसे, हमारा जब जन्म होता है तो हमारे माता पिता हमारे सेवा करते हैं, हमारे और पढ़ाते हैं लिखाते हैं, और एक ना एक दिन हम उड़ जाते हैं और बाकी बचते हैं घोंसला में कौन, कहीं माता है कहीं पिता है, और एक न एक दिन फिर वापसी हो जाता है। तो जिंदगी में ये जरूर हमें जानना चाहिए, जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाइए, रोज कुछ अच्छे याद रखे और कुछ बुरे भुला जाइए।

दोस्तों सुनने वालों, पा लेने का बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना ही है जिंदगी का सफ़र।

के सफर में गुजर जाते हैं वो पल, वो फिर कभी नहीं आते हैं, वो फिर कभी नहीं आते हैं। कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोगों दुकानों में नहीं नसीब से मिलते हैं।

दोस्तों, सुनने वालों, ये भी हम जाने कि सब्र में वो ताकत है जो सताने वाले को भी बुनियाद तक हिला देता है।

ईश्वर जी के ओर से ये संदेश भेजा गया कि उन्हीं यादों को सहेजिए जो आँखों में चमक पैदा करे, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन पैदा करे।

परमेश्वर जी का ये संदेश मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्हीं यादों को सहेजिए जो आंखों को चमक पैदा करे, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन पैदा करे।

सुनो लो, ईश्वर जी ने एक और संदेश को और रखे हैं, हम उसे भी आपके लिए और सुना देते हैं कि सात समय और समर्पण दुनिया का सबसे अच्छे भेंट है। तो ईश्वर जी आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा सुंदर सुंदर और संदेश को हमारे लिए भेजते हैं।

एक सुंदर सा दिन आपको होए और कहते हैं कि एक दिन कहानी बनकर रह जाएंगे हम सब, एक दिन कहानी बनकर रह जाएंगे हम सब, कोशिश रहे कि कहानी अच्छे हो।

बस यही है जीवन, रिश्तों को कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, बाद में सुखी पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। तो दोस्तों, इन बातों पे ध्यान देते हुए एक शुभ दिवस आपको प्रस्तुत किया जाता है और एक और सुंदर सा ओल्ड इस गोल्ड जो पुराने गीत के ओर हम प्लेयर पे चून करके रखते हैं।

जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, और ये हम जाने कि दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है। इसीलिए उसे खुश रखो, चाहे वो अपना हो या अपनों का।

जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, और अकेले होने से इस ज्ञान को प्राप्त हुआ कि अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से जीवन भर टिकते हैं।

जीवन में भी कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अनजाने होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, और ऐसा भी है कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं।

और क्यों ना कोई सराहना करे या निंदा, लाभ आपका ही है। कारण यह है कि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। तो क्यों ना हम एक सुंदर सा ओल्ड इज गोल्ड आज उसी मूड में हूँ।

मुसाफिर हो, ना घर हो ना ठिकाना। और दोस्तों यहाँ भी एक संदेश जो हमने इसमें जोड़ देते

सुनो लो, हम सभी मुसाफिर होते हैं और कहते हैं संबंध अगर हृदय से हो तो मन कभी नहीं भरता है।

दोस्तों सुनने वालों, ये गीत सुंदर सा गीत जो किशोर कुमार जी के आवाज़ में कि मुसाफिर है हम यारो, इसी पे कुछ और जोर दिया जाता है कि हम जब इस बात को जाने कि पिता कभी नहीं कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, और माँ ने कभी नहीं कहा कि मेरा तबीयत खराब है, इन्हीं दो झूठ की वजह से आपकी दुनिया सुंदर बनी हुई है। तो आज अपने समय निकाल करके क्यों ना अपने माँ को हम फोन करते हैं, अपने पिता को फोन करते हैं जो आज है इस दुनिया में, क्योंकि हम भी हैं मुसाफिर और एक ना एक दिन तो वापसी है हम सभी का।

और दोस्तों इस बात को हम भी जाने कि क्रोध और आंधी सामान्य है, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है।

जिन रिश्ते के लिए रोते हो वो तुम्हारे पूरे जलने तक भी नहीं रुकेंगे। संतुष्ट रहना सीखो। संतुष्ट रहना सीखो, जितना मिला है पर्याप्त है।

दोस्तों, सुनने वालों, मैं हूं आपका सेवक संजय और यही आशा रखता हूं कि जितना देर तक हम कुछ पुराने गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहे और आपको जरूर कुछ ना कुछ इसमें से अच्छा लगा होगा। शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए हमारे कोलेखा साथी जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, सभी को एक शुभ दिवस, नमस्कार, विश यू अ प्लेसेंट डे।

0: Pani Radio.
1: Dit is Vahon Hindustani Radio.
2: Aapko yahan se bahut pyar ke saath ek baar phir har baar kahungi swagat hai kyunki har baar kehne mein bahut acha lagta hai aur har baar ek naya baar hota hai. हर पल एक नया पल होता है तो यहाँ से आपको फिर से एक बार स्वागत है और इसी के साथ चलते हैं सुनने के लिए बड़े अच्छे लगते हो

अमित कुमार, किशोर दा के सुपुत्र साथ दे रहे हैं आशा भोसले जी। ये दोनों मिलकर ये सुंदर सा गीत हमको सुना दिए है आज के प्रोग्राम में। कहते हैं कि स्टॉप में दे, हाँ हाँ आप ठीक सुने कि स्टॉप में दे, ये सेल्फ फर खलाइकन मेट आंदरन, ये सेल्फ फर खलाइकन मेट आंदरन दैट कुंट यू वेल देंक एक स्टॉपन दर में, ये सेल्फ क्लाइन माकन हेलमाल नहीं होत, ये सेल्फ वर्गलाइकन मेट आंदरन, ये सेल्फ क्लाइन माकन स्टेट्स मार प्लीसन, ब्लाइव हांगन इन हेट वर्लेदन, ट्वाइफलन आन ये सेल्फ, दिट सैन गेन गोये एगेंस्कापन। Wat wel goed is, begin met dit en dat zijn. In jezelf geloven. Ja, in jezelf geloven. Voor jezelf kiezen. Je grenzen bewaken. In het nu leven. Zeer belangrijk. In het nu leven trots zijn. Echt trots zijn op hoe ver je bent gekomen. Jij kunt dit serieus, eerlijk. Ja, u hebt goed gehoord, kiezen voor uzelf. Dat wil niet zeggen dat u medemens moet gaan verwaarlozen en lelijk doen.

पल है यही कहीं अमित कुमार जी की आवाज में, और कहते हैं द बेस्ट मनीर ओम सेल्फ फर्ट्रोवंत विनन इस दिंगन दून वार ये बांग फॉर बेन। इट इस एन हेल ग्रोट उइटागिंग आस यू दैट आन कुन दो बेंट यू गवोन एन गवेल्डिग पर्सोन दा कुन यू दा विल सेगे दैट यू ग्रेंसेन हैब वरलेग। Dat is de beste manier om zelfvertrouwen te winnen, is dingen doen waar je bang voor bent. Succes!

0: साथियों के साथ कोरस के साथ अमित कुमार ने सुना दी कि ऊपर से देखो, नीचे से देखो, आगे से देखो, पीछे से देखो, बस देखो ही देखो, देखते ही रहना है, कहाँ चलना है, कहाँ गुजरना है, कैसे है। मेरी नजरों से खुद को देखो मेरे यारों, मेरी नजरों से खुद को देखो, फिर मेरे प्यार का एहसास तो होगा, फिर शायद ही तेरी जिंदगी में मुझसे ज्यादा कोई खास होगा, फिर शायद ही तेरी जिंदगी में मुझसे ज्यादा कोई खास होगा। तू छोड़ देगी ये जमाना, तू छोड़ देगी ये जमाना, और तेरा हर एक पल मेरा साथ होगा। Geloof in jezelf, mijn lieve mensen, lieve luisteraars, geloof in jezelf, want jij bent sterker dan je denkt. Geloof in jezelf, jij bent sterker dan je denkt. Je hebt alles in je om te bereiken wat je wil bereiken. Omdat je goed genoeg bent. Je bent goed genoeg en je kan het.
1: O Sahi, kis

0: सचमुच डैडी डैडी अमित कुमार अपना पापा को बुला रहे किशोर कुमार जी के बाप बेटा का ये सुंदर सा गीत यहाँ से सुने हम। किसी से इतना भी ना जोड़ना, किसी से इतना भी ना जोड़ना मेरे दोस्त कि खुद की परछाई खो जाए। उसकी खुशी में जीते जी अपना सुकून ही सो जाए। किसी से इतना भी ना जोड़ना कि खुद की परछाई खो जाए, और उसकी खुशी में जीते जी अपना सुकून ही सो जाए। लोग मिलते हैं पल भर के लिए, लोग मिलते हैं पल भर के लिए, और यादें लंबी छोड़ जाता है। जो दिल के करीब होता है अक्सर, हाँ मेरे दोस्त, कि जो दिल के करीब होता है अक्सर वही सबसे ज्यादा तोड़ जाता है।
1: गाओ बच्चों, तुम भी मेरे साथ गाओ।

0: वीकेंड।
1: हाँ, सबसे बड़ा रुपया, रुपया तो होना ही चाहिए जीवन में, उसे अपना आगे बढ़ाने के लिए, काम में लगाने के लिए, प्रयोग करने के लिए रुपया अवश्य जरूरी है। ये सुंदर सा गीत स्पेशल स्पेशल मांग किया गया है।

मेरा बालम इतना दूर कि उनसे नैना लड़ गए। उसके बाद आपके लिए है ये सुंदर सा गीत एक बार फिर यहाँ से फिल्म जादू से आपके लिए पेश करेंगे। फिल्म जादू ने खतिन एन फेफ तक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म लता जी के आवाज में।

और प्यार की हो गई जीत फिल्म जादू से यहाँ से हमने श्रवण की है और कह रहा है मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, हम मंजिल पे ना पहुंचे तो उसे रास्ता नहीं कहते, और दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते मेरे दोस्त। जिंदगी भर साथ निभाना उसे ही सफर हम सफर कहते हैं। कल कोई मुझे याद करे क्यों क्यों कोई मुझे याद करे, कल कोई मुझे याद करे क्यों कोई मुझे याद करे, मुसाफिर जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शायर।

यहाँ से हम चले दुनिया के मजा ले ले, दुनिया के मजा ले ले मेरे दोस्त, दुनिया के मजा ले ले। फिल्म का नाम बहार, इस बार है शमशाद बेगम जी की आवाज में।

सुरैया जी के आवाज में यहाँ से हमने सुने हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाते क्यों हो, दो पल की जिंदगी के दो पल की जिंदगी देकर दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है। और जो किस्मत में नहीं होते तो किस्मत उसे मिलाते क्यों है।

साथ बेगम जी की आवाज में स्पेशल स्पेशल स्पेशल प्रोग्राम बन गया है आपके लिए। यहाँ से जिंदगी का सच बस इतना है मेरे दोस्त, जो अपना हो वही सबसे ज्यादा रुलाता है। और जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना जिंदगी में ये बात कि कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। समझ में आए ना मेरा दोस्त? और कहते हैं कि जिंदगी और किस्मत दोनों खफा है, कि जिंदगी और किस्मत दोनों खफा है। जब बुरा वक्त चलता है तभी हम तन्हा हैं। बाकी हिम्मत ना हारो, तन्हा में आप तन्हा जब होते हैं तो आपको सोचने का वक्त भी मिलता है और वहीं से आप बढ़ते हैं, ग्रोथ होते हैं।

निशात बेगम, मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम सावन 1959 तक ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है। हाँ मेरे दोस्त, ऑल दोस गोल्स। इसमें आप सुनते होंगे कि यह साज और संगीत, गीत का धुन जो है, जो इंस्ट्रूमेंट इसमें बजाया गया है, कितना अलहदा है, कितना सुनहरा है, कितना अच्छा लगता है वे सुनने के लिए। तो यहाँ से इस बारे आपके लिए फिल्म आर पार से निकलती फिल्म फाइव तक के शमशाद बेगम जी की आवाज़ में

title song film Arpar 1954 ke picturize kiya film Shamshad Begum ji ki awaaz mein sune. Star cast isme hai Shama, Gurudat, Shashikala aur Kumkum ji. और कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ से हम बता दें आपको कि जिंदगी जिंदगी ना किसी से नाराज होकर जियो, जिंदगी में ना किसी से नाराज होकर जियो, ना किसी को नाराज करके जियो, जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी वाकई में पलक झपकते में यूं चला जाता है, पता ही नहीं चलता कि जिंदगी बहुत छोटी है, सबको खुश रखो और खुद भी खुश रहा कर, खुश होकर जियो।

1946 के ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है मेरे दोस्त। म्यूजिक डायरेक्टर इसका है नौशाद जी, डायरेक्टर है महमूद खान और गाने वाला है सुरेंद्र और नूर जहान।

पर सुन रहे थे तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। आज के बाद मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी हवस से हमने पेश किए हैं। तुझको पुकारे मेरा प्यार आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। नीलकमल है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी जी की आवाज में तुझको पुकारे मेरा प्यार आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, फ्रॉम द मूवी नील कमल से हमने पेश किए हैं। आइए सावन झूम के है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं माझी चल।

पर सुन रहे थे माझी चल फ्रॉम द मूवी आया सावन झूम के, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है कि एक बात तो सच है, अच्छे लोगों की अच्छाई कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे लोग उनसे कितना भी बुरा क्यों ना बोले, लेकिन उनका दिल साफ ही रहता है। ज़रा साहब देखे फ्रॉम द मूवी इम्तिहान, इम्तिहान से हम पेश करते हैं, किशोर डा आपको सुनाने वाले हैं रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।

इम्तिहान है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं रुक जाना नहीं तू कहीं हार के किशोरदा आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों एक बहुत सा सुंदर गजल हम पेश करने जा रहे हैं आप सभी के वास्ते चित्रा सिंह जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे चित्रा सिंह जी की आवाज में चरखा मेरा रंगला, प्यार ही प्यार है फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं द टाइटल।

हमें प्यार ही प्यार बेशुमार। शमी कपूर और माला सिन्हा जी काम किए हैं इस फिल्म में, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लता और मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी दिल तेरा दीवाना। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते ये सुंदर सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे मुझे कितना प्यार है तुमसे अपने ही दिल से पूछो तुम, फ्रॉम द मूवी दिल तेरा दीवाना। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं लता और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते। मोहम्मद रफ़ी और लता जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं और ये सुंदर सॉन्ग हम पेश करते हैं धीरज के तरफ से अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी धर्म पत्नी आरती जी के वास्ते, बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ। फ्रॉम द मूवी रखवाला से आप सुनेंगे दिल ने दिल से न जाने क्या कहा।

मोहम्मद रफी जी के साथ में लता जी आपको मिलकर सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी रखवाला से हमने पेश किए हैं दिल ने दिल से न जाने क्या कहा तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे और ये गीत को मांग किए थे धीरज अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी धर्म पत्नी आरती जी के वास्ते बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे द टाइटल आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी यकीन से हम पेश करते हैं सुनने वालों।

एक बहुत सा सुंदर गीत हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते जय शिव प्रसाद और रायन मनोरथ जी की आवाज़ में आपके आ जाने से।

अभी आप सुन रहे थे रायन मनोरथ और जॉयस शिव प्रसाद जी की आवाज में मैं से मीना से न साही से न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। सुनने वालों कल जबकि एक गीत निकला है और वो है रायन मनोरथ जी का, तो उन्होंने ये गीत गाए है यानी एक मैशअप है आप सभी के वास्ते। और चलिए मिलके सुनते हैं, जी हाँ सुनने वालों चलिए मिलकर सुनते हैं। इट्स विनोद लक्ष्मण यानी विनोद लक्ष्मण प्रोडक्शन अगेन, मैं प्यार का दीवाना।

अभी आप सुन रहे थे यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे। ये सॉन्ग एक मैशअप जो है जो लाया गया है आप सभी के वास्ते रायन मनोरथ जी की आवाज में। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करते हैं सुनने वालों, और एक बहुत सुंदर सॉन्ग हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते वारिका राम सुकूल और धीरज लाला राम जी की आवाज़ में, मेरे सनम तेरा खत मिला।

मेरे सनम तेरा खत मिला, खत में तूने खत लिखने को लिखा, भी आप सुन रहे थे धीरज लाला राम और वादिका राम सुकुल जी की आवाज में। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, चॉइस सुप्रसाद प्रोग्राम में आ रहे हैं।

जॉय शिव प्रसाद जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। एक मैशअप हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते वादिका राम सुकुल जी की आवाज में आप सुनेंगे।

वादिका राम सुकुल जी की आवाज़ में अभी आप ये मैशअप सुन रहे थे सुनने वालों। चलिए संदेश शिव दिन, सुजल उमराव नीलम माता दिन और सत्यम माता दिन

सुनने वालों, अभी आप सुन रहे थे संदेश दिन सुजल उमराव नीलम माता दिन और सत्यम माता दिन की आवाज में ये सॉन्ग हमने पेश किए हैं। एक और मैशअप हो जाए वादिका रामसुकुल जी की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे वादिका जी की आवाज़ में ये मैशअप। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और प्रोग्राम में आ रहे हैं विशाल हीरा जी। भैया ताके लड़की तो क्या होता है, आप खुद सुन लीजिएगा।

विशाल हीरा जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे भैया ताके लड़की तो लड़के शर्म आए। शिवम राजाराम आ रहे हैं प्रोग्राम में।

शिवम राजा राम जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों ये सुंदर सा मैशो। संदीप बदलू आ रहे हैं प्रोग्राम में और वो आपको क्या सुनाने वाले हैं। मुर्गी खोजे है टीता, चिकना खोजे है।

जीते हों किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज़ के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों का सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फावन हिंदुस्तानी रेडियो है www.fawan.fm चैनल पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीबन 12 का वक्त है, क्लॉक स्लॉट वाल फिर, और यह लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है बेनहा शहर से। बीमार लाचार्य तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है। यदि घर में कोई शादी हुआ, कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश। मुझसे पहले आप कार्यक्रम सुन रहे थे विजयंती जी के जरिए। विजयंती जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, बस्तीर की तरफ से, और मैं अपने तरफ से आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आपको एक शुभ दिन पेश हो। आहिस्ता घर जाइए, इत्मीनान से घर जाइए, और फिर स्टूडियो में मिलेंगे। बहरहाल आपको एक शुभ शाम कहा जा रहा है। बृहस्पतिवार का दिन है, धौंद्रदाग जैसे आपको पता है। करीबन 12 से 3 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ, और इस उम्मीद के साथ आप हमारा साथ देंगे। मैं आपका सेवक गंगा, जैसे मैंने कहा, रहूँगा करीबन 3 बजे शाम तक। मौसम प्यारा है, जहाँ तक मेरा ख्याल है 15-16 अफराद हो गया होगा। बहुत गर्मी भी नहीं, लेकिन बहुत ठंडा भी नहीं है। तो लीजिए, शाम के कार्यक्रम है, आप सुन रहे होंगे। अभी तो रिएक्शन नहीं मिला है, बहरहाल आप तत्पर हैं, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस देश में भी होंगे, सुबह होगा, दोपहर होगा, शाम होगा, रात्रि होगी, पता नहीं कहाँ होंगे, और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का, जो इस दिनांक शहर से प्रसारित हो रहा है। आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए सभी सुन लो श्रोताओं के लिए

वो एक बेचारा दिल होते हैं मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किया फॉर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आज दौंदर दरियन ट्विंत जुली है 23 जुलाई है। आप तत्पर हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये गीत, इस तरह से आ रहा है, देखते हैं। जी हाँ,

एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं फिल्म में है राही बदल गई है। इसी फिल्म से निकाल कर ये शानदार गीत हमने पेश की और आप उम्मीद है सुने होंगे और अवश्य अच्छा लगा होगा। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, और देखते हैं किशोर कुमार जी साथ हैं।

दो जासूस करें महसूस, रफ़ी साहब और माइती मुकेश मिलके ये गीत गाए हैं। आपको पता है रफ़ी साहब मुकेश जी बहुत गाने नहीं गाए हैं, कुल मिलाकर जहाँ तक जोड़ा गया है, मिले हैं लोग को, मुझे भी मिला है, तो द्रियंत तक गाने हैं, उसमें से ये एक था। टोटल मिलकर यानी कुल मिलाकर द्रियंत तक गाने रफ़ी साहब और मुकेश जी साथ मिलकर गाए हैं, और उन द्रियंत में से यानी 23 में से ये एक था। दो जासूस करे महसूस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है देखते हैं, हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, ये गीत लेकर है।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला मुकेश जी आपको सुनाई है मेरे प्यार में क्या वफा न थी। क्या बात है, ये गीत सुनकर रफ़ी साहब ने कहा अगर प्यार की बात है, वफा की बात है और बेवफा की बात है तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं कि जवानी और दीवानी की बात कर रहा है। लीजिए रफ़ी साहब की आवाज़ में ये जवानी दीवानी की बात। जवान तुम हो, जवान हम हैं।

शंकर जय किशन के साज पर रफ़ी साहब की आवाज़ में पेश हुआ जवान तुम हो जवान हम हैं, फिल्म दुनिया में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करते हैं, ये है, इसे चून अभी नहीं किए थे क्योंकि भी मुझे भी नहीं पता गीत कौन सा है। चलो मिलकर सुनते हैं, आप भी सुनिए और मैं भी सुनता हूँ।

ये कश्मीर है, ये कश्मीर है गीत के शब्दों से यही पता चलता है कि इसकी शूटिंग अवश्य हुई होगी कश्मीर में। बर्फीली यादों, बर्फीली पहाड़ों, गर्मी भी हो सकता है, पता नहीं। बहरहाल ये गीत हम आपको सुनाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जैसे मैंने कहा, बर्फीली पहाड़ों में कश्मीर के ये शूट किया हुआ होगा। बहरहाल चलो कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और पेश करते हैं ये गीत, क्या ख्याल है।

बांट लेंगे हम आधा आधा, लता जी और अपन की किशोर कुमार फिल्म आज़ाद में से निकाले हैं और हमने पेश की बस सिर्फ आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है ये रफ़ी साहब की, ये रफ़ी साहब का ये गीत है जिसमें लता जी भी साथ दी है और फिल्म है हंसते जख्म, इस तरह से

फिर हम हंस दिल से खम्मे से निकाले हैं लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये पेश किया गया, बस आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं और वो ये है, इस तरह से ये द्वैत है, उन्हीं कौमी के साँच पर।

0: रफ़ी साहब आयशा जी, ये हाँ दिल ने फिर याद का किया निकतीं सह सस्त खा, ये फिल्म सोनी कोमी के साज पर हमने पेश की ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। क्या ख्याल है कर जमाए आपको ये सुनाऊं, वाह क्या बात है।
1: सुंदर भी लगती हूं।

सुंदर भी लगती हूँ, अच्छी भी लगती हूँ, आ जा रे आ जा शर्म। आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, बहुत दिनों बाद शायद आप ये गीत सुनोगे, इस तरह से आ रहा है।

0: Solliciteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: www.vahonfm.nl पर आप ट्यून हैं, जो लोग ट्यून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। तो चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये ब्रोकन हार्ट सॉन्ग इस तरह से।

0: मैं चला जाऊंगा दो अश्क बहा लूं तो चलो, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, धमाकेदार गीत है। जी हाँ, चलो सुनते हैं क्या इसका नाम है, क्योंकि नाम बताने में झिझकता है।
1: सुनो, तुम्हारा असली नाम क्या है?
2: जी मेरा असली नाम जॉनी।
1: और नकली?
2: नकली भी जॉनी।
1: इसके अलावा भी कोई नाम है?
2: जी हाँ, जानी आपको ज्यादा पसंद है।

ओ मेरे राजा, ओ मेरी रानी, देर से आया लेकिन वादा तो निभाया। चलो देखते हैं, जी हाँ चलो देखते हैं, अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है, जरा देखूं मेरा बटन कहाँ गया भाई। अच्छा चलो सुनते हैं ये शानदार गीत।

लता जी और मन्ना दे जी शंकर जय किशन के साज पर हमने पेश की ये शानदार गीत आपके लिए आप शाम के कार्यक्रम में, जबकि आज दोंद्रदा द्रियन द्विंदक जुलाई है, द्रियन द्विंदक जुली है और आप तत्पर हैं। आप जहाँ भी होंगे आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं गीत। जी हाँ, चलिए आप ही के लिए शुभकामना, आप ही के लिए शुभकामना के साथ ये शानदार गीत

सामरी सलोनी कुमार सानू और अलकाया याग्निक जी मिल के आपको सुनाए ये गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलो देखते हैं, उतरख उतरख के रहने वाले बेया जी, उतरख के रहने वाले बेया जी ने ऐप की वो कार्यक्रम सुन रही है। बेया जी आपका हृदय से स्वागत है, और जो कि आपने बताया क्योंकि कितने लोग सुनते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, बहरहाल आपने बताया, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए उतरख के रहने वाले बेया जी के लिए ये शानदार गीत हम चलाते हैं। ये प्यारा गीत इस तरह से आ रहा है, जी हाँ ये प्यारा गीत इस तरह से आ रहा है।

महेंद्र कपूर जी और लता जी फिल्म नई रोशनी में से निकाले हैं, और ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। और ये गीत हमने पेश की उत्तराखंड के रहने वाली बेया जी के लिए। बेया जी, उम्मीद है गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, और आपको एक शुभ दिन पेश किया जा रहा है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। बेया जी के लिए थी ये उत्तराखंड के रहने वाली। कार्यक्रम जारी है, चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, और वो ये है क्या ख्याल है, हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाई ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो नेगेटिव सेशन सस्ते का ये फिल्म 1966 का सोनिक ओमी के साज पर फिल्म है दिल ने फिर याद किया और दिल ने फिर याद किया में से निकाल कर हमने पेश की शुभकामना के साथ सभी सुनने वालों श्रोताओं के लिए। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो है श्रीमती आनी सरजू मिसिर और ज्योति सरजू मिसिर, ये लोग फ्लिसिंगन के रहने वाले, सीला फ्लिसिंगन के रहने वाले हैं। शुभकामना के साथ चलिए शुभ दिन पेश करते हुए फ्लिसिंगन सीलान के रहने वाली श्रीमती आनी सरजू मिसिर और ज्योति सरजू मिसिर के लिए शुभकामना के साथ चलिए ये गीत हम चला रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

हमें क्या लेना हमें क्या लेना, ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तेरे होंठों के दो फूल प्यारे प्यारे हमने पेश की, आओ ये हमने पेश की। देखते हैं आनी सरज मिसिर और ज्योति सरज मिसिर के लिए शुभकामना के साथ, सेलान के रहने वाले हैं ये, सेलान फ्लिसिंगन के रहने वाले, शुभकामना के साथ आनी सरज मिसिर और ज्योति सरज मिसिर जी के लिए। उम्मीद है गीत आपको पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं, जी हाँ चलिए देखते हैं, खुश के रहने वाले हैं श्रीमती शकुंतला और राजन कुंदन पांडेय, वे लोग भी कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो शकुंतला और राजन कुंदन पांडेय के लिए शुभकामना के साथ चलिए ये गीत हम पेश कर रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

अच्छा जी, और फिजाए की आवाज़ में निकिती निघन सस्त 1969 का ये फिल्म आराधना में से निकाले हैं और हमने पेश की शुभकामना के साथ, जबकि खुश के रहने वाले श्रीमती शकुंतला और राजन सरजू मिश्री जी ने तार की है और बहुत अच्छा लगा सुनकर। और आप सबको एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। शकुंतला जी और राजन जी, आप दोनों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से शाम के कार्यक्रम है, आप भी हैं और मैं भी हूँ।

मेरा सनम सबसे प्यारा है, ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। और ये था आशा जी और कुमार सानू, फिल्म है दिल का क्या कसूर, दिल का क्या कसूर में से निकाले हैं ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर ये आपको सुना दूँ।

जाने कैसा है मेरा दीवाना, या क्या बात है। आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म है आंसू बन गए फूल, उसी में से निकाल कर हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए घड़ी पर देखूं तो 2 मिनट बाकी।

में भी होंगे, फाउन हिंदुस्तानी राजी पर आप चून है। सुबह हो या शाम होगा, रात्रि होगी, पता नहीं कौन सा मौसम है, कौन सा दिन है, आपके जगह आपके जहाँ पर हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए शुभकामना के साथ हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

शम्मा बुझने को चली, ये गीत हम निकाले हैं, देखते हैं। फिल्म मेरे ध्यान से निकल गया, शम्मा बुझने को चला। फिल्म गंगा की लहरें, हाँ गंगा की लहरें में से निकाले हैं रफ़ी साहब का ये गीत, हम आपको सुनाए हैं फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

संग मरमर से तराशा हुआ ये शोक बदन इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। सुर्ख होंठों में थिरकती है वो रंगीन शराब जिसको पी पी के बहक जाने को जी चाहता है, लेकिन इस हुस्न पे मर जाने को जी चाहता है। हमसे बेहतर है ये पाजेब जो इस पांव में है। रख ले कल के लिए ये दूसरी पाजेब दिल, कल इसी बज्म में फिर आने को जी चाहता है।

इस रेशमी पाजेब की झनकार की सदके लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये शानदार गीत पेश किया गया और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं चला रहा हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है, शाम के वक्त है और आप भी हैं और मैं भी हूँ।

0: लता जी और मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म छाया में से निकाले हैं निगेति इन शस्त्र का ये फिल्म है और सलील चौधरी के साथ पर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ इस तरह से आ रहा है।
1: आई है रे हमने कसम।

खाए रे हमने कसम हंस परदेसी। लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो एक गीत और हमने प्लेयर में रखे हैं लेकिन समय नहीं मिला कि ये गीत कौन सा है। हाँ ये तो पता है कि फिल्म बाबू का है, निकिता फैफन तख्त का है और आशा जी और किशोर कुमार जी ने गाए हैं और देखते हैं राजेश रोशन के साथ, ये सब पता है लेकिन गाना चलो मैं भी सुनता हूँ, उम्मीद है आप भी सुनोगे।

तो गीत के कहानी आपने सुन चुके हैं, हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

तेरी याद आ रही है, ये शानदार गीत चला ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ओ क्या बात है, चलो इस तरह से आ रहा है।

भीदा बदन जलने लगा। ये शानदार गीत चला शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए सुनते हैं और प्लेयर में हमने रखे हैं शैलेंद्र सिंह जी को।

फिल्म बॉबी में से शैलेंद्र जी, शैलेंद्र सिंह जी आपको सुनाए हैं। मैं शायर तो नहीं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, चलो रफ़ी साहब की आवाज़ में, बस इस तरह से।

दिल लुटा। ये गीत हमने पेश किया ओवर फार्म हिंदुस्तानी रेडियो गुलाम मोहम्मद के साज पर हम चलाए हैं, शुभकामना के साथ सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए। और फिल्म शमान निकली इन शशक का 1961 का ये गीत। चलिए जहाँ तक मैं, हाँ जी हाँ, अभी एक दो गीत और चला सकते हैं, जैसे कि ये गीत।

ये तोहफा तुम्हारा प्यार का, आशा जी फिल्म नई रोशनी में से निकाल कर ये शानदार गीत हम पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देखते हैं खुश के रहने वाले श्रीमान राजन कुंदन पांडेय। श्रीमान राजन कुंदन पांडेय का दिली ख्वाहिश है ये गीत सुनने का। तो लीजिए राजन जी, इतने दूर दराज से आपने ऐप किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक शुभ दिन पेश करते हुए, एक शुभ शाम पेश करते हुए राजन कुंदन पांडेय के लिए ये शानदार गीत तलत जी की आवाज़ में। देखते हैं वसंत देसाई के साज पर भरत व्यास की लिखी हुई गीत।

0: तिम तिम तिम लता जी आओ तलत साहब की आवाज़ में ये गीत हमने पेश की ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि खुश के रहने वाला श्रीमान राजन कुंदन पांडेई ने ये दिल इच्छा था ये गीत सुनने का। राजन जी उम्मीद गीत आपको अवश्य पसंद आया होगा, क्योंकि जिस गीत के जिक्र आपने की वही गीत हमने पेश की। राजन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ शकुंतला कुंदन पांडेई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ जो कार्यक्रम में भाग लिए हैं विद्रक के रहने वाले बेया जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद, और फ्री सिंगर सीनाथ के रहने वाले श्रीमान ज्योति सरजू मिश्र और आनी सरजू मिश्र जी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
1: साथ हो
0: यहाँ तक था यह कार्यक्रम जो मैंने पेश की, इस उम्मीद के साथ आप सबको पसंद आया होगा, और जो जो लोगों ने तार किया अभी हमने बताए हैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बाद आप सुनोगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद बाकी के कार्यक्रम हमारे सहयोगी सब आपके सेवा में रहेंगे। मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला सोमवार रविवार को गीत गजल के कार्यक्रम लेकर रात 8 से 10 बजे तक भैया यूसुफ के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आप सबको एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है, और सभी को धन्यवाद पेश किया जा रहा है।

और मूवी के नाम है साजन, और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

दर्दे करने को ये सॉन्ग दे। और हम चलते ही दोस्तों, आप लोग जानते ही यार नेघंत का सोन, और वो कुछ और थे और इन गोल तो और कुछ है दोस्तों। और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है, लेकिन हम चलते हैं यार नेघंत का जोंग, और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे। मोफिक राम है जाजन।

प्यार करते हैं, तुझको जन्म ताराया है लेवाड़े से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और है मैं मुकेश का ये सॉन्ग है।

मैं दीवाना मस्ताना, और ये बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आप सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको हम सुनाएंगे, मुकेश एवरग्रीन मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

और दिल भी हम आपको दिया है और आप भी अपना दिल उसी को दीजिए जिस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बाद जो करते हैं तो हम चलते हैं मौफी के नाम है भरोसा निकटी हो द्रियन जस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपरहिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

0: tip.
1: Zo, die kan wel een cool best prot.
2: Yes, dusto. To ye kuche. बीच बीच में कभी कभी अच्छे अच्छे गीत सुनाने के मूड में हम हो जाते हैं और जब गीत सुनाते हैं तो कभी कभी दिल भी रो देते हैं हमारे दोस्तों।

तारीफ करते हैं गुरुदत्त और आशा पारेख ने। भरोसा मूवी के नाम है निगेटिव द्री एंसेस्टर का, बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर है।

ऐ दिल मुझे भी आ बता दे तू किस पे आ गया है, अगर आपके दिल किसी पे आ गया है तो जरूर बता देना।

0: to enjoy ever.
1: और ओ रात के मुसाफिरी चंदन जरा बता दे मेरा कसूर क्या है और ये फैसला आप इस जरूर सुना दे. हम चलते हैं एक और राज कपूर नरगिस की ओर जो अपनी जमाना में भैया योशा बहुत मस्त था ना. तो ये सब गीत हम आप लोग को आज ओल्ड एंड गोल्ड सुनाएंगे और इस प्रोग्राम जो है तो हम और यूसेफ बना रहे हैं. तो दोस्तों और चलते हैं और आगे को इस गीत के ओर क्या हो गया क्या नहीं होगा तो आओ चला जाए. और वो है आजा सनम.

जरा मेरे हाथ थाम कर देखो, तुम जरा मेरे हाथ थाम कर तो देखो, जल जाएंगे लोग महफिल में चिरागों की तरह। तो ये सब कुछ शेर भी आज हम आप लोग को कितने दिन बाद सुनाते हैं। किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे, किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे कि दर्द की कीमत क्या है, कि दर्द की कीमत क्या है। हमने हंसते हुए कहा, पता नहीं कुछ अपने मुफ्त में दे गई। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और ये अगला गीत है ये मर्द बड़ा दिल जर्द नाटक लता जी परमाश्री मोहम्मद रफी का गया हुआ जोंग है, और मूवी के नाम है मिस मेरी।

ये मर्द बड़ी दिल जर्द भरी नच जे लता जी परमान श्री मोहम्मद रफी मिस मेरी का मूवी का नाम है। दोस्तों आज प्यार के मूड में हम आ गए हैं, कुछ शायरी और शायरी के मूड में भी हम हैं। तो हम चलते हैं, कहते हैं कि क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं कि यही कहते हैं कि दुनिया में मोहब्बत, दुनिया में मोहब्बत आज भी बरकरार है, दुनिया में मोहब्बत आज भी बरकरार है। क्योंकि क्योंकि एक तरफ प्यार आज भी वफादार है, एक तरफ प्यार भी आज वफादार है।

जिंदगी मिला ना वफा मिला, ना जिंदगी मिला ना वफा मिली, क्यों हर खुशी हमसे खफा मिली, झूठी मुस्कान लिए दर्द छुपाते रहे, सच्ची मोहब्बत की क्या खूब सजा मिली। तो सच्ची मोहब्बत की सजा तो कभी कभी मिल जाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और आज हम ओल्ड एंड गोल्ड की और यानी मूड में है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला लवली प्यार ओल्ड एंड गोल्ड जोंग की ओर, और ये है और नाइटी मुकेश राज कपूर इस फिल्म में काम किए हैं, और मौफी के नाम है श्रीमन सत्यवती। ये पुराना गीत है दोस्तों, तो आप लोग को चलो माइटी मुकेश की आवाज में।

और द हार्ट ऑफ द मिलियंस मुकेश, मूवी का नाम है श्रीमान सत्यवती, जिसमें राज कपूर ने काम किया है दोस्तों। और उसके बाद तो हम चलते हैं शायर और शायरी की मूड में तो हम है दोस्तों, लेकिन आपको हम क्या क्या सुनाएंगे क्या नहीं सुनाएंगे, कहते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक तरह नाम रहे जुबान पर, एक तरफ नाम रहे जुबान पर और जैसे कि चांद रहे आसमान पर। हा, ये तो खूब है दोस्तों, एक तरह नाम रहे जुबान पर जैसे चांद रहे आसमान पर, ये जिंदगी है दोस्तों। कौन सी बात है तुम्हें ऐसी जो मुझे तुम इतने अच्छे लगते हो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो है मूवी के नाम है तकदीर, मूवी के नाम है तकदीर और गीत के नाम है बोतल में क्या होता है, कभी शराब होता है लेकिन यहां कुछ और बात है। परमाश्री मोहम्मद रफीर का गीत है।

बोला बोतल में बंद जवानी पिले पिले दिल जाने।

0: दरवाजा खोलो।
1: राम बोलो राम बोलो राम बोलो
2: और राम बोलो। बोतल में बंद जवानी फरमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। तो कहते हैं मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है। दोस्तों मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, तुझे देखते ही तेरा ही हो गया है। तो ये कुछ और बात है ना हमारे यारो, एक तू ही है आदत मेरी, एक तू ही है आदत मेरी, इस दिल को है जरूरत तेरी। तो कुछ प्यार भरी गीत तो आपको हम सुनाते हैं। तो हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर और ये है परमाश्री मोहम्मद रफी आशा भोसले का सॉन्ग। मूवी के नाम है अदालत, अदालत ही अदालत, जिसमें जी प्रदीप इस गीत को गाया है नरगिस के साथ में। और हम चलते हैं ये सॉन्ग की ओर।

और जब दिन हसीने दिल हो जवां परमा श्री मोहम्मद रफी का जोंग है तो जलते ही दोस्तों प्यार के मूड में आ भी होए हम भी है तो कुछ प्यार के बातें करते हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलते हैं। और दोस्तों हम चलते हैं एक गीत के और है, टैक्सी स्टैंड 1958 का परमा श्री रफी का और आशा जी का ये जोंग है।

तो चले आओ, तो इसके बाद हम चलते हैं और गीत की ओर, और गीतों की ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आप लोग को और सुना। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो भी एक प्यार भरी गीत है, तो ये हम आपको सुनाते। किसी एक को लेना पड़े है, किसी एक को लेना पड़ा है, ऋषि को है भैया, यूं ही नहीं पूरा है, जाता है इक्ष्ट, किसी और को लेना है दोस्तों, दान इज्जत ऋषि को, दान मुझे वेल खुद ओपस। तो हम चलते हैं, यहां पर एक गीत है, जाने तेरी नजरों ने क्या कर दिया, और मोफी का नाम है, मोफी के नाम है घरस्ती, घरस्ती जटले, जी हाँ, परमाचरी परमाची मोहम्मद रफी और नाइजी जे लता जी का ये लवली सॉन्ग है।

0: तेरी जानी तेरी नजर ने क्या कर दिया है। और नतीजे लता फरमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं मेरी दुनिया और मेरी खुशियां बस तुमसे शुरू बस तुम्हीं से खत्म है। तो हम और एक गीत की ओर जाते हैं हमारे दोस्तों। और ये क्या है, ये क्या है, आप खुद ही सुनिए। और ये राजेश कुमार नगर का और मूवी के नाम तो यहां पर बताए गए हैं आओ फिर प्यार करें। इसे कुछ लिखा है दोस्तों और
1: आओ प्यार करो, आओ
0: प्यार करो यहां पर लिखा है। तो आओ सुना जाए।

और दोस्तों तुम अकेले तो कभी बाग में ना जाया करो। तो दोस्तों ये सब प्यार भरे गीतों का सॉन्ग आज हम आप लोग को

अभी साल से लेने की फुर्सत नहीं है और सोनू निगम अलकायंगनी का ये प्यार भरी लवली सॉन्ग के बाद हम चलते हैं उदित नारायण। उदित नारायण जिस बहुत खूबी से इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए ये क्या है।

0: ऐसा लग रहा है जैसा प्यार हुआ है। आज बृहस्पतिवार के दिवस है और फाइव यानी साढ़े चार बजने वाले है और दिन है 23 जुलाई 2026 32 मिनट ओवर 5 कहलाते हैं। स्टूडियो के कार्य के लिए भारत से तैयारी हो रहा है और अनुराधा जी और दूर शहर भारत में भी और राजेंद्र सिंह जी भी अपना तैयारियां कर रहा है और यहां मैं स्टूडियो में उपस्थित हो गया हूं। सूरीनाम से भी शायद कुछ संदेश आने वाला है पर देखेंगे समय रहेगा क्योंकि शांता जी भी निकल चुके हैं और धीरे धीरे स्टूडियो के ओर प्रस्थान देने वाले
1: हैं।
0: दोंदोदाग 23 जुलाई 2026 और जैसे बृहस्पतिवार है तो इस बात को आपको मालूम है कि आज शाम अभी 6 बजे रात्रि में कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश हम सब रखने वाले हैं। आज बड़ा विशेष और संदेश को रखा जाएगा

0: पर नालो मुझे बलमा। और ये सुंदर सा आवाज आप सुने सत्या त्रिवेणी चैतू के आवाज़ में। हम एक दूसरा सॉन्ग जो सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, क्योंकि अभी तो बस चैतू लिखा था, तो यहाँ हमारे सम्राट, म्यूजिक सम्राट जो कहा जाता है सूरीनाम का, श्री रामदेव चैतू जी के आवाज़ में हम एक गीत को चलाने का ये आशा रखता हूँ।
1: रही हैं सूरीनाम का सभी मशहूर टॉपर्स, और ये खास टॉपर का प्रोग्राम जो मैंने कहा शुरू है एक खास मशहूर गाने वाले से। ये शख्स माइक्रोफोन आने से पहले ये भी कहना मैं मुनाफी समझता हूं कि यहां देखो वहां देखो या रात की सपना देखो, यहां सुनो या वहां सुनो, हर एक महफिल में रौनक ही रौनक है। ट्रिनिडैड, हॉलैंड और सूरीनाम में गूंजता है वही मशहूर टॉपर जिसका नाम है उस्ताद रामदेव चैतू।
0: रशीद पीर खान रापर का।
2: रोज देखिला तो है सपना।

सुनने वालों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और कार्यक्रम जो यहाँ 2400 घंटा आपके घर तक, आप कहाँ भी हो, इंटरनेट द्वारा 188 देशों तक सुना जा सकता है। और अभी हम अपने मित्र श्रीमान जो लोंडवा का नाच करते रहते हैं, एक जो हमारे परंपरा से जब से हम लोग 150 साल पहले से सूरीनाम को गए, वहाँ पर जो हमारा विवाह संस्कार में और दुल्हा के नाच लेकर जाते थे और जा रहे हैं और आगे में भी जाते रहेंगे, उसके बारे में भाई राधे जी जो दुल्हा के नाच का और एक मशहूर कलाकार है, उससे अभी हम बात करने वाले हैं। पहले हम एक और गीत चलाते हैं श्रीमती सत्या त्रिवेणी चैतू के आवाज़ में।

0: सत्यावती, जो सत्या कहते हैं कि चैतू सत्या जी, जो अपने आवाज़ से और ये सुंदर सा गीत को हम सबको सुनाइए। दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं भाई राधे जी से और संपर्क करने को, और राधे भाई को देखते हैं कि उनसे कैसे टेलीफोन द्वारा हम आउटस्टैंडिंग में ला सकते हैं। हाय राधे जी,
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। हो नमस्कार, कैसे हो आप?
0: बस कहते हैं कि दाल चावल चल रहा है, मौसम ठीक ठाक है, और सबसे उम्दा बात यह है कि स्वास्थ्य अभी साथ दे रहा है तो चल रहा है, कैसे कहूँगे।
1: हाँ भाई, जब तलक सांस है ना, तब तलक तुम्हारे पास बहुत मोहलक है थे अपने जीवन के परिवर्तन में लावे खातिर।
0: और जब
1: आखिरी सांस तलक तुमको है राम नाम जपने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल आप कह रहे हो भाई राधे जी, और एक क्योंकि आप सुंदर सुंदर गीतों के साथ हम सबके साथ हरदम पठाते रहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना अभी एक सुंदर सा गीत जो आपसे हरदम हम लोग पाते रहते हैं अभी
1: जी
0: चलाया जाए। पर ये बताइए कि आजकल अब सीजन शादी के हो निकला है, भीड़ भाड़ कैसे है।
1: बहुत भीड़ भाड़ है भैया। जवानी के नशा सब पर चढ़ल है और फुल टाइम ब्याह होवत है, चाहे गरम चाहे नरम, चाहे बरसात चाहे फैफंदर तक खराद, बाकी उतने फैन विवाह संस्कार हो रहा है।
0: ये तो बहुत उम्दा बात है कि हमारे अभी तलक हम लोग जो जिस प्रकार से हम लोग के विवाह संस्कार होत रहा सन्नाम में, अभी तलक उनके और ले करके हमारे संस्कृति सभ्यता और समाज लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और जरूर कुछ छोटा मोटा चीज़ तो फरांदर करे पड़ जा है, पर इसमें देखा जाए कि जो सबसे मूल ये बात है ना, दुल्हा के नाच वाला, कोई विवाह अपना तय करे तब सबसे पहले वो भी तैयार करना पड़ता है ना भाई।
1: सही बात है भैया। देखो, मनोरंजन चाहिए। अब का है कि विवाह संस्कार 16 संस्कार में एक संस्कार भी है विवाह संस्कार ना। और जो दुल्हा है दुल्हन है, धरले दसों स्खैन बखेंत स्खैन और दीदा फुरहन, कारण कि अब वो दोनों गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं ना। और गृहस्थ आश्रम में जो दोनों बहुत शांति और आनंद में रहे तो स्वर्ग समान है, और जहाँ तू तू मैं मैं कर ले तो नरक हो जाई। तो इसको समझ के ये दुल्हा दुल्हन अपने के या वोट देवे है आजकल, तो इसे भी चाहिए निभावे के। और फिर लोग बहुत उम्मीद और आशा से ये विवाह संस्कार कर रहे हैं, और माए बाप कितना दिन से पैसा बिटोरत है। आप सब लोग जानत है कि 5,000 10,000 में विवाह संस्कार ना हुए है। सब मिलाए जुलाई के 5 तक 6 तक 200 यूरो हम सुनी ला हो जा है दोनों कैती के ना। तो बेटा बेटी जोन है सबके वही इसने चाहिए अपन घर गृहस्थी चलावे के, मत मैया बप्पा तोर बहुत परिश्रम करके तुहार विवाह संस्कार करिल है, और हम लोग के बलायल है मनोरंजन के वास्ते, रिचुअल के खातिर, और जितना अनेक प्रकार के चीज होवे है सब भइल है। अब जैसा आप बोलो है कि तनी मनी परिवर्तन है, हाँ भैया समय के धारा है, गंगा नदी हर में बहता रहता है, तो कुछ न कुछ देश अनुसार जरूर न जरूर कुछ परिवर्तन हो रहा है और आगे में भी होगा। जैसे 50 बरिस खलेद होता था, जैसे सेनाम में पहले होता था, ऐसे ना है। अब जैसे देखियो फिजी में, साउथ अफ्रीका में, त्रिनिदाद में, ग्वादलूप में सभी विवाह संस्कार करत है, मंत्र वही है, लेकिन खबरकर अवै सिंह जोन है मुताबिक अलग अलग है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि हम अपने राम सीता के फोर बेल्ट लेके हम लोग विवाह संस्कार करत है। और जितना गाना बजाना हुए है राम के विवाह या शिव विवाह गाथा के, हम लोग उनका नाच करत है और इनमें बहुत मनोरंजन है। और एक छोटो भी है ना, एक छोटो एक कथा है कि हम लोग संगीत के माध्यम में पब्लिक के हम लोग सुनाएला।
0: राधे भाई बड़ा इतना सुंदर बात आपने भी कहा, एक शब्द जिस जो मुझे छू गया कि राम और सीता के तरह विवाह, क्योंकि सब माता पिता यही चाहते हैं ना कि हमारा बेटी और बेटा का विवाह राम और सीता के तरह हो, है ना?
1: सही बात है।
0: और यही
1: दुल्हा दुल्हा जो सपरत है ना, आजकल तो शेरवानी भी चले लगल है, बाकी घर के आगे जो है दंतरा दिचुनेल है, मोर जोड़ा जामा कन्हावर ना, ये सब हमारे उस सजावट में हम लोग कैसे सजाएला ना कि अनपीत क्लास है, बाकी प्रभु राम के मूर्त में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये अब स्टूडियो में अभी तो कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश भी आने वाले हैं और शांता जी भी उपस्थित हो गए हैं, पर कहने के तात्पर्य ये बिल्कुल विष्णु जैसा और तैयारियां करना चाहिए। और शायद लगता है कि भाई हाँ चलो वो जोड़ा जामा यानी कि कैसे बोले आजकल के सलवार कमीज ले लेते हैं, पर वो चीज़ उसमें नहीं है जो जो सन्नाम में बनवाया जाता था। कैसे कहते हैं मोर और जोड़ा जामा, शांता जी कहते हैं जोड़ा जामा है, इसमें कुछ और मजा,
1: जोड़ा जामा पगड़ी
0: और जो बहाना जाता था क्रॉस के तरह ना
1: जी।
0: तो बड़ा ये बात मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक हॉलैंड में हुए है ऐसा और सूरीनाम में।
1: सही बात है।
0: पर कोई कोई लोग है शायद उस पे ध्यान नहीं देता होगा तो कहाँ, तो बस विवाह ही हो गया लक्ष्मण क्या कहते हैं राम और सीता के तरह, जैसे सच धज के और सीता का, और जो क्योंकि शादी से पहले लाल नहीं पहनते ना, शादी के रोज ही लाल पहनते लक्ष्मी के तरह।
1: सही बात।
0: और सही बात। जो अब आजकल तो कोई देखिए ब्लाउ पहन ले से, कोई देखिए ख्राइस पहन ले इस बोले या दिस मेन वेंस, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है?
1: आप दत नहीं लफाल का फराख ली इस्तेमाल ओकर वेंस से, लेकिन तो का चाहे तनी बोध रहे के ना कि तू का पहनले है वंत एल्क क्लोर है तुम पाल द फिबरासी ना। और जैसे प्रभु राम सूर्यवंशी था ओ दिन से तोर लेफन सोन धरले फॉर योर ट्वे मेस बलंगर रहे को होस्टक फाइन लेफ गृहस्थ आश्रम ना, ऊपर तो का चाहे उजाला ही उजाला से जाए के। और जब खरे इस वॉकिंग पे तू जाइए तो ओकर प्रणाम तू जा तो के चाहे जाने के का करे है।
0: बड़ा सुंदर रूप से ये संदेश आप बोले समझने वाला भी समझ गए होंगे। तो
1: कभी कभी दुल्हा लोग करिया पजामा पहने बेटा एक निकाह देने ओम देते स्वात खराख विल
0: बस तो खराख में जो है। पर इसमें भाई अब समय आ गया है न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ने के लिए, तो हम अभी आपसे फिर संपर्क करेंगे, न्यूज़ और कमर्शियल के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
1: धन्यवाद।

0: तब ओके तनी से जल वल दे दे भाई, उतना गर्म साइल है।
1: पैसन के जमाना भाई।

0: వక్రతుండా మహాకాయ సూర్యకోటి సంప్రభ నిర్విధినం కురుమే దేవా సర్వకార్యషు సర్వదా రుబ్రరూ మిల్నే కా మౌకా నహీ పా రహా హూ అథ శబ్దో సే అప్నో కో నమన్ కర్ లేతా హూ ప్రత్యేక వ్యక్తి కిసి నా కిసి రూప మే శ్రేష్ఠ హోతా హే ఇసిలియే ఆప్కీ శ్రేష్ఠతా కో హార్దిక్ సే నమస్కార్ కర్తా హూ फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से नमन करते हुए हम सब फिर एक बार उपस्थित हो गए हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। और ज्योति का प्रकाश में आज का संदेश में अनुराधा जी कुछ ज्ञान की बातें रखने वाले हैं और राजेंद्र जी जो भारत देश से भी जुड़ने वाले हैं और कुछ अच्छा संदेश, खास करके जो 60 साल के होने वाले हैं, शांता जो 60 साल के होने वाला है
1: जी।
0: संदेश उसी के बारे में है।
1: ओ, अच्छा।
0: तो अभी तो जब हम होंगे 60 साल के, वो गाना भी चलाना पड़ेगा क्योंकि उसमें काफी संदेश है। दोस्तों सुनने वालों, देखते हैं शांता जी आप अपना एंट्री लेते हैं।
1: कौन वाला है? हेलो, जरूर से सुनाए जी। मेरे प्यारे सुनने वालों, स्टूडियो में मैं भी उपस्थित हूँ, मैं यानी कि शांता जी भी उपस्थित है, तो स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार।
0: शांता जी प्यार भरी नमस्कार। पर शांता जी आपका आवाज मेरे ख्याल से ओके ही नहीं था। बे नहीं, ये वाला मेरे ख्याल से।
1: और अब हाँ, अब तो
0: आवाज ठीक है।
1: सिग्नल अब दिखा रहे हैं कि आवाज ठीक से जा रहा है। तो एक बार फिर यहाँ से स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार।
0: कहते हैं कि माइक्रोफोन ऑन करना
1: वो भी चाहिए ना।
0: हाँ,
1: ऑन है। जी हाँ जी, ना ना ना, हा हा हा, होता है

0: एक बार फिर यहाँ से आपको हम बहुत प्यार के साथ ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में आपको स्वागत कहती हूँ और स्वीकार कीजिए यहाँ से सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार।
1: Tunnel, de Oostbuis. De tunnel Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar. Operatie, de provincie legt.

0: सुनो लो, जुड़े हुए हैं भाई राधे जी। भाई राधे जी, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है और आपको और जो समय निकाल के हम लोग के साथ जुड़ गए हैं, नमन करता हूं।
1: सभी सुनने वालों के मेरा साधुवाद, नमस्कार, प्रणाम हो। और अभी जो हम प्रोग्राम में आपके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे, तो हम जरूर उम्मीद आशा करते हैं कि हम सब मिलकर के एक अनहेल फाइन आउटस्टैंडिंग हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग शुरू करत है ये प्रोग्राम पंडित जी के साथ, शांता जी के साथ और अनेक अनेक खास्ता जो है उनके साथ हम लोग मिलजुल के ये प्रोग्राम सजाएंगे
0: जरूर। और दोस्तों, अभी आपने भी सुन भी चुके हैं कि भाई राधे जी जो कि हम लोग का संदेश देने वाला कि जो विवाह संस्कार होता है ना शांता जी, विवाह संस्कार सभी बच्चों, सभी माताओं पिताओं यही इच्छा रखते हैं कि हमारे लड़के जो जाकर के सीता के तरह, राम के तरह और उनका विवाह हुए। और कहने के बात ये है भाई राधे जी कि अभी ये बात मैं थोड़ा हिसाब से कहना चाहता हूँ कि नसीब वाले के घर से बारात निकलते हैं और नसीब वाले के घर पर बारात आता है, इस पे आप क्या कहने वाले
1: हैं? सही बात है भैया, कर्म अनुसार सभी हो रहा है और फिर भी जब पैसा है तो बाराती है और जब पैसा ना है तो ससुर दामाद भी कोई ना कह लग सकत है ना। तो सभी मोह माया के खेल है और जहां तक लक्ष्मी और नारायण है के आशीर्वाद है तो विवाह संस्कार मंडप में होई, और जब उकर आशीर्वाद ना भैया तो चंद दिन के मेहमान है ना, ये दुल्हा दुल्हन एक साथ और तो दिखे उजा है हंसू एक वजह है सरमक्का, तो घर घर गृहस्थी ना चलेगा,
0: ये ठीक नहीं होता।
1: ये सब चीज भी मिले है देखे के ना, वात हेल यामर इस मार दत इस वेल दरे याली तेज फ्रॉम द दख।
0: और अभी ये बात भी हो रहा था भाई कि हम लोगों ने अब विष्णु का रंग जो है जिस प्रकार से मौर बनवा, क्योंकि अभी तक मौर बनाया जाता है ना,
1: सही बात है,
0: जो मौर बनाया जाता है और जोड़ा जामा बनाया जाता है और यानी कि लक्ष्मी के रूप का और साड़ी आदि पहनाया जाता है, इस जो रंग है इस पे आप क्या संदेश डालना चाहते हैं? जो जैसे कि विष्णु जी के हम लोग जब से जानीला कि पीला होते थे ना,
1: सही बात,
0: पीताम्बर कहा जाता है, और लक्ष्मी के और रूप जो क्या कहते हैं रंग लाल, तो उस पे हम लोग को परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हाँ अब दुकनिया में ई आला आयल है दित इज न्यू इन द मऊद, पर देखा जाए कि अभी तलक तो वो रंग का और कितने कितने परिवार में है जो उस पे बहुत ध्यान देता है।
1: सही बात भाई, देखो दुकानियन में बहुत आज रंग बिरंग के मिलत है, बात सही है, तो के दूसर फेशे पे है तो के किन के पहन लियो ना, लेकिन विवाह मंडप में प्रवेश करे खातिर तो है चाहे लाल,
0: चाहे लाल और
1: दुल्हन के वस्त्र
0: दुल्हा पीला
1: जो है वो लाल, वो शक्ति का स्वरूप है ना,
0: शक्ति का स्वरूप है
1: जी।
0: अब देखिए कि हम लोग जो कहीं जाएला सत्संग में तो हम लोग का टीका भी पीला कभी रहे, कभी लाल रहे है और कभी ख्राइस रहे, इसमें भी संदेश है ना।
1: सही बात है, और जैसे उपरेहित है कौन कौन मार्ग से आप है तो लाल टीका लगाएंगे, चंदन के लिए टीका लगाएंगे, गोपी चंदन लगाएंगे,
0: इस प्रकार से यानी कि सब चीज में कुछ ना कुछ संदेश है। और कहने के तात्पर्य यह है कि शादी विवाह जैसे कि राम और सीता के तरह होते आए हैं हम लोग लेकर के, जो भारत में हमारे पुरखों ने और 150 साल पहले लेकर गए थे, और अभी तक कितने कितने परिवार में होते आए। कभी अब देखा जाए कि गत दिनों हम एक जनेऊ संस्कार में थे, तो किसी आकर के और कहने लगे कि भाई अरे अभी तक जनेऊ संस्कार हुए है, उसको इस बात को आश्चर्य हो रहा था। पर कितने होता है, कितने परिवारों में ऐसा संस्कारों का कार्य आगे यानी कि होते रहते हैं। और ऐसे ही हम लोग यही आशा रखते हैं कि हम लोग के कार्यक्रम, हम लोग जो अपना संस्कारों का कार्य है इसी प्रकार से करते आगे बढ़ते चले जाए। हम लोग करेंगे तो हमारे बच्चों भी करेंगे, और हमारे बच्चों भी करेंगे तो उसके बच्चों भी करेंगे, और देखा जाए कि 4-5 पीढ़ी और देखत देखत पार हो गया ना श्रीनाम जो लेकर गए थे।
1: सही बात है भाई। देखो ये जनेऊ संस्कार जो आप कहे ना कि उसमें मारक देवत है हम लोग लड़कन के कि तू अब बच्चा ना बाटे, छोटा लड़का अब ये खात न्यू नीवर्तित अंदर होर अंदर फरंतोड़ लखन वन चोर्त आँख लख फोर बरेत ओप या तो संन्यास लियो या तो तू गृहस्थ बनियो ना न एक देख कैनस over het hoe en wat het leven is. Je spirituele kennis, je materiële kennis.
0: Ja, klopt. Bole jeneu sanskar ke jo hum log kabhi bole upnayan sanskar ya vedant sanskar hai, want je krijgt de mogelijkheid, de toegang tot de vedas.
1: Ja,
0: om verder te ontwikkelen.
1: सही बात है।
0: और इन बातों पे सभी को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब कुछ कार्यक्रम को सुनने वाले कुछ आजी है, कुछ दादी है, कुछ नानी है, तो इन बातों पे अपने बच्चों के साथ बात करो। और जब संस्कार करेंगे तो हाँ ये इस बात को डर नहीं रहेगा कि अरे हमारे ना रहने पे हमारा संस्कार नहीं हो पाएगा। और ज़्यादातर लोग डर के मारा कहते कि हाँ हमारा संस्कार ना हो पाए कोई बात ना है इस पे। जब आप करेंगे, आप अपने बच्चों के साथ इसके बारे में बात करेंगे, आप अपने क्लाइन केंद्र के बारे इसके बारे में बात करेंगे, तो आपका और ये अटल है कि आपका और कोई भी कार्य और आगे होते रहेंगे। भाई एक हम गीत चलाना चाहता हूँ जो आपके चुना हुआ है।
1: धन्यवाद।
0: तो हम रख देते हैं प्लेयर पे,
1: हम मिलजुल के सुने
0: और मिलजुल के सुनते हैं।

और जोर धरे घर नाही, पैसा के गठरी शीश धरी और मिरंदा कंतोरो पहुँचाई। ले लो पापा पैसा धर लो, यही तो मेरा कमाई। पैसा लेकर पापा मिरंदा नकली कागज दिहिन थमाई क्या।

1949 समय जो आया बेटा, ऐसा खेल रचाए। गवर्नमेंट जब कागज देखा, सबको दिया चिताए। कंतोरों में पैसा नहीं है कि अब रोवत घर के जाए। हाय दैया हम ऐसन जनती, लड़कन दे तो पढ़ाई क्या करना।

0: एक अवसर जो फिर से आए सबको देता मैं चिताए। भूल चूक के माफ तू करना रंजी देखो भजन बनाए। हाय दैया हम ऐसा जनती लड़कन देत पढ़ाई क्या करना था क्या करने लगे हमें यही अचंभा है। सुनो जी यही अचंभा है।
1: ये सुंदर सा गीत हम सब सुने एक सूरीनाम का कलाकार भाई राधे जी, और क्या ये कलाकार का नाम पता और संदेश इसके बारे में आप रखना चाहते हो?
2: भाई हम यहाँ ना सुन ले कौन संगीत आप वहां पर पेश किए हैं तो हम इसके बारे में कुछ ना बता सकते थे।
1: हम आपको बस हाँ कनाल पे हम आपके स्कागल किए पर आप नहीं सुन पाए। अच्छा ये सुंदर सा संदेश देखो सूरीनाम के हमारे कलाकारों जो है अभी तक कुछ कलाकारों है जो यानी कि हम लोग के परंपरा पुराने बातें के लिख करके सुंदर रूप से अपना कला को और प्रदर्शन करते हैं। शांता जी इस पे आपका क्या ख्याल है ऐसा सुंदर सुंदर संगीतों क्योंकि नित आलस सब पे अब पहले जैसे एलपी ही बनता है सिंगल बनता है वो नहीं हो पाता है ना प्लाटर साग बसताते ना है
3: हाय हाय
1: हाय
3: हाँ क्योंकि जैसे पहले प्लाटर स्पेलर था पहले का प्लाटर स्पेलर आज डिजिटल रूप में फिर से आ गया है
1: डिजिटल रूप में आ गया
3: जी
1: पहले के प्लाटर स्पेलर जो चीज बोला था जो ने द्रियन दर्तक और फैन फेर तक पे चला था
3: LP1 जो बड़कवा LP1 उस सब भी फिनो से प्लाटर स्पेलर ऑन आए ले में डिजिटल फॉर्म में
1: डिजिटल फॉर्म में
3: या मीडिया मार्केट में जो ऑफ की तो उन्होंने रिक्लाम मार का ऑडियो साके जहां सब बेचे है उस जहां जाइए तो देखिए वहां पे आएगा हां और ये गीत एकदम से अनोखा एकदम से भले हीरा है हीरा के बराबर है
1: हीरा के बराबर है तो और भाई कहां से निकालो ये सब सुंदर सुंदर गीतों आप भाई राधे जी
2: हाँ जी
1: आप ये सुंदर सुंदर गीतों कहाँ से निकाल निकाल करके लाते हो
2: कुछ कुछ हमारे प्राइवेट कलेक्शन में है कारण के संगीत से हम उठीला संगीत से सुतीला संगीत धले हमरे खत एक बहुत बड़ा पूजा है उसमें भी शब्द ब्रह्मा है संगीत के कारण हम लोग बहुत ज्ञान हासिल कर सकेला और इसे तो भी भाटा करेला और कुछ बांति के गाना भी है वो सब मनोरंजन के वास्ते है लेकिन भजन और स्तुति ये सब वगैरह वगैरह संगीत के माध्यम से भी मिल रहा है हम लोग के तो हम इसे बहुत लगाव रखते हैं और फरसामलिंग हमारे पास है कुछ कुछ
1: इस प्रकार से ओ भाई और क्योंकि अभी हम बड़ा सुंदर सुंदर संदेश की ओर बढ़ने वाले हैं अनुराधा जी जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं भारत से और कुछ ज्ञान के बातें लेकर के पर कुछ हमारे इतिहास और जो हम इस समय बात कर रहे हैं कि हाँ विवाह संस्कार कैसे करना चाहिए दुल्हा के नाच होना चाहिए इन बातों पर हम लोग ध्यान दें और अब देखा जाए कि कभी कभी हमारे जो जैसे कि आपने कहा भी अब जैसे कि पहले शायद विवाह और सस्ते में हो जाता था और अब कुछ उसका भी दादा का मोल का समय हो गया है पर क्या हम अपना जो परंपरा पे इन्वेस्टेयर करते हैं या हम दूसरे के दिखाने वाला चीज़ों पे इन्वेस्टेयर करने लगते हैं ताकि खूब हाँ महंगा हो जाए खूब ऐसा दिखाए कि हाँ हमने एक शादी में गए इस पे क्या ख्याल आपका
2: है कि बात ये है कि उसका अंतरात्मा में क्या नाचत है ना वो जो मांगे दिखावा करे भैया तो और शुक्रो ढहरो भैया अपने कॉफी में चाय में तो और मीठा हुई दुनिया के दिखावे खातिर ना लेकिन ये विवाह संस्कार जो है दैट इज सम हेल स्पिरिचुअल, इट्स जैसे आप अब हम लोग कहते हैं ना कि जनेऊ संस्कार में आप गए थे, तो जनेऊ संस्कार में जो हम लोग के धागा मिलत है वो बस्तात अहल का द्री देला ना, उस पर भी देख सके कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, और फिर उस पे ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है,
1: देव
2: ऋण है ना, तो वहां पर हम लोग के कुछ न कुछ कि देखो बेटा कि 16 संस्कार में तो जनेऊ संस्कार भइल है, अब तो के चाहे ज्ञान हासिल करे के दारना खाया आस गृहस्थ ऑफ ये केस फॉर संन्यास, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, आन खलीक है नहीं थे इवेंट है, तो इसमें हमारे देखे में दिखावा खतरनाक चाहिए करे के तो के जो चीज चाहिए करे को ही कर ना, want death is your भविष्य और that is neat and often to you for a weekend
1: नहीं, और कहने के तात्पर्य यह है भाई, अब आप और हम और अब ऐसे सभी जो ये और धर्म क्षेत्र पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कहीं रामलीला हुआ करवाल जाए है, तो कहीं पर संस्कारों में सेवा में लगल हुए हैं, कहीं पर देखो शांता जी इधर भजन करवाते हैं उधर भजन करवाते हैं, रेडियो में जितने यहाँ पर और हमारे कॉलेज है सब कहीं कहीं, रोसिता जी जो कहीं तो नेल खरवा रहा है, और जॉनी भाई जो इधरेन इस एक्टिव बेसक में अपन हिंदुस्तानी अपन हिंदुत्व के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए, या हम बस ऐसा भी कर सकते हैं कि घर पे बैठ के और टेलीविजन ले ले जो बटन दबाए तो मैं 300 कनाल से ज़्यादा होते हैं या और जदवे होते होंगे, और बस उसे देख करके अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, और कुछ अपना अपने शरीर से अपने के अपने संस्कार के लिए अपने सभ्यता के लिए अपने संस्कृति के लिए कुछ ना करें। तो इन बातों के लिए हम लोगों बैठे हुए रेडियो से और आपको ये संदेश कोशिश किया जाता है कि हम लोग कुछ ना कुछ आपके कानों तलक पहुंचा सके, और कानों तलक जब पहुंचेंगे तो ज़रूर उस पर आप थोड़ा से कुछ कैसे कहेंगे शांता जी उसे कि कुछ जरूर कुछ तो कुछ करेंगे, मेरे ख्याल से शांता जी सोच में पड़ गया भाई।
2: भाई जी देखो हमारे निगाह में जो लड़कन अब पैदा हुए है से हैव मेयर मोख लखेदा, हम लोग के दिमाग में दो दो गो हिंदू स्कूल है, शाखा है, हिंदी लेस है, तो देखिए कितना लड़कन अब हिंदी लेस जा है, हिंदू बासेस अंदरवेज फॉलो करे है, और इसके कारण का है कि हम लोग जो अपन धरोहर लैली है वत ओंस धल्ले रख खरात इस वत ओंस फंडामेंट इस ना दी वेलवा अन द फॉलखंद जेनरेशन दूर हेवन, और इस पे का है कि जो हम लोग के रख खरात जब चल गए ना तो हम लोग बिगाड़ के लौटा हो जाए खोई
1: दोस्तों बस बिल्कुल जैसे भाई कह रहे, देखा जाए भाई कि अब देखो जो हम लोग के यहाँ होलांत में नई खतीन द्रियन तख्त से जो रखा गया बनाया गया हिंदी परिषद नई दलांत, उसमें से मेयर दान 30,000 getuigschriften uitgeschreven, यानी कि हम लोग के जो अभी नहीं लिए हुए होंगे तो वो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि पछड़ गया, क्योंकि कभी देर नहीं हुआ है, पर अपने बच्चों को हिंदी ये संदेश हम लोग का भाषा कम से कम न रहे। हम ये बात पे विश्वास नहीं करते कि कोई कभी काल के करते हैं कि भाई वो लैफ है नई दलांत एन व दिन नई दलांत स्तप्रात ऐतरात मुझे अपना भाषा, पर अपना जो हिंदी है हिंदुस्तानी है उसे नहीं भूलना चाहिए भी। और जैसे कि आपने वर्णन किया कि हमारे हिंदू स्कूल जो है तो हिंदू स्कूल अपना मेहनत जोर तोर से करते हैं कि हमारे बच्चों जो कम से कम कुछ हिंदू के लेकर के और आगे बढ़ते हैं, ऐसा है कि नहीं?
2: सही बात है भाई. देखो एक दूसरा बात तो देखिए हुफेल योहस होल हियर एंड देन हाख ना सेन और हिंदुस्तानी के योहस होल ना है ये सब बकड़न लोग चलावे है काहे के बकड़ा लोग हम लोग के हिंदू धर्म के हिंदुस्तानी के योहस होल चलावे है वंस सीन भैया डेथ हैव द मेयर वार द फॉरन स्लेफन ना तो जो बकड़वा जो के इको बुन अख्त खरोंद ना है वो गैल है खोच हाच के लाइल है यहाँ क्लिनिक खोलेल है यू खास होल खोले है सब चीज खोले है और बकड़ा लोग सब जाए सवेरे सवेरे सूर्य प्रणाम करे है मेडिटासी करे है क्यूर्सिस देवे है लक्ष्मी अस्तकम करे है यहाँ पर दिनाख पे कितना इंस्टांसिस है जो खातिस ला सभी देवे है ना वारोम ओम यसेल्फ तक क्यों अंतविकल नीत अलेन अलेन ऑफ मटेरियल
1: मर मेंटल एंड फिजिक ओक वांट. अब देखा जाए यहाँ पर दतरा जो दवाई लिख दे भाई राधे जी तो जब दवाई जब कमती करने लगता है कमती करने पड़ता है दतरा को तो अपोतेक वाला भी गुस्सा आने लगता है कि भाई अरे ये कैसे हो गया अभी हम लोग संदेश रखने वाले हैं और शांता जी भी एक और गीत चला देते हैं. शांता जी आपके क्या ख्याल है? तो भाई राधे जी एक और गीत चला देते क्योंकि अभी अनुराधा जी जो हम लोग के साथ कनेक्ट होने वाले हैं आप सुनते रहना
2: जी भाई.

0: सुंदर सा गीत एक हमारे सूरीनामी कलाकार भाई राधे जी के कलेक्शन से निकाला गया। दोस्तों हम भाई राधे जी और भी संदेश रखने वाले हैं। राधे भाई और क्या सुनाने वाले हो आप?
1: भाई जी ये जो बैठक गाना हमारा है सरनाम के अंदर धरले हम लोग के खाते बहुत बड़ा दवाई है ना। जब काम से हम लोग घर आएला तब एक दो ही तीन गाना इसे सुन ले तब दिल में बहुत आनंद उठत है। और फिर भी आजकल तो देखा थे अपने YouTube पे यहाँ यहाँ वहाँ जहाँ सब जगह चाहे क्वाकू हो चाहे मिलन हो चाहे जहाँ बैठक गाना हम लोग के तो एकदम पनी अशोक जैसे बोले है दराई हुए है और लाइव परफॉर्मेंस हुए है अनेक अनेक कलाकार उत्पन्न हुए हैं। और हमारे बैठक गाना जो सिरनाम में हुआ था पहले और यहाँ तनी मनी परिवर्तन हो रहा है बाकी कोई बात ना है मनोरंजन है और सब कोई चीज वाले के चले है और बहुत आनंद है में है।
0: पर भाई इस पे मैं शायद विषय थोड़ा से मैं बदलना चाहता हूँ क्योंकि कुछ सुरनाम के गर्मी के ओर हम जाने वाले हैं। तो अब देखा जाए ये सुंदर सुंदर गीतों के साथ आप हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं सुरनाम के बारे में उसके सुरनाम में आप गाय गोरु पोसते थे?
1: हमारे पिताजी के पास तो गाय गोरु खसी बकरी सब रहा मुर्गी हम लोग के सब के रहा ना। हम लोग तो सिरनाम में शहर में ना रहते ही हम लोग पाछवानी का में रहते ही तो जमीन रहा दाना हच दा छोट मुख लखेद और घर में तो सवेरे सवेरे जो गाय के दूध दोहात हाथ तो हम लोग खौलाए के पी के तब हम लोग जाते स्कूल और भाजी भात दूध सहित कभी कभी दही कभी कभी साढ़ी भात हम लोग खाए के तब जाते स्कूल।
0: पर भाई अब मन में कुछ और उठे हैं। मुर्गी आपने कहा कितने थे पिता के घर पे बकरी भी थे और पर अब गत दिनों में एक अपना मित्र से बात कर रहे थे
1: जी
0: तो कुछ बातें हम भूल गए। कितने प्रकार के मुर्गी होते थे? अनामू मुर्गी होते थे पीरने की मुर्गी होते थे अरे
1: रासफोरू
0: हाँ और अरे घर वाला ज्यादा
1: जी जी
0: तो उन्होंने ये बात किया कि ये अनामू मुर्गी शायद मैं गलत कहते होंगे पर वो कैसा होते थे?
1: देखो उसके हम बहुत उकर बारे में ना बताए पावे कारण के हम 9 बरस के रहली तब सरनाम छोड़ के हम लोग नहीं इतनी फेमस इवन तक में हाँ। नहीं दलान कहली है लेकिन हम जानी ला कि करिया वाला रहा मुर्गी ब्रॉयन वाला रहा उज्जर वाला मुर्गी रहा ना बड़का छोटा सा रकम के रहा अंडा देवे वाला मुर्गी लखोरन रहा और हमारा जी तो मुर्गी पोसा था वो लखोरन तो अंडा ले जाता है शहर में बेचे के तो ऐसे ऐसे सब के अपन काम रहा और गांव में भी कहा था जो उनको छोड़ के।
0: अब शांता जी इस पे जरूर कुछ संदेश रखने वाले हैं क्योंकि हाँ और डोक्सी डोक्सा भी हुआ करते थे ना?
1: जी सही बात है।
0: और किस प्रकार की शांता आपके घर पे होते थे इन जानवरों?
2: हाँ
0: होते थे
2: हाँ रास मुर्गी हमारे बाप स्पेशल कीन के लाइक दरबाम धरत रहा। हाँ तो ऐसे हम लोग छोटा छोटा रहे तब यानी ये फ्रो और स्कूल हम लोग स्कूल भी खेले वही मुर्गी के दरबाम जाए के मुर्गी अनसंगे
0: आप मुर्गी के पढ़ाते थे?
2: हाँ अरे छोटा रहिए तब यानी ढेर चीज देखिए तब मंगिए भी वैसने ना दून करे तब रास मुर्गी के दरबा हम लोग बैठ जाइए तो रास मुर्गी के दरबा पार्त रहे और लखोरन जैसे राधे भाई बोले तो लखोरन के अपार्थ रहा और लखोरन में इस साल ब्रॉयन रहे
0: ऐसा होता
2: है।
0: हाँ और
2: डोक्सी अम्मा बाप एगो पेटी बनाए रहा तब जाए के खेत में से डेवका के खोता तोड़ के लावे यानी डेवका
0: हाँ, हाँ, हाँ।
2: तो कर डेवका खोतवा लाए के डोक्सी के पानी में जे धर दे तो डोक्सी के फरियारी रहता रहा
0: वो देवका के खोता से खूब पेट भरते थे।
2: हाँ तो पनिया में धरिए तो देवकों ने निकरे तो दुखसियन खूब खाए नाच नाच के।
0: ऐसा भाई राधे इस बातों को पता था आपको?
1: नहीं ये बात के हमके तो पता ना था, कारण के हम लोग के कहती देवका ना रहा
2: ना, ना, ना,
1: ना, हम लोग कुछ कपूरी रहता था तब सब मेतेन वाई हो जाता था, देवका उका के पेड़ में ना मौका मिला था होवे खातिर
2: ना ना। अरे 50 केतिया यानी लंबा खेत रहा था, हम बाप जे देखे तो जाए के स्पेशल उसके तूर के काट के लाए के डोक्सी के देवे तो तय दिलक रहा डोक्सी वहाँ। तो सब लड़का ना हम लोग तो छोट रही, हम लोग जाए स्कूल उल तो हमारा माई बोले ना ये सब चीज लड़का ना जाए करे, लड़कन के जाए पढ़े के
0: ऐसा
2: तोर की ढेर चीज ढेर के मुँह डोक्सी उक्सी डोक्सी ना रहा वहाँ। डोक्सी जब खोन छोड़ दिए रैन में रहे भी तो डोक्सी ढेर मोरसू करे तो
0: मोरसू करे तो
2: हाँ, कर एकदम से पचा पच रहे और जो पानी बरस जाता पलो।
0: एक चीज और मैंने सुना था कि कोनो फिंगा वाला फोर फिंगा की फेफी
2: फिंगा
0: हाँ वैसा भी होते थे ना। पर राधे भाई शायद इस बात को भी आपको पता होगा कि कुछ कबूतर भी लोग अपने घर पे पोसते थे ना, जब हम लोग जब तनी जवान होने लगली तब मंगली कबूतर अपने घर पे पोसे, पर घर वाले माता पिता उसे कहते थे कि हाँ ये कबूतर जो जा कर के घर के कुछ ले कर के उड़ जाते हैं, घर में आमदनी नहीं होता या कुछ कुछ पुराने बातें जो शायद अब ख्याल नहीं आ रहा है, पर अभी ये कार्यक्रम को सुनने वालों शायद जो जिसको इस बात को पता होगा कि कबूतर काहे खात सब बोला था कि घर में ना पोसल जाए। अब शांता तनी सोच में पड़ गए, पर ऐसे भी
2: राधे भाई साहिब जाना तो
1: देखो हमारे देखे में हाँ। कि जैसे चिराई भाईल है कबूतर भाईल है ये सबके खफांग खाप में धर के ना अच्छा है कि अरे गावल है गाना कि सोनवा पिंजरा में बंद भाईल है राम चिरे की जीरा उदास ना, यही पाए के गिरे है कि एक दूसर जीव के तो दुख ना पहुंचाओ एन एक डेंग दत मुरेल अख्त खरोंदार फानेस फान कबूतर के तो कहे के वन ओके चाहेंगा नतूर में रहे के ओके चाहेगा उड़े के चाहे पत्ता खाए के फल वल खाए के तो रात दिन बंद कर ले रही है तब उगर घाटी ठीक ना है।
0: और शायद मेरे ख्याल से भी कुछ और रहा अच्छा भाई राधे, क्योंकि कहते थे कि हाँ ये घर का आमदनी आदि लेकर उड़ जाएगा या कुछ मर भूल गया हूँ। इसी प्रकार से कुछ जानवरों को घर में नहीं पालते थे लोग, और कुछ जानवरों जो जानबूझ के शिकारी लोगों ने अपने घर में पालते थे जैसे पिंगो पकीरा आदि, तो वो भी कभी काल के ऐसा ऐसा हादसा भी हो गया है कहीं कहीं परिवार में कि वारसा अख्तराफ स्पैत फनहा था।
1: हम तो, जानी है कि लोग बेनालान से बंदर लायल है अपने घर में, वो कोई में पोसा था हर में खाना पानी देवा था और वो बंदर जब कांस पावे तो निकल के भाग जाए या तो काट लेवे एक नार के ना मैं ताल खफोल खफान दिन। तो एक जने के हम जानी उस सबके घर है बहुत बड़का रहन रहा तब हरद में बंदर के खाई देवा था, तो बंदर एक दाई एगो लड़का क्या हमोरिन काट दे लोकर बहना एक कोचे बहना निकल के रहा एन दत मुस्तवेर हेख तोड़ मैं तालस दरों पंदरान और आज दिन तलक ओकर अमूरी तनी टहरा है
0: हाँ। कोई कोई इस पे अब देखा जाए कि हम लोग उनका हरदम संदेश हमारे पुरखों ने रखते गए कि ये जानवर ये कुछ होते हैं पालने वाला जानवर ना, और कुछ होते हैं जो जैसे कि आप कह रहे थे कि चिड़िया आदि को और खुले आकाश में रहना है, और कुछ जंगली जानवर होते हैं, तो सबके अपना अपना स्थान होते हैं और कभी काल के और हादसा इसी प्रकार से हो ही जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है।
1: सही बात है।
0: क्यों ना हम एक और गीत की ओर बढ़ते हैं जो आपके चॉइस है और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए।
1: धन्यवाद।

0: जरा कह दो संवरिया से कि आया करे और ना जाया करे। संवरिया राधे राधे, आप कहाँ हो? संवरिया हाँ, संवरिया कह सकते हैं अपने अपना वेदर हेल्फ को, और संवरिया भी कह सकते हैं अपना इष्ट देव के, ना?
1: सही बात है।
0: हाँ तो
2: भाई राधे, हम सब यहाँ कार्यक्रम जो पहला भाग का समाप्ति
3: भाई राधे यहाँ कार्यक्रम जो हम सब पहला भाग के समाप्ति की ओर आकर पहुँचे हैं, आपको बहुत से धन्यवाद दिया जाता है। और यही आशा रखता हूँ कि इसी प्रकार से आप हम लोग के कार्यक्रम में सहयोग देते रहना। हम देख रहे हैं भारत से राजेंद्र सिंह जी इस समय हम लोग के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, तो हम उसे अंदर लाते हैं। और आपको बहुत से धन्यवाद दिया जाता है कि आप हम लोग के सहयोग
1: के बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम नमस्कार।
3: नमस्कार।

0: उमरिया घटती जाए रे। और जैसे कि सुनने वालों, अभी आप सुनने वाले हैं कि राजेंद्र सिंह जी, हमारे मास्टर जी, जो भारत से हम सबके साथ जुड़ गए हैं, और आज क्या संदेश रखने वाले हैं। तो मास्टर जी, आपको हार्दिक से स्वागत करते हुए, आप ही का कार्यक्रम हम सब बना रहे हैं यहाँ पर, और आज खास करके जो 60 साल के होने वाले हैं, उस अंतर्गत में हम सबको कुछ संदेश देने वाले हैं। सर्वप्रथम आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है मास्टर जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, भवन हिंदुस्तानी रेडियो को, श्रोताओं को, सबको मेरा नमस्कार। और जो ज्योति का प्रकाश है प्रोग्राम का, जो नाम हमारा है, उसका जो प्रकाश ज्ञान जो मिलता है, उसके लिए लोग सुनने के लिए उत्सुक बैठे रहते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, अभी जो आपने सुना है गाना उमरिया घटती जाए रे, तो जो उमरिया है वो घटती जाए कितना साल बाद, 60 साल के जब ऊपर हो जाते व्यक्ति तो ढलान पे आ जाता है एकदम। जैसे बचपन से 18 साल 20 साल गया तो चढ़ाव पे आया, फिर बीच की जो स्थिति रहती है 25 से 60 के बीच की, वो समान रहती है, बिल्कुल एक तरफ रहती है। 60 के बाद जैसे बचपन में चढ़ता है, बीच में रुकता है, और बुढ़ापे में घटता है, तो ढलान पे आ जाता है। इसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम ये है, जो नागरिक हैं 55 से ऊपर की, वो अवश्य इसमें ध्यान दें, और उनके लिए जो फायदा है, फायदेमंद है, वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। और सबने इसी उमरिया पे जाना है, हम लोगों ने भी जाना है, लेकिन जो अभी हो चुके इस उम्र पे, उनके लिए विशेष है। तो आप जानते हैं कि मन चाहे कितना ही जोशीला हो, पर 60 की उम्र पार होने पर यदि आप अपने आप को फुर्तीला और ताकतवर समझते हो तो ये गलत है। वास्तव में ढलती उम्र के साथ शरीर उतना ताकतवर और फुर्तीला नहीं रह जाता, आपका शरीर ढलान पर होता है, जिससे हड्डियां और जोड़ कमजोर हो जाते हैं। पर कभी कभी मन भ्रम बनाए रखता है कि ये काम तो मैं चुटकी में कर लूंगा, पर बहुत जल्दी सच्चाई सामने आ जाती है, मगर ये एक नुकसान के साथ। सीनियर सिटीजन होने पर जिन बातों का ध्यान रखा जाता है, ऐसी कुछ टिप्स मैं दे रहा हूं इस कार्यक्रम के द्वारा। धोखा तभी होता है जब मन सोचता है कि कर लूंगा, और शरीर करने से चूक जाता है, परंतु एक एक्सीडेंट और शारीरिक क्षति, ये क्षति फ्रैक्चर से लेकर हड्डी इंजुरी तक हो सकती है, यानी कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए जिन्हें भी हमेशा हड़बड़ी में काम करने की आदत हो, बेहतर होगा कि वे अपनी आदतें बदल डालें, भ्रम न पालें, सावधानी बरतें, क्योंकि अब आप पहले की तरह फुर्तीले नहीं हैं। छोटी सी चूक कभी बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। सुबह नींद खुलते ही तुरंत बिस्तर छोड़

0: क्योंकि आंखें में आंखें तो खुल जाती है मगर शरीर और नसों का रक्त प्रवाह पूर्ण चैतन्य अवस्था में नहीं हो पाता। पहले बिस्तर पर कुछ मिनट बैठे रहें और पूरी तरह चैतन्य हो लें। कोशिश करें कि बैठे बैठे ही स्लीपर चप्पलें पैर में डालें और खड़े न होने पर भी मेज या किसी सहारे को पकड़कर ही खड़े हों। अक्सर यही समय होता है डगमगा कर गिर जाने का। गिरने की सबसे ज्यादा घटनाएं बाथरूम, वॉशरूम या टॉयलेट में होती है। आप चाहे अकेले हो या पति पत्नी साथ हो, संयुक्त परिवार हो, लेकिन संयुक्त मतलब ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन बाथरूम में अकेले ही होते हैं। यदि आप घर में अकेले रहते हैं तो और अधिक सावधानी बरतें, क्योंकि गिरने पर यदि उठ न सके तो दरवाजा तोड़कर ही आप यह सहायता पहुंच सकेगी, वह भी तब जब आप पड़ोसी तक समय से सूचना पहुंचाने में सफल हो सकेंगे। याद रखिए, बाथरूम में भी मोबाइल साथ हो ताकि वक्त जरूरत काम आ सके। देसी शौचालय की बजाय हमेशा यूरोपियन, जो यूरोप में शौचालय होता कमोड वाला, उसको ही इस्तेमाल करना चाहिए 60 साल की उम्र वाले व्यक्ति को भी, क्योंकि जब वो नीचे बैठता तो उठने में दिक्कत होती है। यदि न हो तो समय रहते बदलवा लें, इसकी तो जरूरत पड़नी ही है, अभी नहीं तो कुछ समय बाद। संभव हो तो कमोड के पास एक हैंडल लगवा लें, कमजोरी की स्थिति में इसे पकड़कर उठने के लिए जरूरी हो जाता है। हमेशा आवश्यक ऊंचे स्टूल पर बैठकर ही नहाएं। बाथरूम के फर्श पर रबड़ की मैट जरूर बिछा कर रखें ताकि आप फिसलन से बच सकें। गीले हाथों से टाइल्स लगी दीवार का सहारा कभी न लें, हाथ फिसलते ही आप डिसबैलेंस होकर गिर सकते हैं। बाथरूम के ठीक बाहर मूर्ति मैट भी रखें, सूती मैट कॉटन का मैट, जो गीले तलवों से पानी सोख लें। कुछ सेकंड उस पर खड़े रहें, सिर फर्श पर बैठ पैर रखें, वो भी सावधानी से। अंडरगारमेंट हो या कपड़े अपने चेंज रूम या बेडरूम में ही पहने। अंडरवियर पजामा हो या पैंट खड़े खड़े कभी नहीं पहने। हमेशा दीवार का सहारा लेकर या बैठकर ही उनके पैचों में पैर डालें, फिर खड़े होकर पहने, वरना दुर्घटना घट सकती है। कभी कभी स्मार्टनेस की बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है। अपनी दैनिक जरूरतों की चीजों को नियत जगह पर ही रखने की आदत डाल लें, जिससे उन्हें आसानी से उठाया या तलाशा जा सके। भूलने की आदत हो तो अवश्य चीजों की लिस्ट मेज या दीवार पर लगा लें। घर से निकलते समय एक निगाह उस डाल ले, आसानी रहेगी। जो दवाएं रोजाना लेनी है उसको प्लास्टिक के प्लेनर में रखें, जिससे जुड़ी हुई डिब्बियां में हफ्ते भर की दवाई दिन बार के साथ रखी जाती है। अक्सर भ्रम हो जाता है कि दवाइयां ले ली है या भूल गए। प्लानर में से दवा रखें, उसमें भी दवा रखने न चूक हो जाए। इसमें दवाई खाने में जब वो एक बार के हिसाब से और डे के हिसाब से रहती है ना, तो उसमें याद रह देख ले या फिर गए हाँ ये तो खाली मिनट। 60 साल के ऊपर व्यक्ति हो जाता तो उसको भूल जाता है कि मैंने ली कि नहीं ली, क्योंकि वो रोज लेते हैं और अचानक भूल हो जाती है। ध्यान रहे, सीढ़ियों से चढ़ते उतरते समय सक्षम होने पर भी हमेशा रेलिंग का सहारा ले, खासकर ऑटोमेटिक सीढ़ियों पर। ध्यान रहे, आप अपना शरीर, आपके मन का ओबिडेटेड सर्वेंट नहीं रहा, जैसे पहले आपका शरीर था वैसा नहीं रहा, इसलिए उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बढ़ती आयु में कोई भी ऐसा कार्य जो आप सदैव करते रहे हैं उसको बंद नहीं करना चाहिए, कम से कम अपने से संबंधित अपने कार्य स्वयं ही करें। नित्य प्रातःकाल घर से बाहर निकलने पार्क में जाने की आदत न छोड़ें, छोटी मोटी एक्सरसाइज भी करते रहें, नहीं तो आप योग प्राणायाम व्यायाम से दूर होते जाएंगे और शरीर के अंगों की सक्रियता और लचीलापन कम हो जाएगा। हर मौसम में कुछ योग प्राणायाम अवश्य करते रहे। अपना पानी भोजन दवाई इत्यादि स्वयं लें, जिससे शरीर में सक्रियता बनी रहे। बहुत आवश्यक होने पर ही दूसरों की सहायता लेनी चाहिए। घर में छोटे बच्चे हो तो उनके साथ अधिक समय बिताएं, लेकिन उनको अधिक टोका टाकी न करें। ध्यान रखें कि आपको सबके साथ एडजस्ट करना है, न कि सबको आपसे। इस एडजस्ट होने के लिए चाहे बड़ा परिवार हो, छोटा परिवार हो, या कि पति पत्नी हो, मित्र हो, पड़ोसी या समाज हो, एक मूल मंत्र सदैव उपयोग करें। नून अर्थात नमक भोजन के प्रति स्वाद पर नियंत्रण रखें। मौन कम से कम एवं आवश्यकता पर ही बोलें। कौन, मसलन कौन आया, कौन गया, कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, अपनी दखलदाजी कम कर दें। नॉन मोन कौन के मूल मंत्र को जीवन में उतारते ही वृद्धावस्था प्रभु का वरदान बन जाएगी, जिसको बहुत कम लोग ही उपयोग कर पाते हैं। ये जो संदेश, जैसे ही बहुत सारे लोगों को आस पड़ोस में जिन्होंने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो सुन रहे हैं, वो अपने अगल बगल वाले लोगों को भी बताएं, जिन्हें सुबह या रात में सोते समय पेशाब करना जाना पड़ता है, उनके लिए विशेष सूचना है। हर एक व्यक्ति को इसी 3.5 मिनट में सावधानी बरतनी चाहिए। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यही 3.5 मिनट आकाशमार्ग होने वाली मौतों की संख्या कम कर सकता है। जब जब ऐसी घटना हुई है, परिणाम स्वरूप तंदुरुस्त व्यक्ति को, जो व्यक्ति तंदुरुस्त भी होते हैं और वो थोड़ा भी गिर गए तो उनको बड़ा दिक्कत हो जाती है, कभी कुछ फ्रैक्चर हो गया था और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो लोग 60 से ऊपर हो गए उनको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमारे मामा जी हैं, अभी पीछे 85 साल के हो गए, लेकिन वो ध्यान रखते हैं तो अभी वो 20 साल और रहेंगे। तो इस प्रकार से लोग, संजय जी जो संदेश था, इसके माध्यम से जो लोग 60 से ऊपर हो गए हैं, इस संदेश के माध्यम से उनको और अधिक सतर्कता देखने को मिलेगी और इस चीज को बरतेंगे तो उनके लिए सरल हो जाएगा। तो यही हम फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जो हमारा प्रोग्राम है ज्योति का प्रकाश, इसके माध्यम से लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं। और मैं देखता हूँ कि सरनाम में और हॉलैंड देश में बहुत सारे लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनने वाले हैं और इस चीज का सुनने के बाद लाभ भी उठाते हैं। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो में तार करते हैं और बीच बीच में पूछते हैं, जब भी किसी को लगे कि हमें किस बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से तार करके पूछ सकते हैं। हम प्रोग्राम के द्वारा उनको पूर्ण रूप से ये सब चीजें भी और ज्यादा बता सकते हैं। तो क्यों ना संजय जी एक नगमा की ओर बढ़े और फिर कार्यक्रम आगे जारी रहेगा।
1: जरूर मास्टर जी, नगमा की ओर बढ़ने वाला हूँ मैं, और वो गीत अभी तो चले वाले है, पर जो संदेश आपने रखे है आज, ये खास करके जो 60 साल के उम्र के ओर बढ़ने वाले है ना,
0: हाँ,
1: और कितना महत्वपूर्ण बात है, ऐसा है कि नहीं शांता जी?
2: बिल्कुल संजय जी, और धन्यवाद किया जाता है राजेंद्र जी को। और उसमें जो आपने कहा वो टॉयलेट सेटिंग, तो राजेंद्र जी का मतलब ये है जो आप टॉयलेट gebruiken anders kunt u dan gewoon als u op 60-jarige leeftijd bent of uw gezond laat het niet toe, dan gewoon de Europese toilet gebruiken. Dat is veel handiger en daarbij ook nog een steun.
1: हाँ, ख़ास करके जो अभी मास्टर जी ने कहा है कि 60 साल के आयु के से पहले भी हो सकता है, जो एक कैसे बोलते हैं वंथ स्टोन लगा सकते हैं आप अपने लिए, ताकि आप गिरने में और गिरने से बच सके। क्योंकि मास्टर जी ये इसमें संदेश का इसमें महत्व क्या है, क्योंकि हमारा 50 साल के ऊपर से हमारा हड्डी जुड़ता नहीं ना आदि।
0: हाँ, असल में क्या है कि जैसे जैसे हम लोगों का शरीर उम्र ज्यादा हो जाती है तो हड्डी जुड़ने में दिक्कत हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में। तो जब हम लोगों के बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डी में ज्यादा दिक्कत आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पानी में थोड़ा चूना डाल के उसको पीना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी ना रहे और कैल्शियम वाली चीज ज्यादा खाए।
1: चूना बोले तो
0: चूना एक व्हाइट कलर का चूना जो होता है, जो लोग भारत में आपने देखा होगा तंबाकू में रगड़ के खाते।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: हाँ। तो उसको पानी में थोड़ा मिला के एक गेहूं के दाने के बराबर मिला के खाना चाहिए पानी में। तो उससे क्या होता है कि हमारी हड्डियां में हड्डियां हैं उसमें तंदुरुस्ती रहती है, हर समय कैल्शियम की कमी नहीं रहती।
1: ऐसा
0: जी,
1: तो अति सुंदर संदेश आपने रखे, बहुत सा धन्यवाद दिया जाता है कि मास्टर जी आप हम लोग के साथ भारत से जुड़ जाते हैं कि उमरिया घटती जाए रे। ये मॉडर्न इंडिया से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, और मैं देख रहा हूँ शांता जी पिटाड़ा में कुछ खोज रहा है मास्टर जी, पता नहीं क्या खोज रहा है, पर उनका पिटारा उनके साथ है।
0: शांता जी का पिटारा तो हर समय गानों से भरा ही रहता है, उसमें तो कुछ ना कुछ निकलना ही है।
1: हाँ जी, तो देखते हैं क्या सुनाने वाले हैं शांता जी हम लोग के अपना। और जिस प्रकार से आपने गाना का मांग की है तो गीत चला देते हैं मास्टर जी।
0: जी जरूर जरूर जरूर।

0: सुनने वालों, बड़ा सुंदर संदेश जो राजेंद्र हमारे मास्टर जी ने और रखे, पर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं हमारा कार्यक्रम में, और हर सप्ताह की तरह अनुराधा जी, और अनुराधा जी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए अनुराधा जी को कहूंगा कि अनुराधा जी, आप अपना और संदेश को हम सबको सुनाइए।
1: प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब मंगल पूर्वक होंगे और सबका जीवन बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा और आप सब स्वस्थ रहें और खुश रहें, यही मेरी कामना है। तो संजय जी, आज मैंने सोचा क्यों ना मैं सभी सुनने वालों को थोड़ी कुछ, मैं हमेशा कहानियाँ सुनाती हूँ, तो आज कुछ मैं थोड़ी पते की बात सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि आम हमारी जो आम जीवन होता है, रोज का हमारे जो जीवन में, हम रोज की जिंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बोलते हैं, पर कभी कभी वो हम सही तरीके से नहीं करते हैं और हमें पता नहीं होता है कि क्या ये सही है गलत है। पर ऐसा होता है कि हमारे ना चाहते हुए भी कभी कभी हमारा जो व्यवहार होता है दूसरे इंसान को, उसको उसको मन में, उसके मन को चोट लग सकती है, उसको थोड़ा सा बुरा लग सकता है। तो थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी होती हैं और कैसे हम रोज का जीवन हम अपना अच्छा बनाएं, अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने कुलीग्स की, किसी का हम कभी हम दिल ना दुखाएं और अपना जीवन कैसे हम अच्छा बेहतर बना सकते हैं रोज का जीवन। तो मैं ऐसा आप सभी को थोड़ी सी कुछ बातें बताना चाहूँगी, तो जो आप बड़े ध्यान से सुने और ये आपको हो सकता है कुछ आपके रोज के जीवन में कुछ बदलाव लाए तो बहुत ही बढ़िया। पहला तो देखिए, बहुत बार देखा जाता है कि हम कभी सोचते हैं कि चलिए बहुत दिन से हमने किसी इंसान से बात नहीं करी, चाहे हमारे दोस्त हो, परिवार वाले हों, और हमारा मन आया कि चलो इनसे फ़ोन मिलाया जाए, तो हम एकदम से ना हम वक्त देखते हैं ना समय देखते हैं कि दिन का क्या है, हम फटाफट लगा किसी को फ़ोन मिला देते हैं, मोबाइल मिला दिया। तो ये याद रखें कि लगातार दो बार से अधिक किसी को अगर आप कॉल ना करें, वे यदि आपकी कॉल नहीं उठाते हैं, तो मान लें कि उस वक्त वो जो इंसान है उनके पास कुछ और महत्वपूर्ण कार्य में वो व्यस्त हैं, तो आपकी कॉल नहीं उठा रहे। तो ऐसे में आप बार बार उनको कॉल ना करें। बेस्ट होता है, सबसे अच्छा है कि आप कोई अपना या तो मैसेज लिखकर वहाँ पर आपको उन इंसान को भेज दें, या आप वॉइस मेल में कोई मैसेज भेज दें, तो उससे यह है कि दूसरा इंसान को डिस्टर्बेंस भी नहीं होएगा और वो बुरा भी नहीं लगेगा। ये तो ही फ़ोन की बात। ऐसे ही बहुत बार होता है कि हम पैसे लोगों से, हमें हर को होता है भाई, कभी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ गई और हमें कुछ उधार चाहिए, हमारे पास पैसे की कमी आ गई है, या हमें कुछ खर्चे हमारे ज़्यादा हैं, हमें पैसे ज़रूरत है, तो हम किसी से पैसे उधार ले लेते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप ज़रूरत पड़ने पर आप अपने अपनों से पैसे उधार ले सकते हैं, परंतु याद रखिए कि जब भी आप पैसा किसी से उधार लें, वो उधार लिया धन हमेशा आप जल्द से जल्द, जब हो सके आपके पास पैसा आ गया है, तो वो उनको वापस लौटा दे और दूसरे व्यक्ति के याद दिलाने का या मांगने का इंतज़ार ना करें। और ये ना सोचें कि अभी तक तो उसने मेरे से पैसा वापस नहीं मांगा है, तो मेरे को क्या जल्दी है वापस करने की, ये ना आप इंतज़ार करें। जहाँ पैसा आपके पास आ गया है, आप जल्द से जल्द उधारी का पैसा हमेशा जल्दी से वापस लौटा देना चाहिए। यह आपकी ईमानदारी और अच्छे चरित्र को दर्शाता है। तो ये याद रखिएगा हमेशा, बहुत इससे आपके जो संबंध भी हमेशा अच्छे बने रहेंगे। एक और बात है, देखिए बहुत बार होता है कि हम किसी के साथ कभी हम प्लान बनाते हैं कि चलिए आज हम किसी के साथ सुबह का ब्रंच करेंगे या लंच या डिनर के लिए हम जाते हैं बाहर। तो बहुत बार होता है कि भाई दूसरा इंसान कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें बाहर खिलाता हूँ, तो अच्छा तो लगता है कि भाई देखिए आज हमें दूसरा इंसान हमें ट्रीट कर रहा है, हमें बाहर ले जा रहा है। तो याद रखें, ये एक तरीके से जब दूसरा इंसान आपको कभी खाने के लिए बाहर ले जाए तो हमेशा याद रखें कि जो आप मेन्यू में खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें ये ना सोचें कि भाई आज तो मेरे को पैसा इसका नहीं देना पड़ेगा तो मैं बहुत महंगी चीज़ ऑर्डर करूं। ये याद रखें, जब आपको कोई दूसरा खिला रहा हो तो आप कभी भी इतनी महंगी पकवान या खाने की चीज़ें ऑर्डर ना करें। यदि संभव हो तो जो आपको खिला रहा है उन्हीं से आप कहें कि आप ही अपनी पसंद के का ऑर्डर कर दें। तो याद रखें कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जस्ट कि दूसरा खिला रहा है तो भाई कितने भी उस इंसान के पैसे खर्च करो। तो यह याद रखने वाली बात है कि देखिए कभी भी दूसरा जो आपको अच्छे दिल से खिला रहा है ना, तो आप उसकी भी इज्जत रखिए और या तो आप कहें कि नहीं चलिए जो खर्चा आया है हम आपस में बांट लेंगे, और या ऐसा वही कह रहा है कि नहीं मैं अपने तरफ से खिलाऊंगा, तो ऐसा करें कि देखें कि ऐसा महंगी वस्तु ना ज़्यादा ऑर्डर करें कि दूसरे को एकदम से बहुत उनका बिल बहुत ज़्यादा आ जाए। तो ये थोड़ी सी जब बात होती है ना तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है। देखिए एक ये बहुत देखने में आता है, हम किसी को मिलते हैं बहुत दिनों बाद मिले और किसी के बेटा बेटी या कोई भी है, आप उनसे मिले और आपने झट से पूछ लिया ओ तो आज तुम्हारी क्या उम्र है, या किसी से कि ओ अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, ओ या आप कहें कि ओ तुम तो अभी इतने साल के हो गए अभी तक तुम्हें कोई तुमने अभी तक काम नहीं करते हो, नौकरी नहीं मिली ढंग की, या आप कभी ऐसे सवाल करें ओ तो आपके क्या आपके आपके कोई आप किसी से पहली बार मिले या कोई आप नहीं जानते हो और मिले और फिर कहें क्या आपके बच्चे नहीं हैं। तो ऐसे अजीबो गरीब जो हम ऐसे सवाल करते हैं ना, तो ये कभी ये बहुत ही खराब लगता है और बहुत ही मतलब ये ऐसे सवाल करने से ना किसी को ये बहुत मन को किसी के ठेस पहुंच सकती है और ये बहुत बुरा ये आपको मतलब दूसरे को मन में लग सकता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि हम ऐसे अजीबोगरीब किसी से डायरेक्ट ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए कि ओ भाई क्या आपने अभी तक ये घर नहीं खरीदा, या तुम्हारी ये बताओ तुम कितना कमाते हो, तुम्हारे कितने पैसे कमाते हो हैं, और तुमने अभी तक गाड़ी नहीं खरीदी। तो ऐसे जो बहुत व्यक्तिगत तरीके से के जो ये सवाल होते हैं ना, हमें ऐसे देखिए जब पहले किसी से नए मिलते उनसे भी नहीं पूछना चाहिए, और अपनों से कितना भी हमारे अपने हो तो हमें बड़े सोच समझकर ऐसे प्रश्न रखने चाहिए जिससे कि दूसरे के मन को ठेस ना लगे। और ऐसे सवाल करने से बहुत बार दूरियां आ जाती हैं, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो याद रखें कि हम जब किसी से पूछें तो तो अगर वो खुद बताते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं बताते हैं तो चुप रहिए और ऐसे कभी डायरेक्टली या सामने मुंह में किसी से ऐसे सवाल ना करें जिससे कि उनको एकदम से सुनने में ये बुरा लगे। तो ये सब बातें थोड़ा सा दिमाग में रखनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने व्यवहार में और कैसे हम क्या बोलें कि दूसरे इंसान के को ऐसे मन में ठेस ना पहुंचे और बुरा ना लगे। तो संजय जी, आज मैं ऐसी कुछ आगे और भी बातें बताऊंगी जिससे थोड़ा सा हमारे सुनने वाले थोड़ा ध्यान रखें। तो पर क्यों ना पहले एक गीत हो जाए और फिर आगे हम बढ़ेंगे।
0: जरूर अनुराधा जी, आज संदेश में संदेश, क्योंकि आज का कुछ ध्यान देने वाले बातें जो हम सब रखने की कोशिश कर रहे हैं आज, और देखा जाए कौन सा गीत शांता जी अपने पिटारा से खोज करके रखे हुए हैं।

0: सुनोलो, ये सुंदर सा गीत अब चलाया गया। आज का संदेश में जो अनुराधा जी संदेश रखने वाले हैं, भी और भी संदेश ना अनुराधा जी, तो आप अपना संदेश को आगे बढ़ाइए।
1: चलिए आगे बढ़ा जाए और पता करते हैं और क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो अक्सर देखा गया है कि हम घर में, तो चलिए घर में दरवाज़ा खोला बाहर निकले, पर कभी हम बाहर कोई बिल्डिंग में जा रहे हैं या कभी ऑफिस में ही हों या कहीं भी और दरवाज़ा जो होता है ना, हम अंदर घुसे और आगे पीछे नहीं देखते कि हमारे कोई है, और बस दरवाज़ा छोड़ दिया। बहुत बार होता है कि हमारे पीछे भी कोई व्यक्ति है, और ऐसे हमारे लापरवाह तरीके से अगर हमने दरवाज़ा ऐसे छोड़ दिया तो उस इंसान को चोट लग सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने पीछे आने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा दरवाज़ा खोलें। जब आपको दिखे कोई आपके पीछे है तो खोलकर हमेशा दरवाज़ा, या आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह लड़का है या लड़की है, या कोई सीनियर है या जूनियर है आपसे। आप सार्वजनिक रूप से किसी के भी साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो इंसान को बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए ये आपने किसी के लिए दरवाज़ा खोला। ये छोटी सी बात है पर बड़े मायने रखती है कि आप किसी के लिए अगर दरवाज़ा खोलें, खोलकर रखें और दूसरे इंसान को भी अंदर जाने दें। दूसरी बात ये है कि यदि आप किसी दोस्त या अपने किसी कुलीग के साथ कभी कहीं आपको बाहर जाना होता है और आप टैक्सी एक साथ टैक्सी लेते हैं और टैक्सी लेते हैं तो वह अभी भुगतान करता है तो याद रखें, उसने अगर उस बार टैक्सी के पैसे दे दिए और आपसे कहा नहीं नहीं मैं टैक्सी के पैसे मैं दूंगा, तो याद रखें अगली बार जब आप जाएं तो आप जो टैक्सी का अगली बार जाएं तो आप उस पैसे का भुगतान करने का प्रयास करें, या पैसा आधा आधा बांट लें कि टैक्सी का जो भी खर्चा आया हम आपस में बांट लेंगे। तो ये आपका बड़प्पन दिखाता है कि हमेशा याद रखें, ऐसे कभी किसी के साथ हो तो कहें जी हम आपस में हम पैसे बांट लेंगे, या नहीं लेते हैं उस समय तो आप अगली बार ध्यान दें कि आप उसका पैसा भुगतान करें। देखिए विभिन्न प्रकार के विचारों का सम्मान करना चाहिए हमेशा है। तो ये देखिए बहुत बार होता है हम आपस में बात कर रहे होते हैं किसी से, और ये जरूरी नहीं कि जो सामने वाला है उसके विचार और आपके विचार हमेशा एक जैसे हों। देखिए हर इंसान को वो उसको पूरी वो जो उस वो सोच है वो दूसरी सोच भी रख सकता है, आपकी सोच बिल्कुल अलग हो सकती है, भले ही वो आपके परिवार का हो, आपके बच्चे हो या आपके कोई दोस्त हैं, सहकर्मी हैं जो आपके साथ काम करते हैं, तो सबके विचार अलग होते हैं। तो इसलिए याद रखें कि कभी भी विचारों की हमेशा अच्छा आदान प्रदान करें, पर बिना बात पर बहस एक हद तक ठीक रहती है कि आप अपने विचार दें, उनके भी विचार सुनने की आपको क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ही बस आपके ही विचार हैं जो वही सही हैं और दूसरा इंसान गलत है। तो ये याद रखें हमेशा एक तरीके से अपने विचारों का एक दूसरे के विचार सुने और दूसरे के भी सुनने की क्षमता रखें, चाहे वो आपके विचार से बिल्कुल ही मेल ना खाता हो, पर हमेशा उनका सुने। और देखिए हर इंसान को अपने विचार रखने का वो व्यक्तिगत वो तरीके का वो सोच सकते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि यदि वो कह आपके लिए जो छह दिख रहा है वो सामने से आने वाले लोगों को शायद नौ दिखाई देगा। तो वही बात हुई ना, तो आपको जो दिख रहा है दूसरे इंसान को दूसरा दिख रहा, तो सबका अपना अपना विचार होता है। तो सही यही होता है कि हर कोई स्पेस दें, ये नहीं कि अपना ही विचार किसी पर थोपे। ये भी देखिए, कभी कभी लोगों को हमें सोचना चाहिए, दो लोग जब बात कर रहे होते हैं ना, हम लोग को बहुत बार आदत होती है कि जहाँ तीन चार लोग मिलते हैं बस सब अपना अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, बस सब बोल पड़ते हैं, एक साथ बोल पड़ते हैं। तो क्या होता है, इस वजह से सभी बोलना चाहते हैं और कोई रुकना नहीं चाहता। क्या होता है कि ना कोई आपको समझ में आ रहा है दूसरा क्या बोल रहा है, ना आपकी बात किसी को समझ में आ रही है, ना दूसरे की आपको आ रही है, और सब एक साथ बोले जा रहे हैं। तो याद रखिए, जब कभी दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों तो आप इंतज़ार करिए, और जब उनका बात ख़त्म हो जाए तब अपनी बात आगे रखिए, और समय आने पर अपना विचार प्रकट करिए। और जब काफ़ी साथ लोग हैं तो सब एक एक करके थोड़ा सा धैर्य रखें, और एक एक करके सबकी बात, सबको मौका दें अपनी बात बोलने का, ना कि सब एक साथ बोलें, तो ये अच्छी बात नहीं लगती है। जब आप तो अच्छा यही होता है कि आप एक दूसरे का सब्र से इंतज़ार करें, और सबकी बातें, हर इंसान को वक्त दें अपना विचार प्रकट करने का। यदि देखिए, एक और भी ये बात है, ये बहुत बात होती है कि हम जब दोस्तों के साथ होते हैं ना, तो हमें लगता है ये तो हमारा बड़ा अच्छा पुराना दोस्त है, बहुत देखिए मौज मस्ती भी चलती है एक दूसरे के साथ, और कभी कभी चाहे घर वाले भी हो, भाई बहन हो, और हम मजाक में कुछ, देखिए एक हद तक मजाक अच्छा लगता है, पर कभी कभी हम बिना सोचे समझे मजाक ज़्यादा ही कर देते हैं, और किसी को ज़्यादा ही जैसे मजाक में चढ़ाने लगते हैं। और इसका हमें तो बहुत आनंद आ रहा है कि देखो हम कितना मजाकिया हैं, पर आप ये भूल जाते हैं कि जो आपके लिए बहुत मजाकिया आपको लग रहा है, वो दूसरा इंसान हो सकता है, वो उसको एक हद होती है, तो उतना तो मजाक ठीक है, उससे ज़्यादा जब कभी कभी हद हम पार कर जाते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये मजाक आगे वाले को पसंद आ भी रहा है या नहीं, या हम ज़्यादा हद हमने तो पार नहीं कर दी, क्योंकि ये कभी कभी किसी को इस बात का बुरा भी लग सकता है। तो कभी आप किसी को ऐसा कर रहे हैं तो अपने आप को रोक लें, और एक हद तक मजाक करें, उसके आगे अपने आप को रोक लें कि भाई हो सकता है आगे वाले को ये बात पसंद नहीं आ रही हो, और वो उसके मन को ठेस लग जाए, और ये उसमें आपके आपस में मजाक के बदले वो पूरा माहौल ही बदल जाए। तो ये बात याद रखने वाली बात होती है कि हमें भी अपना सोच समझ कर हम एक इंसान के साथ मजाक करें, एक हद में रह कर करनी चाहिए, ना कि हम हद उसको पार कर दें। और हाँ, कोई भी आपको कभी भी कोई मदद करता है तो हमेशा याद रखें, एक छोटा सा शब्द है पर वो बहुत मायने रखता है, वो है कि हम उसको धन्यवाद कहें। हम भूल जाते हैं, हम बच्चे भी हैं घर में, हम किसी को कहते हैं अच्छा ये कर दो वो कर दो, घर वालों को हम सोचते हैं ये तो हमारे घर वाले, इनको क्या हमें बोलना है। पर याद रखें, एक छोटा सा कोई आप काम भी कराते हैं उसका आप छोटा सा एक शब्द ही है जो आपको बोलना है, धन्यवाद, थैंक यू, वो आप बोल दें तो दूसरा इंसान को बहुत अच्छा लगता है। और ये कोई बड़ा कोई कहीं इतनी महंगी चीज़ नहीं है, बहुत एक छोटा सा सरल सा शब्द है, पर दूसरे को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपना जो उसने करा है आप अपना आभार प्रकट करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो धन्यवाद तो करिए, पर मैं इस आगे बढ़ूँ क्यों ना संजय जी एक और सुंदर सा गीत हो जाए।
0: जरूर,
1: फिर मैं आगे बढ़ूं।
0: बिल्कुल, और शांता जी जो भी अपने पिटारा से कुछ रखने वाले हैं कि हमारे सुरिनामी वेस्ट इंडीज त्रिनिदाद टोबैगो के ओर से जो गाना लिखा गया जो पहले में और अब उसे बनाया गया है, कुछ कुछ काम किया गया है इंडिया में ना शांता जी? और देखा जाए कि उस पर जो संदेश आप दे रहे हैं उस पर जरूर ध्यान देते हुए ये सुंदर सा गीत हम रखने की कोशिश कर रहे हैं।

0: ये सुंदर सा गीत जो शांता जी, इस पर कुछ बताइए आप कि ये किसका गाया पहले, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये वेस्ट इंडीज सूरीनाम के गीत को, त्रिनिदाद,
1: मेरे ख्याल से सुंदर पोपो जी के ये गीत है।
0: सुंदर पोपो जी का गीत है।
1: हाँ,
0: और अब
1: सुंदर पोपो के गीत है। और हम लोग के ये ना सोचना चाहिए कि बैठक गाना है उसका। हम बैठक गाना तो सद अरे हमारा पूर्वजों जो है वो सब भारत से लेकर आई है। और ये था एक कम्युनिकेशन करने के लिए एलकांदर से, जो भी हमारा आफ्रो सुरिनामर जो है
0: हाँ
1: वो भी गीत की तरह, गीत से अपने आप से अपने लोग से कम्युनिकेशन करत रहा। क्योंकि बात करना उस समय पे मना था, गोरे लोग के आगे बात करना एक दूसरे से मना था। तो संगीत के रूप से ये सब कम्युनिकेट करत रहा अपने भाषा में, जैसे हम यहाँ पे हैं और तू उ किनारे है, तो बात करना नहीं सब। अगर संगीत में बात करोगे, संगीत गाओगे, तो संगीत में वो संदेशा वो आ जाता था। तो हमारे पूर्वजों ऐसे ही सीख के, और जो भारत से भी अपना जो इंस्ट्रूमेंट भी लाए थे उनके सहारे आज तक ये जिंदा है। और सिर्फ हम लोग का, सिर्फ ये अमेरिका में नहीं है, बल्कि हमारे गायक जो है बैठक गाना सांगर्स जो है त्रिनिदाद टोबैगो अमेरिका, और अब जैसे भारतीय लोग आते, भारतीय सांगर्स जो है वो आकर हमारे जो सभ्यता है जो बैठक गाना, उनसे भी जो सांगर है ना सूरीनाम के सांगर जो है लोकल, उनको भी उसमें गाते हैं, गवाते भी कि इस तरफ से गाओ। और उसी तरह से देखो ना आज किस धुन पे भाई चल चल गए बैठक गाना की तरह।
0: बिल्कुल। पर शांता जी, ये इन बातों को सुनकर मुझे भी कुछ ख्याल आता है कि हमारे जब बचपन थे ना, तो हम लोग घर में, परिवार में पहले कहाँ फ्रुत फ्राव होते थे, बस यानी कि जैसे यहाँ पर सौरख है, बच्चे होते थे तो माँ कभी हॉस्पिटल जाता था तो कहीं घरे हो जाता था, तो
1: पहले था फ्रूट फ्रॉग।
0: थे पर नहीं, कहने के मतलब जो आज आजकल क्या कहा जाता है, जो घर पे आते हैं
1: हाँ क्रम सौरभ
0: क्राम
1: बोले
0: सौरख
1: हैं,
0: आदि।
1: मैं वही वही हैगा। हम हरदम से यही कहला कि हम जब वो सब करते थे तक ये अन्य अन्य अन्य अन्य सभ्यता वाला जो है कहते कि नहीं वो ठीक नहीं बच्चे के लिए, बच्चा पैदा हो जाए तो उसका हम लोग मसाज करते ना,
0: हाँ जी,
1: हाँ कसरत कराते हैं,
0: हाँ
1: मसाज करते, ओली लगाकर सब कुछ कर। तो गोरे लोग कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं बॉडी के लिए, बच्चे के लिए ठीक नहीं, आप उसके लिए कोर्सेस जाओ करो,
0: मालिश करें।
1: माताओं लोग के बुलाते हैं कोर्सेस सीखने के लिए। वही सब जो सभ्यता हमारे पहले के है वही सब ले लेकर देख देख कर विचार कर कर अब हमें ही के फिर से सिखाते हैं।
0: अब
1: और
0: देखा
1: हमारे
0: जाए,
1: हमारे माँ बाप जो कहते हैं अपने प, प, प, बिटिया से जो माँ बनते हैं ना कहते हैं मालिश करो, तो माँ नई नई माता जो है ना माँ यो बनते हैं वो सब नहीं चाहते,
0: इस इन बातों को नहीं जानते।
1: जानते हैं पर नहीं नहीं चाहते कि उस बच्चे को मालिश कराओ।
0: ऐसा
1: हाँ, और जब मालिश करोगे शुरू से मालिश करो जो कसरत होगा तो उसका बॉडी जो है वो जो बॉडी बनता है।
0: बनता है तो। पर ये मैं संदेश कुछ और कहना चाहता था शांता
1: फिर
0: जी,
1: भी वही
0: पर
1: पर घूम के आके आते हैं सभी, तो वही पे घूम के आते हैं। हमारे बैठक गाना भी ना,
0: हाँ
1: बैठक गाना देख आज कितना परिवर्तन कर गए,
0: हाँ देखो, अब हम लोग का
1: परिवर्तन देख
0: अभी हाल ही
1: रहा
0: में
1: फार्मर।
0: बड़का फिल्म में एगो हम लोग का जो सूरीनाम का गायक
1: हाँ
0: का
1: पड़ोसी ने अपना मुर्गा संभालो फिल्म तूफान में अमिताभ बच्चन जो गाए
0: वो भी
1: देखा
0: ना,
1: ना।
0: ऐसे भी अभी हाल ही में मैंने एक बड़ा फिल्म निकला था तो कॉमेडी फिल्म है,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: ये चटनी वाला गाना
1: अच्छा कौन
0: फुलौरी बिना चटनी,
1: हाँ तो
0: वो
1: देखो
0: भी उसमें चलाया गया। तो देखा जाए कि हम लोग के जो सूरीनाम में स्क्राइफर से, और बहुत दिन लग गया भारत के पहुँचत पहुँचत, पर अब तो एक एक को वो खोज खोज करके और उसे रिमेक करते हैं।
1: हाँ जैसे हम सब भी रिमिक्स करते हैं वैसे वो सब भी रिमिक्स करते हैं, अपने धुन पे बना लेते हैं, अपना ऐसा कर लेते हैं।
0: और मैं ये कहना चाहता था शांता जी कि जो अभी कहे आपने ना कि पहले संगीत में कम्युनिकेट करते थे, तो ये बिल्कुल सही, पर झगड़ते थे भी तो संगीत में सुना देते थे, ऐसा भी मैंने सुना है।
1: हाँ, सभी,
0: कि झगड़ते थे भी संगीत में और खूब अपना महाराज या महाराजिन को सुना देते थे।
1: हाँ, वो तो है। हाँ।
0: तो सुनो वालों, अभी कार्यक्रम अभी रेडियो बाकी है, क्यों ना हम न्यूज और कमर्शियल की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। देखा जाए कि अनुराधा जी भी अभी हम लोग के साथ जुड़े हुए, अनुराधा जी अभी हम सब आपके साथ जुड़ जाएंगे।
2: Dit is Vahom Hindustani Radio.
3: अधिकृत कंटोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
4: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
5: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen, al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. En dan het weer. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Dit is Vahon Hindustani Radio.
8: Hum jab honge 60 saal ke aur tum hogi 55 ki, bolo priti gaogi na tab bhi apne bachpan ki.
9: Kya kya kya?

लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: सुनने वालों, ये ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम जो आपके लिए हम सफर रखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत से और अनुराधा चंद्र जी, जो अपना संदेश रख चुके हैं कुछ, और कुछ संदेश अभी बाकी है ना अनुराधा जी, तो जरूर अपना संदेश को हम सब के लिए और रखिए, क्योंकि अभी तो कुछ संदेश बाकी है।
1: चलिए आगे बढ़ा जाए और जानते हैं कि ऐसी क्या क्या बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अक्सर हम किसी की कोई चीज़ पसंद आती है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और अच्छा लगता है कि आप किसी को जो अच्छा है तो उसकी प्रशंसा करें, पर याद रखें कि जरूरी हो तभी निजी तौर पर आलोचना करें। ऐसा नहीं कि आप देखिए, बहुत बार होता ना, हम प्रशंसा तो कर देते हैं, हम कहेंगे ओहो ये तो कैसा, मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं कुछ उसके लिए, आप दिल से तो उसके लिए अच्छा चाहते हैं, पर कभी कभी आप ऐसा बोल देते हैं और वो आलोचना जैसा लगता है, क्रिटिसिज्म जैसा, तो ये सोचना चाहिए आप किसके सामने ऐसा बोल रहे हैं, और कभी कभी अपने आप को चाहते हुए भी ना रोक लेना चाहिए। ऐसा अच्छा नहीं लगता कि कभी कभी मिलते हैं किसी से तो अच्छा ही है कि थोड़े दो शब्द अच्छी बातें ही बोले उनके हैं। और देखिए, ऐसा होता है ना, कभी कभी आप किसी को मिले, अब वो इंसान को आप आपका कितना ही अच्छा दोस्त हो या जानने वाला हो, और आप मजाक में कह देते हैं कि भाई उसके वजन को, किसी का वजन ज़्यादा है। देखिए, कम वजन है तब तो अच्छा है लगता है इंसान को, पर आप किसी को अचानक कह दें भाई तुम तो बहुत मोटे लग रहे हो, तुमने तो बहुत वजन ज़्यादा बढ़ गया है, तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये बातें किसी को मन में लग जाती हैं, और ये बातें ऐसे नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो इंसान कोशिश कर रहा हो अपना वज़न घटाने का, या हो सकता है आप किसी को कहते ओ तुम तो बहुत ही कितने क्या हो गया, दुबले से लग रहे हो, हड्डी का ढांचा लग रहे हो, क्या हो गया, पतले से हो गए हो, तो आप नहीं जानते, हो सकता है उनको कोई तकलीफ हो, कुछ हो, तो ये सोच लेना चाहिए। और बस आप ऐसा बोलें कि देखिए, आप ऐसा बोल दें कि ओ भाई तुम तो बहुत ही आज शानदार दिख रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है ना, दूसरा इंसान को मन में ये सुनकर अच्छा लगता है। तो हर समय जरूरी नहीं कि आप सोचें हम तो सत्यवान होकर हम हर चीज़ सच बोलेंगे। देखिए, सच भी कभी कभी तोल मोल कर बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए खुलकर, तो क्योंकि कभी किसी को ठेस लग सकती है दिल में, तो ये सब बातें ख्याल रखनी चाहिए कि क्या क्या बात करें। अच्छा, ये तो हो गई वजन वाली बात, किसी को क्या ऐसा क्या बोले नहीं बोले, पर देखिए बहुत बार होता है ना, हम हमने फोटो ली किसी से कैमरे में, मोबाइल में, और झट से हम उस इंसान का, चाहे वो हमारा कितना ही प्रिय मित्र क्यों ना, हम एकदम से उसका मोबाइल खींच कर कहते हैं भाई दिखाओ तुम्हारे मोबाइल में कैसे ये फ़ोटो कैसी आई है, बताओ ये जो फ़ोटो ली कैसी आई है, और आप वो तो फ़ोटो देखते हैं और उसका फ़ोन अपने हाथ में पकड़ कर दाएं और बाएं एकदम से आप स्वाइप करने लगते हैं। तो देखिए, याद रखें ये बहुत ही गलत आदत है कि कभी भी हर इंसान का जो मोबाइल होता है उसका अपना निजी मोबाइल है, उसका उसमें निजी कुछ भी और तस्वीरें हो सकती हैं अपना है, तो ये अच्छा नहीं है। वो इंसान आपको खुद दिखाए तो ठीक है, पर आपको ये नहीं कि अपना दूसरे का मोबाइल पकड़ के लेफ्ट राइट आप दाएं बाएं करके स्वाइप करें और ऐसा करें, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब दिखता है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए आइंदा से, याद रखें। ये हम भूल जाते हैं पर ऐसा करना नहीं चाहिए, ये याद रखें। तो और भी ऐसे कोई बहुत बातें हैं, देखिए क्या होता है, आप कभी किसी से मिलते हैं और आपको लगता है ओ मैं तो बहुत मेरा जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को बहुत समझते हैं कि भाई देखो ये तो छोटा सा है, छोटी मोटी नौकरी करता है, मैं तो काफ़ी सीनियर हूँ, ये तो मेरा बहुत जूनियर है। तो याद रखें कि अपने से भी जो जूनियर है, नीचे काम करने वाले हैं, कोई भी ऐसे लोगों से आप अगर मिलते हैं तो उनके साथ हमेशा सम्मान के साथ व्यवहार करें, हैं, ये नहीं कि अपना अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं। इंसान का आप कितने भी बड़े हों पर बड़प्पन आपका तभी है जब आप जो आपसे भी छोटे जो हैं उनका आप आदर सम्मान करें, और उसी में आपका बड़प्पन झलकता है, और आप जब दूसरे का आदर करते हैं है, और उनका सम्मान करते हैं। देखिए बहुत बार होता है ना, हम लोग ये भूल जाते हैं, कभी हम किसी के साथ बाहर जाते हैं, और ये आजकल बहुत ही आम है कि हम मोबाइल लेकर 24 घंटे बैठे रहते हैं। अब मोबाइल है तो बैठेंगे ही, चाहे ट्रेन हो इधर है, चलिए जब तक कि आप अपना खुद से बैठे हैं मोबाइल लेकर तब तो ठीक है। पर बहुत बार होता है हम कहीं बाहर खाना खाने गए हों या किसी दोस्त के साथ बाहर बैठे हों और आप आपस में वो आपसे बात कर रहा है और आप अपना बस मोबाइल लेकर बैठे हैं और अपने मोबाइल में ही आप उससे सीधे मुँह बात नहीं कर रहे हैं और बस अपना जो समय है बस मोबाइल में कुछ कोई आपका ये आ गया कॉल आ गई या आपका मैसेज आ गया। ये याद रखें कभी भी आप किसी के बाहर जाते हैं तो अपना मोबाइल साइलेंट कर दें अपने और मैसेज उस समय ना देखें। जो फ़ोन आ रहा है वो बाद में आप अटेंड कर लें। बहुत तो ये बहुत ख़राब लगता है कि आप जब उस समय आए हैं ना उस व्यक्ति के साथ अपना समय व्यतीत करें, ना कि मोबाइल में लगे बैठे। ये बहुत एक तरह का बुरा व्यवहार समझा जाता है कि जब ऐसा इंसान करता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जिस इंसान से मिलने आए हैं उसके साथ आप टाइम अपना वक्त व्यतीत करें। तो बहुत बार होता है कि आप देखते हैं कि भाई कोई दो लोग बात कर रहे हैं या कोई देख रहा है कि वो किसी इंसान से दूसरा इंसान पूछ रहा है भाई सलाह कुछ बातें कर रहा है और आप सुने जा रहे हैं और आपको लगता है कि ओह भाई ये क्या उल्टी पुल्टी बात कर रहा है, ये तो है मैं अपनी सलाह देना चाहता हूँ। याद रखें कि जब तक आपसे कोई सलाह ना मांगी जाए आप बेहतर है कि आप चुप रहें, बिन मांगे सलाह ना दें, क्योंकि जब कोई आपसे मांगे तभी आप अपनी सलाह दें, ना मांगने पर चुप ही बैठना अपने अकलमंदी का अकलमंद इंसान का वही होता है जो मांगने पर ही सलाह दे, ना मांगे तो चुप बैठे। तो ये देखिए जब किसी से लंबे समय के बाद आप मिल रहे होते हैं ना, जब तक वे इसके बारे में बात ना करें तब तक उनसे उनकी कभी भी, जैसे मैंने पहले भी बोला, उनकी उम्र और वेतन यानी कि सैलरी कभी ना पूछें। ये बहुत व्यक्तिगत एक होता है और औरतों के साथ तो बिल्कुल भी, ये बहुत महिलाओं के साथ कभी भी उनकी उम्र का नहीं पूछना चाहिए। मजाक में आप कितना भी पता लगाना चाहें पर ये कभी मुंह के सामने ऐसा नहीं हो, अपने तरफ से कोई बताए तो ठीक है पर कभी आप ऐसे भूल ना करें कि मुंह में आप एकदम से कहें कि भाई बताओ, और अपना काम से काम रखें। देखिए, जब किसी से आप बात कर रहे होते ना, तो भले ही आप धूप में घूम रहे हैं और आपने धूप का चश्मा लगाया हुआ है, तो सही है, क्योंकि क्यों ना लगाएं, धूप है तो आपने चश्मा लगाया है, परंतु याद रखें, जब आप कभी किसी से जब बात कर रहे हैं व्यक्तिगत तरीके से, आप किसी से आप बात करते हैं, तो ध्यान रखें कि हमेशा अपना काला चश्मा निकाल लें जब भी आप किसी से आमने सामने बात कर रहे हैं। ये एक सम्मान की निशानी होती है। नेत्र संपर्क यानी कि आँखों से आँख में डालकर हमेशा बात करनी चाहिए, और नेत्र संपर्क आपके भाषण में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है। तो आप चश्मा पहनकर करते तो हैं, पर हमेशा याद रखें, जब किसी से बहुत व्यक्तिगत तरीके से बात करें तो ये एक तो चलते फिरते हो गया, चश्मा पहना है कोई बात नहीं, आपने हेलो हाय कर दिया, पर अगर आप किसी से बिल्कुल आमने सामने पास से बात करें तो हमेशा चश्मा, अपना काला चश्मा ऊपर करें और बिना चश्मे के आमने सामने बात करें। ये एक एक एक तहजीब है, एक अच्छा तरीका है जो हमें अपनाना चाहिए है। तो क्यों ना संजय जी, थोड़ा सा एक और सुंदर सा, प्यारा सा, अच्छा सा एक गीत सुना जाए, और फिर मैं आगे और बहुत सारी बातें बतानी है लोगों को, तो फिर आगे चढ़ेंगे। चलिए गीत सुनते हैं।
0: अनुराधा जी, बिल्कुल, मैं एक सुंदर सा गीत को चुन करके रख लिया है, पर यहाँ शांता जी भी बैठे हुए हैं, तो ये प्रश्न मैं और रख देता हूँ, क्योंकि बड़ा कुछ ज्ञान के और कुछ ध्यान के जानने वाले बात के अंतर्गत आपने और रखे हुए हैं। तो शांता जी, ये अभी जैसे मैंने सुना कि महिलाओं यानी कि फ्रॉवों को उम्र उनके नहीं पूछना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: आप मेरी से सवाल पूछ रहे हो?
0: अब स्टूडियो में तो आप ही बैठे हुए हैं।
2: हाँ, वो तो सही है, मैं तो बैठी हूँ आपके साथ यहाँ स्टूडियो में। क्यों नहीं पूछना चाहिए?
0: क्योंकि अभी तो हमने सुना ये बात,
2: तो अनुराधा से पूछना पड़ेगा।
0: अनुराधा जी, अभी हाँ, आपके इसके बारे में कुछ और देना चाहिए और भी शायद संदेश रखना चाहिए, क्योंकि ये een hele bijzondere dingen die je als het ware je moet ze allemaal kennen.
2: Zeker.
0: Maar toch, het lijkt alsof wel no, soms hem aanjaan, karila ki hem aanjaan hai un baaton pe. Jabki in sab baaton ko hume janna chahiye. Hume bachpan se sikhaya jata hai.
2: Ek bahut acha baat kahi hai Anuradha ji ne. कि अगर आप कोई से बात करते हो ना व्यक्तिगत, मैं इमात आनंद प्रात बैंत एन यू हैव अ सोनोब्रेल ओप हैट इज हेल नेचर्स ओम दैट फन यू ओह ऑफ द सेट सो दैट यू होन दी ओह कॉन्टैक्ट है बस हेल रिस्पेक्टफुल।
0: हमने देखा कि कभी एक व्यक्ति भी है जो जो कैसे बोले दांत प्रोटेज लगाते हैं ना, तो वो प्रोटोइसर अपने मुख में नहीं रखे हुए थे, तो अपना हाथ आगे करके बात करता है हरदम। तो ऐसा भी कुछ देखो अब सिखाया गया है जिसे हम अतिस ओक नेचर्स है।
2: हाँ, बात ऐसे भी है, हम जो मुख में जो हमारा दांत है ना, तो बात करने में वो दांत जो है वो स्पेक्सल जो है रोकता है, और जो दांत नहीं है तो बात करने के तरीका जो है वो अलग से हो जाता है।
0: हाँ, तो आप वही बात कह रहे हैं कि जब भांग पी लो,
2: हाँ,
0: तो भांग पीने से पीने के बाद, क्योंकि अभी अनुराधा जी के संदेश में ये था कि कोई छः देख रहा है अपने नज़र से और दूसरा नज़र से कोई नौ देख रहा है,
2: हाँ,
0: उसमें अपना अपना अपना अंतर हो जाता ना।
2: हाँ, बात यह है कि आप कहाँ थारा है, किस तरह किस दिशा से देखते हो,
0: किस दिशा से देखते हैं। हाँ। तो एक गीत को हम चुन करके रखे हुए हैं अनुराधा जी, जरूर अब मुझे ये पता नहीं कि आपको अच्छा लगेगा कि ये जोजा सूस फिल्म से निकाला गया कि दुनिया बड़ी खराब है, उस पे उस ओर बढ़ते।

पहले मरते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ाना सबसे बड़ा सवाब है। कौन है सच्चा कौन है झूठा हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। जरा सोचो सोचो जरा समझो समझो जरा संभल।

0: watch more.
1: यहाँ से सुने दो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है. हाँ, दो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है. दुनिया खराब नहीं है मेरे दोस्त, दुनिया के सूर्य आज भी वहीं से उगता है, चंद्रमा वहीं से निकलता है और डूबता है, धरती वहीं पे वही दिशा से घूमता है. खराब तो हमारा विचार है, विचार से लोग अच्छा बनता है खराब बनता है. तो हमारे से सवाल किया गया था कि वारम के लिफ्ट दैट फ्राखन फान अफ्रो.

0: मुझे बता दे। और ये सुंदर सा गीत जिसमें अशोक कुमार ने काम किया है, नेहतीन पुराना फिल्म है, मेरे ख्याल से उससे भी आगे की फिल्म है। पर अनुराधा जी, अभी आपका संदेश कुछ बाकी रहा तो विनय है आपसे, आप अपना संदेश को हम सब के लिए आगे ले जाइए।
1: चले आगे बढ़ा जाए और जानते हैं कि ऐसी क्या क्या बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अक्सर हम किसी की कोई चीज़ पसंद आती है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और अच्छा लगता है कि आप किसी को जो अच्छा है तो उसकी प्रशंसा करें। पर याद रखें कि जरूरी हो तभी निजी तौर पर आलोचना करें। ऐसा नहीं कि आप देखिए, बहुत बार होता ना, हम प्रशंसा तो कर देते हैं, हम कहेंगे ओहो ये तो कैसा, मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं कुछ उसके लिए, आप दिल से तो उसके लिए अच्छा चाहते हैं, पर कभी कभी आप ऐसा बोल देते हैं और वो आलोचना जैसा लगता है, क्रिटिसिज्म जैसा। तो ये चलिए संजय जी, आगे मैं भरती हूँ अपनी थोड़ी, जो मैं सुनने वालों को अपनी बातें बताना चाह रही थी कि क्या हमें रोज की मर्रा ज़िंदगी में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम देखिए क्या होता है ना, हम लोग जीवन तो हम बड़ा सरल है, पर कभी कभी हम रोज़ के जीवन में बिना सोचे समझे बहुत सारी ऐसे हम चीज़ें कर देते हैं और बिना सोचे समझे किसी का दिल दुखा देते हैं। तो हमें बड़ा समझ कर हम क्या बोलते हैं, क्या हम व्यवहार करते हैं, ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी कुछ और भी थोड़ी सी बातें हैं जो मैं सबको बताना चाहूँगी कि देखिए, जब हर इंसान के पास, हम लोग कमाते हैं, सबके पास पैसा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम है, और ये अच्छी बात है कि बहुत लोग कभी मेहनत करके बहुत पैसा कमाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो जो साथ के हैं वो इतने हमारे जैसे इतना शायद उन्होंने धन नहीं कमाया है और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम बात करते समय अपने पैसों के बारे में अपनी हम शो ऑफ नहीं करें। किसी से बात करते समय हम अपनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर अपने बारे में ना बताएं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हमारे पास इतना धन है और हम तो रोज़ यहाँ हम विदेश घूमने जाते हैं और हमारे पास ऐसी गाड़ी है, हम इतना खर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है ना, बहुत बार हम भूल जाते हैं कि जो हमारे हम जिससे बात कर रहे हैं वो हो सकता है उनकी स्थिति पैसे में वो इतना उनके पास वो ना कमाते हों और आर्थिक फाइनेंशली वो इतने वेल ऑफ नहीं हैं। तो ये जो हम ऐसे बात करते हैं ना बढ़ा चढ़ा के, हो सकता है आपके पास है, पर अच्छा इंसान का बड़प्पन उसी में होता है कि आप पैसों की बातें अपने आप जानते हुए अपना थोड़ा सा किसी के सामने ना करें, वो सुनने में बुरा लगता है, और आप दूसरे के बारे में पूछें हमेशा कि वो कैसा कर रहा है जीवन में हैं, और किसी को मदद हो तो आप उसकी मदद करिए, पर ये नहीं कि अपने बारे में ही आप बोलते रहें कि मैं ये करता हूँ, पैसा कमाता हूँ और दूसरे को नीचा दिखाने के। आपका हो सकता है कि आप ये नहीं, आपके मन में ये विचार नहीं है, पर ऐसा करने पर, बोलने पर दूसरे को यह महसूस हो सकता है कि देखो ये तो बहुत अपना पैसा पैसा करे जा रहा है और मेरे को मैं इतना नहीं कमाता हूँ तो मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता, तो ये मन में दूसरे इंसान के मन में ये बात आ सकती है। तो ये बहुत हमें हमेशा ध्यान रखकर ये बातें बात करनी चाहिए और किसी के सामने अपने धन की बात नहीं कभी बात करनी चाहिए। देखिए आजकल का क्या ज़माना है ना, मोबाइल हमेशा हमारे 24 घंटे मोबाइल रहता है। और जितना अच्छी बात है कि देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का हम जीवन चल रहा है, पर हमें उसको इतना भी मोबाइल को अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना चाहिए कि हम उसके बिना रह ना सकें, क्योंकि हमारा ऐसा होने लगा है कि हम मोबाइल हर जगह अपने साथ ले जाते हैं, 24 घंटे मोबाइल चाहिए। तो हमें ऐसा है कि एक थोड़ा सा हमें को मोबाइल को उतना ही उपयोग करें जितना ज़रूरी है, और थोड़ा सा हमें ब्रेक लेना चाहिए कि एक ऐसा हमें एक समय बांध लेना चाहिए कि जिस समय कि हम मोबाइल को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उससे क्या है, वो आपका निर्धारित, जैसे आप खाना खा रहे हैं अपने परिवार के साथ, तो वो एक समय निर्धारित करें कि हम उस समय मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे। वो हमारा पूरा पारिवारिक समय है, हम जो परिवार के साथ हैं वो बिल्कुल हम उसमें मोबाइल सब अपना अपना रख देंगे बंद करके, हम वो नहीं देखेंगे। जब आप परिवार के साथ बैठे हुए हैं तो ऐसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपना मोबाइल अलग रख दें, तो ऐसा निर्धारित है। या आप जब आपस में जब अपना आप टाइम बिता रहे हैं तो मोबाइल को ऐसा समय बांधें कि मोबाइल जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करें, हर समय मोबाइल का लत ना लगाएं, ना आदत डालें। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप सुबह पूरा दिन भर मोबाइल में इतने लगे कि आपने तो अपने बच्चों की ना अपने बीवी घर वालों की तो शक्ल भी नहीं देखी, ना आपको पता है कि उनने क्या कपड़े पहने, क्या उन्होंने घर में, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा एक निर्धारित समय बांधें जितना आप मोबाइल उसको इस्तेमाल करेंगे। याद रखें कि यदि आप अपने कोई सहकर्मी, जैसे होता है ना कि आप जो आपके साथ काम करता है वो कभी ऐसा मिला जिसे कि जैसे आप कभी अस्पताल पहुंच गए, आप कहीं डॉक्टर के पास गए हैं और आप तो गए अपने काम से अपने आप को दिखाने, वहाँ आपको कोई अपना कोई जानने वाला मिल गया या कोई कुलीग मिल गया और आप वो भी डॉक्टर के आया है, तो याद रखें उस इंसान से ये ना पूछें वह वहाँ किस लिए आया है, क्यों मिलने आया है, किस डॉक्टर से मिलने आया है, उसको क्या तकलीफ़ है। देखिए ऐसे समय में ना हर को आप थोड़ा सा पर्सनल स्पेस दें, प्राइवेसी दें। ये अच्छा नहीं लगता कि आप उस इंसान से उससे पूछें कि वो क्यों आया है, हो सकता है वो आपसे आपको नहीं बताना चाहे कि वो किस डॉक्टर से मिलना है, उसको क्या तकलीफ़ है। तो ये बातें जो होती हैं ऐसा ना बोलें, और अगर मिले तो आप बस आप ये कह सकते हैं मुझे आशा है कि आप ठीक हैं, और बस ना वो आपसे पूछेगा, और अगर वो आपसे पूछता है तो आप भी अपना बताने की ज़रूरत ना रखें और ना किसी से पूछें। अपनी व्यक्तिगत जो बीमारी होती है ना, बताने के लिए उन्हें ऐसा स्थिति में ना डालें कि उनको बड़ा अजीब लगे कि आपको बता वो आप उनके पीछे पड़ जाएं कि बताओ, भी सबको आप इतना उनकी इज्जत करें कि ना आप उनसे पूछें और उनको ऐसी स्थिति में ना डालें जिससे उनको बुरा लगे कि ये बताना पड़े। देखिए हर को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है और वो लोग अच्छा नहीं लगता कि आप सबके बताना चाहें। तो याद रखें कि ये कभी ये बहुत व्यक्तिगत सवाल ऐसे नहीं करने चाहिए। तो देखिए आज तो बहुत बातें हो गई, एक आखिरी चीज़, कोशिश हमेशा ये करें कि प्रतिदिन, देखिए हमारे जीवन में बहुत कुछ हम लोग उतार चढ़ाव रहता है रोज का, तो हंसी मजाक चलता है, दुख भी चलता है, देखिए हर पल आते हैं, पर और माहौल भी ऐसा है कि कभी कभी बहुत सुनने में बहुत चीज़ें ख़राब आती हैं सुनने में, तो मन थोड़ा सा थोड़ा दुखी हो जाता है। तो हमेशा याद रखें कि कोशिश करें प्रतिदिन रोज़ कोई ना कोई ऐसा एक काम ज़रूर करें कि दिल खुश हो जाए। अच्छी कि जब सुबह उठें तो हमेशा कोई चीज़, देखिए नेगेटिव नकारात्मक चीज़ें तो बहुत सुनने में आती हैं, पर कोई ऐसे सकारात्मक कोई अच्छी पॉजिटिव चीज़ पढ़ें या किसी के साथ शेयर करें, जिससे कि आपने जो कुछ सीखा है उससे दूसरों को भी सीखने में मदद मिले और अपने भावी पीढ़ी को कोई जो है तो आप किसी को शिक्षा दे सकें। तो हमेशा याद रखें कोई रोज़ एक बात कुछ अच्छी सबसे बात करके कुछ शेयर करें तो थोड़ा दिल होता है ना वो खुश हो जाता है कि देखिए दुनिया में जहाँ दुख है तो अच्छा भी है। तो इस भाव से लेकर रोज़ अपना जीवन जिएं कि खुशियाँ बाँटें और अच्छी जो बातें हैं वो सबके साथ खुश रहें, मिलजुल कर रहें। और देखिए एक अच्छे चरित्र निर्माण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप खुद भी खुश रहें और आसपास भी सब में खुशियाँ बांटें। तो आज मैंने बहुत सारी बातें आप सबको कहीं, आशा करती हूँ कि कुछ ना कुछ आप अपने जीवन में कोई ना बात, ये इनमें से कोई ना कोई बात अपने जीवन में जरूर ढालेंगे और ख्याल रखेंगे कि आइंदा से कि ऐसी बात ना कहें कभी किसी को जिससे दूसरे। मन दुखी हो या उसके दिल को ठेस पहुंचे। और आशा करती हूँ आप सभी सब खुश रहेंगे, स्वस्थ रहें और हंसते रहें, खुशी बांटें, खुद भी खुश रहें, खुशी बांटें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने ये सब बातें मेरी सुनी। और संजय जी चलिए एक और अच्छा सा एक गाना हो जाए और आप भी सबका दिल खुश कर दें। चलिए गाना सुनते हैं।
0: जरूर अनुराग भाई, एक सुंदर सा गीत हमने चुन करके रखे हुए है और ख़ास करके वो गीत जो हमारे अपना अनाउंसर साथी के मुकाम से आप सुनेंगे, तो ज़रूर पहले उस गीत को और बढ़ेंगे फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

0: ये सुंदर सा आवाज आपने सुने हमारे कोलेग खास साथी शांता खेमाई जी की आवाज में। ये शांता जी, इसमें मैं सुन रहा था दो तीन गाना का मिलावट है ना?
1: जी संजय जी, इसको कहते हैं मैथिली।
0: मैथिली कहते हैं इसे।
1: हाँ, तीन चार गीत जो उसमें रेफरेन के साथ कुपलेट जोड़ दिया जाता है तो उसको मैथिली कहते हैं। मैथिली एक हैगा और एक है मैशअप है, एक है कॉफर।
0: ऐसा
1: ये सब तरीका हैगा जो गाना ऐसे गाते हैं।
0: और इस पे जब देखा जाए कि या अब गायक लोग ना, आप लोग गायक हो तो इस पे
1: है।
0: मुझे तो इसके कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी ये इतना सुंदर लगता है कि किस प्रकार से आप ये और कितने गाना को मिला करके एक में और जोड़ देते हैं।
1: और ये भी एक अच्छा बात है ना कि अब जैसे कराओका भी निकल गया है, कितने सालों से कराओका है, तो हमारा बुजुर्ग भी जो है वो उसको भी कैसे कहते हैं, मनोरंजन करने के लिए भी जो अपने यौंग यार में सब जो गीत गाते थे सुनते थे, तो कराओका भी एक मोहलक है दे दिया है कि वो सब है जो अपना दिल के बात जो है गीत के रूप में भी वो बता देते हैं।
0: गीत के रूप में बता देते हैं।
1: हाँ, अच्छा लगता है भी सुनने के लिए। और जो ना गाते हैं तो सुन सुन कर भी आंसू भर आते हैं उन सब की आंखों में। जी

बहुत बहुत धन्यवाद फौन हिंदुस्तानी रेडियो वाले जो श्रोता हैं, अपना समय निकालकर, अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको जो ज्ञान मिलता है अपने आप में उतारते, अपने लाइफ में उसको उतारते हैं, एडजस्ट करते हैं और उनको भी फ़ायदा होता है और दूसरों को भी होता है। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हो, जय जय।

और अंत में मैं ये बोलना चाहूंगी कि रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों ही भर जाते हैं। इंसान जन्म के बाद 2 वर्ष के बाद ही बोलना सीखता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में उसका पूरा जीवन लग जाता है। इन्हीं विचारों के साथ सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार।

0: जी मेरे प्यारे सुनने वालों, हमारे अनाउंसर साथी के साथ मैं भी आपसे आज के लिए इजाज़त ले रही हूँ। आपने साथ दी है उसके लिए धन्यवाद किया जाता है, और स्वीकार कीजिए बहुत प्यार के साथ शांता जी के प्यार भरी नमस्कार।
1: सनम चाहे जाए जिया तेरी कसम लागी छूटे ना।
2: सुनने वालों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग दिए शांता खेमाई जी, जो हमारे साथ स्टूडियो में थे, भाई राधे ग्लेन जी जो हमारा सहयोग दिए, और भारत से राजेंद्र सिंह जी, और हमारा संदेश लेकर और अनुराधा चंद्र जी जो अपने ओर से संदेश को रखे। आशा यही है कि कुछ न कुछ संदेश आप तक जरूर पहुंचे होंगे और जरूर अच्छा लगते होंगे। मैं हूँ आपका सेवक संजय, और आपसे विदा ले रहे हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं फ़ानिस्तानी रेडियो और यहाँ से हम सुनेंगे मिलकर फिल्म वीर जरा से निकाला गया ये सुंदर सा गीत कि मैं यहाँ हूँ।

खैर ज़रा से जो सुंदर सा गीत निकाला गया कि मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ अब दे से मोय फ्रूख मेदा कानी अब्सोल्यूट सेखन एक दो हेत लेकर उप मेघ माख एंड दैट माख एंड तेंस लोते इट इज़ योर दाग

फिल्म ताल के टाइटल सॉन्ग हमने सुने अलका याग्निक उदित नारायण जी की आवाज में। सो बी हैप्पी दैट्स व्हेन अदर लुक एट यू, बी हैप्पी व्हेन दैट अदर लुक एट यू, दे कम आल्सो हैप्पी टू।

जमाने में आए हो तो जीना, तो जीने की हुनर रखना हमें ज़रूर चाहिए, कि ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर रखना।

की आवाज में हम सब मिलकर सुने सुने वालों, और फिल्म का नाम है जन्नत। फिल्म जन्नत से ये सुंदर सा गीत निकाला गया है। और ओ, कुछ सोचूं तो तेरा ही ख्याल आता है, कुछ सोचूं तो तेरा ही ख्याल आता है, कुछ बोलूं तो तेरा ही नाम आता है। कैसे छुपाऊं अपने दिल की बात को, कैसे छुपाऊं अपने दिल की बात को, तेरी तो हर बात पर मुझे तो प्यार आता है।

यहाँ से एक बार फिर हमने साथ में मिलकर सुने के आवाज में फिल्म का नाम भूल भुलैया से जो हमने यहाँ साथ मिलकर सुने। तमन्ना है मेरी मन की, तमन्ना है मेरी मन की कि हर पल साथ तुम्हारा हो। जितने भी सांस चले मेरी जान, जितने भी सांस चले मेरी, हर सांस पर नाम तुम्हारा हो। दिल से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, दिल से निभाएंगे जब तक जिंदगी है, जब तक जिंदगी है मेरी जान, तुमको ही चाहेंगे।

इस बार हमने सुने अरिजीत सिंह जी के आवाज में जालिमा। दिल कहता है चुरा लो तुझे तकदीर से, दिल कहता है कि चुरा लो तुझे तकदीर से, क्योंकि दिल नहीं भरता है तेरी तस्वीर से। मोहब्बत का कोई रंग नहीं होता, मोहब्बत का कोई रंग नहीं होता, फिर भी वो रंगीन है। प्यार का कोई चेहरा नहीं होता, प्यार का कोई चेहरा नहीं होता, फिर भी वो हसीन है।

0: साथ में मिलकर सुने को सोनू निगम और श्रिया घोषाल के साथ में कि मैं अगर कह दूं तुम हो, हमारी आंखों में तुम हो, दिल में तुम्हारी तस्वीर है, तुम्हारे लिए दिल तो क्या, तुम्हारे लिए दिल तो क्या, जान भी हाजिर है। कितना प्यार करते हैं हम तुम्हें, कितना प्यार करते हैं हम तुमसे, ये कहा नहीं जाता, ये कहा नहीं जाता, बस इतना जानते हैं मेरी जान, बस इतना जानते हैं मेरी जान कि तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता।
1: लत मोहे ऐसी लागी

हम सब मिलकर सुने कैलाश खैर के आवाज में। तुम पूछ लेना सुबह से, तुम पूछ लेना सुबह से, यकीन ना हो तो पूछ लेना शाम से। ये मेरा दिल धड़कता है, ये मेरा दिल धड़कता है तो सिर्फ तुम्हारे नाम से।

इस बार हम साथ में मिलकर सुने अलका याग्निक जी से और कुमार शानू जो साथ में मिलकर हमको ये सुंदर सा गीत सुनाए। हमारी गलतियों से कभी टूट न जाना, हमारी गलतियों से कभी टूट न जाना, हमारी शरारत से रूठ न जाना, हमारी शरारत से रूठ न जाना। तुम्हारी चाहत ही हमारी ज़िंदगी है, तुम्हारी चाहत ही हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कभी हमें भूल ना जाना।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753562 तक सेफ न फेटा। फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

सुनने वालों, यहाँ से आपको हम लेकर चलते हैं सुनने के लिए श्री मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में कि जिंदगी क्या है, गम का दरिया है।

से तस्वीर कहाँ बनती है, पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है, किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, ये जिंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है।

भोली सी याद आई है। मेरे दिल का तू वो गाना है, मेरे दिल का तू वो गाना है जो दिल से मुझको गाना है। तुझे तुझे धड़कन में बसाना है, मेरे दिल तुझ पे ही मरता है, मेरा दिल तुझ पे ही मरता है। तू हकीकत है चाहे फसाना है, बस मेरा जीना का बहाना है, जीने का तरीका तुझसे मिलकर मैंने जाना है।

इतनी सुंदर से कहा है कि मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। तो आप मिल गए तो दर्द दिल का पता ही चल गया कि आपके सीने में भी एक दिल धड़कता है। कौन किससे चाहकर दूर होता है, कौन किससे चाहकर दूर होता है, हर कोई अपने हालात से मजबूर होता है। हम तो बस इतने जानते हैं, हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोहिनूर होता है।

वापस से निकाला गया है, जो पिक्चराइज किया गया है नेखन सेस्तख में, और लता रफी जी के आवाज में हमने यहाँ से सुने। गुजरती है कुछ रातें ऐसी भी, गुजरती है कुछ रातें ऐसी भी, खुद खुद से बातें करते हैं खुद के बारे में।

सारा दिल ये पुकारे आजा। लता जी की आवाज़ में हमने यहाँ सुने सुने सुने फन वालों, और फिल्म का नाम है नागिन। जी हाँ, फिल्म नागिन से हमने सुने लता जी की आवाज़ में। सुने वालों,

पर मैंने आपके लिए सिलेक्ट करके रखी हूँ, साजन बिना सुहागन की मधुबन खुशबू देता है। जी हाँ,

सुंदर मधुबन खुशबू देता है, वो तो सही है। रोटी के बारे में आपसे जरूर से कहूंगी कि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी की साइज लगभग सब घर में एक जैसे होते हैं।

हम रोटी कपड़ा और मकान से निकला गया है जो मुकेश जी और लता जी के साथ यहाँ से हम सुने हैं। सब कुछ बदल जाता है उम्र के साथ, सब कुछ बदल जाता है उम्र के साथ। पहले जिद करते थे, अब सब्र करते हैं।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 907 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, मैं आप सबको स्वप्न विज्ञान में से कुछ वृत्तांत सुना रही हूँ, यानी सपने, कि जो लोगों ने सपने देखे और उनको सपने आए उनका क्या महत्व था। पिता द्वारा पुत्रों का कत्ल। मैनचेस्टर शहर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि उसका पति उसके दो बच्चों को चेस्टर सिटी के भयानक खंडहर में जान से मार रहा है। वह चिल्लाकर नींद से जाग गई और पुलिस को साथ लेकर खंडहर ढूंढ निकाला। तलाश के बाद वहां से बच्चों की हड्डियां प्राप्त होने पर पति को जेल हो गई।

अब मैं एक और वृत्तांत आपके लिए रखती हूँ, मृतक पुत्र के जलने की चेतावनी। एक दिन रात्रि में सिंह मान फ्राइड के एक मित्र के बेटे का देहांत हो गया। सुबह अंतिम संस्कार हेतु रखे शव के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी और पहरेदार को वहां छोड़कर पिता दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए, जिसने एक स्वप्न में देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र उसके पास खड़ा हुआ कह रहा है, क्या मुझे ऐसे ही जलने दोगे? पिता ने जागकर बाहर आकर देखा तो एक मोमबत्ती गिरने से शव का कान जलने लगा था। थोड़ा विलंब होता तो शव के साथ वह मकान भी जल जाता।

सुनने वालों, अब मैं एक और आपको सपने के बारे में बताती हूँ जो टीपू सुल्तान को आया। टीपू सुल्तान मुगल बादशाह हुए हैं, एक सुल्तान हुए हैं बहुत बड़े, टीपू सुल्तान तथा कांच की खान। टीपू सुल्तान ने रात में देखा कि एक बूढ़ा कांच का एक पत्थर लेकर उसके पास आया और बोला, सेलन के पास जो पहाड़ है वहाँ कांच की खान है, यह कांच मैं वहीं से लाया हूँ। इस तरह सुनते ही उसकी नींद खुल गई और वहाँ कांच की खान मिल गई।

सुनने वालों, एक डॉक्टर फिशर हुए हैं, वो कहते हैं कि एक स्थान पर प्रेत आत्मा का होना, जब एक स्त्री एक विशेष स्थान पर सोती थी तो उसे एहसास होता था कि उस पर कोई झपटा रहा है। तलाश करने पर पता चला कि यह स्त्री जिस स्थान पर सोती थी उस स्थान पर एक मनुष्य ने एक नवयुवना का गला घोंटकर खून किया था। स्थान विशेष में मानवीय विद्युत कंपन लंबे समय तक रहते हैं। शमशान की भयानकता एवं देव मंदिर की पवित्रता उसकी साक्षी होती है।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ भगवान महावीर पर 14 स्वप्नों का प्रभाव। भगवान महावीर बहुत बड़े भगवान हुए हैं, उनको 14 सपने आए। भगवान महावीर के जन्म के पहले रानी त्रिशाला ने 14 स्वप्न देखे थे। पहले में ऐरावत हाथी, दूसरे में सफ़ेद बैल, तीसरे में शेर, चौथे में लक्ष्मी जी, पांचवे में फूलों की माला, छठे में पूरा चांद, सातवें में सूर्य दर्शन, आठवें में पानी से भरा कलश, नौवें में नील सरोवर, दसवें में बहता सागर, ग्यारहवें में सिंहासन, बारहवें में देवव्रत, तेरहवें में रतन राशि, चौदहवें में धुआं मुक्त अग्नि। भगवान महावीर का जीवन इन 14 स्वप्नों के अनुकूल स्वप्न के हर प्रतीक के अनुसार इस प्रकार था। हाथी धैर्य मर्यादा, एक बड़प्पन का प्रतीक, महान धर्मात्मा, अनंत शक्तियों का स्वामी, मोक्ष प्राप्त करने वाला, अनासक्त ज्ञानी, सुख शांति का उपदेशक, महान गुणवान, शांत गंभीर, त्रिकलाज्ञ एवं देवता। महावीर जी भगवान

ये है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, आप सब सुन रहे हैं फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। सुनने वालों, पिछले बार मैंने आप सबको फड़कने के बारे में बताया था कि अंग फड़कते हैं तो उन सब का क्या मतलब है, जैसे सिर का फड़कना, नेत्रों का फड़कना आदि आदि। तो आज हम चलेंगे कंधों का फड़कना कि जब कंधे फड़कते हैं तो उसमें से क्या क्या लाभ होता है या हानि होती है। कंधों का फड़कना, जब दायां कंधा फड़कता है तो बहुत शुभ, शीघ्र ही धन, वैभव और सम्मान और बिछड़े भाई से मिलन होता है। और जब बायां कंधा फड़कता है तो रक्त या वात संबंधी रोग होते हैं। पीठ का फड़कना, जब दाईं तरफ पीठ फड़कती है तो राज सम्मान मिलता है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। और जब बाईं तरफ पीठ फड़कती है तो अशुभ है, मुकदमे में लड़ाई में हार होती है। जब ऊपरी भाग का कंधा फड़कता है तो धन की प्राप्ति होती है। अब निचला कंधा फड़कता है तो बहुत से अनुयायी काम होते हैं।

घुटनों का फड़कना। सुनने वालों, हमारे घुटने जो हैं वो भी कभी भी फड़कने लग जाते हैं। जब दायां घुटना फड़कता है तो स्वर्ण प्राप्ति होती है, जब दाएं का निचला भाग फड़कता है तो शत्रु का सामना करना पड़ता है, और बाएं का निचला भाग फड़कता है तो कार्य पूर्ण होते हैं। सुनने वालों,

गर्दन का फड़कना। सुनने वालों, हमारी जो गर्दन है जिसे आप लोग नेक कहते हैं, वो भी कभी कभी फड़कती है। तो गर्दन के फड़कने से विदेश यात्रा उपरांत धन कमाकर कुशलतापूर्वक लौट आता है। कान का फड़कना। सुनने वालों, हम सब के कान भी कभी कभी फड़कते हैं, तो उसका भी कोई ना कोई मतलब होता है। जब हम लोगों का दायां कान फड़कता है तो हम लोगों को शुभ समाचार मिलते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब हम लोगों का बायां कान फड़कता है तो प्रियजन से मिलन मेल होता है। जब हमारे कान का पिछला भाग फड़कता है तो मित्र शत्रुवाद व्यवहार करते हैं।

बोहों का फड़कना, सुनने वालों बोहें कहते हैं वैन ब्रो को, वो भी हमारी कभी भी फड़कती हैं लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि वो कब फड़कती हैं। जब हम लोगों की दाई वैन ब्रो फड़कती है तो हमें इज्जत शोहरत मिलती है, जब बाई फड़कती है तो मित्र मिलन, अपने मित्रों से मिलाप होता है। गाल का फड़कना, जब गाल भी फड़कते हैं सुनने वालों, जब हमारा दायां गाल फड़कता है तो विलंब से स्वास्थ्य लाभ की स्वास्थ्य में लाभ हमें देरी से मिलता है, और जब बायां गाल फड़कता है तो काम में विघ्न बाधा तथा चिंताजनक समाचार, कन्या का जन्म या कन्या से शुभ समाचार मिलते हैं। अब जो दोनों समान फड़कते हैं तो अतुल धन की प्राप्ति होती है, तो हम लोगों को ढेर सारा धन प्राप्त होता है सुनने वालों।

ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सब सुन रहे हैं स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नाक का फड़कना, सुनने वालों जब हम लोगों का नाक फड़कता है तो हमें क्या क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि हम लोगों का नाक कब फड़कता है। व्यवसाय की वृद्धि होती है, किसी से झगड़ा होता है, आने वाले संकट रोग की सूचना मिलती है, अनेक प्रकार से सुख मिलते हैं।

सुनने वालों, अपने शरीर के सभी अंग फड़कते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो कब फड़कते हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ मुंह का फड़कना। हम लोग के मुंह भी फड़कते हैं सुनने वालों। आचार मिलता है, सुखों की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। होंठ का फड़कना, जब हम लोगों के होंठ फड़कते हैं तब हमें सुख समाचार मिलता है, शत्रुओं से समझौता होता है, हितेशी का आगमन होता है कि जो हमारा कोई अपना जानने पहचानने वाला है वो हमारे घर पर आते हैं।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ कि भोजन करते समय कौन कौन से शगुन होते हैं और उसमें से कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं। यदि भोजन करते समय सामने ही बिल्ली आ जाए तो शुभ नहीं होता, कुत्ते का रोना सुनाई दे तो अधिक अशुभ होता है। जब हम भोजन कर रहे हैं और कुत्ता रोता है तो वो शुभ नहीं होता सुनने वालों, अशुभ होता है। ग्रह क्लेश उपस्थित हो जाए, अन्न संकट है, रुदान का शब्द सुनाई दे, जब कोई रोता है तो स्वास्थ्य की हानि होती है सुनने वालों। उबकाई आने लगे, जब हमें खाना खाते खाते हम उबासी लेते हैं तो हमें अधिक नहीं खाना चाहिए, तो उसका मतलब है पेट भर गया हमारा। कुत्ता भौंकने लगे, अनाज की चोरी होती है, जब कुत्ता भौंकने लग जाता है तो अनाज चोरी होने का डर रहता है। काली चिड़िया शरीर पर बैठ जाए, सामान्य जब काली चिड़िया कभी शरीर पर बैठ जाए तो वो ना हानि है ना लाभ है सुनने वालों। पकती रोटी अधिक जल जाए, अन्न नष्ट हो, जब हमारी रोटी बनाते बनाते ज़्यादा जल जाती है तो हमारे अन्न का नाश होता है सुनने वालों।

सुनने वालों, जब हम लोग घर पर भोजन करते हैं तो क्या हमें जूते पहनकर भोजन करना चाहिए कि जूता खोलकर भोजन करना चाहिए कि जूता उतार के भोजन करना चाहिए? अब मैं थोड़ा सा वो आपको बताती हूँ सुनने वालों। जब व्यक्ति भोजन करता है तो अपने शरीर में एक विशेष ऊष्मा को संचित करता है। भोजन करते समय जो कैलोरी या ऊष्मा मुंह के द्वारा शरीर में जाती है तो उसमें एक विशेष विद्युत का निर्माण होता है। यदि इस विद्युत का पृथ्वी से संबंध हो जाता है तो उसे पूरा परिपथ मिल जाता है और वह जो भी भोजन करता है उससे पूरी शक्ति प्राप्त होती है। जब हम नंगे पांव बैठते हैं तो हमारे पैर पृथ्वी से स्पर्श करते हैं, फलस्वरूप हमें आर्थिक मिलती रहती है। परंतु जूते पहने होने पर चमड़ा विद्युत अवरोधक बन जाता है और भोजन करते समय जो ऊर्जा या विद्युत पैदा होती है उसे अर्थ न मिलने के कारण उसका प्रवाह विपरीत हो जाता है और जो भोजन किया जाता है वह विषैला बनकर शरीर को हानि पहुंचाता है। इस प्रकार जूते पहनकर भोजन करने वालों को गैस, कब्ज आदि रोगों की शिकायत बनी रहती है।

सुनने वालों, ये स्वप्न विज्ञान है। मैं आप सबको सुना रही हूँ सपनों की दुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम रात को सोने जाते हैं तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं उन सब का क्या मतलब है, कि वो शुभ हैं कि अशुभ हैं। सुनने वालों, जब हम रात्रि में सोने जाते हैं तो जब हम लोगों को शंख ध्वनि सुनाई दे, बैल की हुंकार सुनाई दे, वीणा का शब्द सुनाई दे, तो उन सब का शुभ मतलब है कि वो सब अच्छी चीज़ें हैं। जब हम अपने बेड पर बैठते हैं या चारपाई पर बैठते हैं, अगर चूहा दिखाई दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, घर में प्रसन्नता का वातावरण हो तो वो भी लाभकारी है। जब सब घर के सदस्य हंसते हैं और हमें लाभ मिलता है, हम लोगों को अच्छी नींद आती है। सुनने वालों, अगर पत्नी की आँख में आंसू हो तो वो अपशकुन है। गीदड़ बोले या कुत्ता भौंके तो चोरी का भय रहता है। रात को जब हम सोते हैं सुनने वालों, अगर कुत्ता भौंके तो उससे हमें चोरी का भय रहता है। बिल्ली या कुत्ता लेटा हो तो अच्छा नहीं होता। घर की पालतू गाय सहसा रो पड़े तो वो अपशकुन होता है। अगर घर में हमारे गायें हैं तो अगर वो रो पड़े तो वो अपशकुन कहलाता है। पलंग पर छिपकली पाँव की तरफ भाग जाए तो वो शुभ है। कोई पान या सुपारी लाकर दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, कोई सामने छींक दे, अच्छा शकुन नहीं है।

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

0: भी उपस्थित है तो स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार।
1: शांता जी प्यार भरी नमस्कार। पर शांता जी आपका आवाज मेरे ख्याल से ओके ही नहीं था बे, नहीं ये वाला मेरे ख्याल से।
0: और अब हाँ
1: अब तो आवाज ठीक
0: है, सिग्नल अब दिखा रहे हैं कि आवाज ठीक से जा रहा है। तो एक बार फिर यहाँ से स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार।
1: कहते हैं कि माइक्रोफोन ऑन करना।
0: एक बार फिर यहाँ से आपको हम बहुत प्यार के साथ ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में आपको स्वागत कहती हूँ और स्वीकार कीजिए यहाँ से सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार।

0: सुना लो, जुड़े हुए हैं भाई राधे जी। भाई राधे जी, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है और आपको और जो समय निकाल के हम लोग के साथ जुड़ गए हैं, नमन करता हूं।
1: सभी सुनने वालों के मेरा साधुवाद, नमस्कार, प्रणाम हो। और अभी जो हम प्रोग्राम में आपके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे, तो हम जरूर उम्मीद आशा करते हैं कि हम सब मिलकर के एक अनहेल फाइन आउटस्टैंडिंग हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं ये प्रोग्राम पंडित जी के साथ, शांता जी के साथ और अनेक अनेक खास्ता जो है उनके साथ हम लोग मिलजुल के ये प्रोग्राम सजाएंगे।
0: जरूर। और दोस्तों, अभी आपने भी सुन भी चुके हैं कि भाई राधे जी जो कि हम लोग का संदेश देने वाला कि जो विवाह संस्कार होता है ना शांता जी, विवाह संस्कार सभी बच्चों, सभी माताओं पिताओं यही इच्छा रखते हैं कि हमारे लड़के जो जाकर के सीता के तरह, राम के तरह और उनका विवाह हुए। और कहने के बात ये है भाई राधे जी कि अभी ये बात मैं थोड़ा हिसाब से कहना चाहता हूँ कि नसीब वाले के घर से बारात निकलते हैं और नसीब वाले के घर पर बारात आता है, इस पे आप क्या कहने वाले
1: हैं? सही बात है भैया, कर्म अनुसार सभी हो रहा है। और फिर भी जब पैसा है तो बराती है, और जब पैसा ना है तो ससुर दामाद भी कोई के ना कह लग सकत है ना। तो सभी मोह माया के खेल है। और जहां तक लक्ष्मी और नारायण है के आशीर्वाद है तो विवाह संस्कार मंडप में होई, और जब ओकर आशीर्वाद ना भैया तो चंद दिन के मेहमान है ना, ये दुल्हा दुल्हन एक साथ और तो दिखे उजा है हंसो एक वजह है सरमक्का, तो घर घर गृहस्थी न चलेगा,
0: ये ठीक नहीं ये होता।
1: ये सब चीज भी मिले है देखे के ना, वात हेल यमर इस मादत इस वेल दरियाली तेज फंद दख।
0: और अभी ये बात भी हो रहा था भाई कि हम लोगों ने अब विष्णु का रंग जो है जिस प्रकार से मौर बनवा, क्योंकि अभी तक मौर बनाया जाता है ना,
1: सही बात है,
0: जो मौर बनाया जाता है और जोड़ा जामा बनाया जाता है और यानी कि लक्ष्मी के रूप का और साड़ी आदि पहनाया जाता है, इस जो रंग है इस पे आप क्या संदेश डालना चाहते हैं? जो जैसे कि विष्णु जी के हम लोग जब से जानीला कि पीला होते थे ना, पीताम्बर कहा जाता है, और लक्ष्मी के और रूप जो क्या कहते हैं रंग लाल, तो उस पे हम लोग को परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हाँ अब दुकनिया में ई आला आयल है, दिट इज न्यू इन द मौद, पर देखा जाए कि अभी तलक तो वो रंग का और कितने कितने परिवार में है जो उस पे बहुत ध्यान देता है।
1: सही बात भाई, देखो दुकनियन में बहुत

0: ताज रंग बिरंग के मिलत है, बात सही है। तो कह दूसर फेशे पे है तो ओके किन के पहन लियो ना, लेकिन विवाह मंडप में प्रवेश करे खातिर तो है चाहे लाल,
1: चाहे लाल और
0: दुल्हन के वस्त्र
1: दुल्हा पीला
0: जो है वो लाल, वो शक्ति का स्वरूप है ना,
1: शक्ति का स्वरूप है
0: जी।
1: अब देखिए कि हम लोग जो कहीं जाए ला सत्संग में, तो हम लोग का टीका भी पीला कभी रहे, कभी लाल रहे है और कभी ख्राइस रहे, इसमें भी संदेश है ना।
0: सही बात है। और जैसे उपरिहित है, कौन कौन मार्ग से आप है, तो लाल टीका लगाएंगे, चंदन के लिए टीका लगाएंगे, गोपी चंदन लगाएंगे,
1: इस प्रकार से, यानी कि सब चीज में कुछ ना कुछ संदेश है। और कहने के तात्पर्य यह है कि शादी विवाह जैसे कि राम और सीता के तरह होते आए हैं हम लोग लेकर के, जो भारत में हमारे पुरखों ने और 150 साल पहले लेकर गए थे और अभी तलक कितने कितने परिवार में होते आए। कभी अब देखा जाए कि गत दिनों हम एक जनेऊ संस्कार में थे, तो किसी आकर के और कहने लगे कि भाई अरे अभी तक जनेऊ संस्कार हुए हैं, उसको वो इस बात को आश्चर्य हो रहा था। पर कितने होता है, कितने परिवारों में ऐसा संस्कारों का कार्य आगे यानी कि होते रहते हैं। और ऐसे ही हम लोग यही आशा रखते हैं कि हम लोग के कार्यक्रम, हम लोग जो अपना संस्कारों का कार्य है, इसी प्रकार से करते आगे बढ़ते चले जाए। हम लोग करेंगे तो हमारे बच्चों भी करेंगे, और हमारे बच्चों भी करेंगे तो उसके बच्चों भी करेंगे, और देखा जाए कि 4-5 पीढ़ी और देखत देखत पार हो गया ना श्रीनाम जो लेकर गए थे।
0: सही बात है भाई। देखो ये जनेऊ संस्कार जो आप कहे ना, कि उसमें मारक देवत है हम लोग लड़कन के, कि तो बच्चा ना बाटे छोटा लड़का, अब ये हाथ न्यू नदपी बढ़तेत अंदर होर अंदर फ्रांतोर लग है दिन वंच वोर्त आइंख लग फोर बरेत अप, या तो संन्यास लियो या तो तू गृहस्थ बनियो ना, और एक रह देख कैनस ओ फरत वो है वत एट लाइफ इज ये स्पिरिचुअल कैनस या मटेरियल कैनस। हां
1: क्लब बोले बोले बोले जनेऊ संस्कार के जो हम लोग कभी बोले उपनयन संस्कार या वेदांत संस्कार है, वंत ये क्राइग द मोगलिकहेड द टुगांग टू द वेदास
0: या
1: ओम फर्दर टू ओंटविकले।
0: सही बात।
1: और इन बातों पे सभी को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब कुछ कार्यक्रम को सुनने वाले कुछ आजी है, कुछ दादी है, कुछ नानी है, तो इन बातों पे अपने बच्चों के साथ बात करो। और जब संस्कार करेंगे तो हाँ ये इस बात को डर नहीं रहेगा कि अरे हमारे ना रहने पे हमारा संस्कार नहीं हो पाएगा। और ज़्यादातर लोग डर के मारा कहते कि हाँ हमारा संस्कार ना हो पाए कोई बात ना है इस पे। जब आप करेंगे, आप अपने बच्चों के साथ इसके बारे में बात करेंगे, आप अपने क्लाइंट केंद्र के बारे इसके बारे में बात करेंगे, तो आपका और ये अटल है कि आपका और कोई भी कार्य और आगे होते रहेंगे। भाई एक हम गीत चलाना चाहता हूँ जो आपके चुना हुआ है।
0: धन्यवाद।
1: तो हम रख देते हैं प्लेयर पे,
0: हम मिलजुल के सुने
1: और मिलजुल के सुनते हैं।

पैसा के गठरी शीस धरी और मिरंदा कंतोरो पहुंचाई। ले लो पापा पैसा धर लो, यही तो मेरा कमाई। पैसा लेकर पापा मिरंदा नकली कागज दिहिन थमाई क्या।

1949 समय जो आया बेटा ऐसा खेल रचाए, गवर्नमेंट जब कागज देखा सबको दिया चिताए। कंतोरों में पैसा नहीं है कि अब रोवत घर के जाए, हाय दैया हम ऐसन जनती लड़कन दे तो पढ़ाई क्या करना था।

एक अवसर जो फिर से आए सबको देता मैं चिताए। भूल चूक के माफ तो करना रंज देखो भजन बनाए। हाय दैया हम ऐसा जनती लड़कन देत पढ़ाई क्या करना।

0: ये सुंदर सा गीत हम सब सुने एक सुरीनाम का कलाकार भाई राधे जी, और क्या ये कलाकार का नाम पता और संदेश इसके बारे में आप रखना चाहते हो?
1: भाई हम यहाँ ना सुन लिए कौन संगीत आप वहां पर पेश किए हैं, तो हम इसके बारे में कुछ ना बता सकते थे।
0: हम आपको बस हाँ कनाल पे हम आपके स्कागल किए पर आप नहीं सुन पाए। अच्छा, ये सुंदर सा संदेश देखो, सुरीनाम के हमारे कलाकारों जो है अभी तक कुछ कलाकारों है जो यानी कि हम लोग के परंपरा पुराने बातें के लिख करके सुंदर रूप से अपना कला को और प्रदर्शन करते हैं। शांता जी, इस पे आपका क्या ख्याल है? ऐसा सुंदर सुंदर संगीतों, क्योंकि नित आलस सब पे अब पहले जैसे एलपी ही बनता है, सिंगल बनता है, वो नहीं हो पाता है ना, प्लाता साक बस्ताते ना है। आप ये सुंदर सुंदर गीतों कहाँ से निकाल करके लाते हैं?
1: कुछ कुछ हमारे प्राइवेट कलेक्शन में है, कारण के संगीत से हम उठीला, संगीत से सुतीला, संगीत धले हमरे खत एक बहुत बड़ा पूजा है, उसमें भी शब्द ब्रह्मा है, संगीत के कारण हम लोग बहुत ज्ञान हासिल कर सकेला, और इसे तो भी भाटा करेला और कुछ बांती के गाना भी है, वो सब मनोरंजन के वास्ते है, लेकिन भजन और स्तुति ये सब वगैरह वगैरह संगीत के माध्यम से भी मिल रहा है हम लोग के, तो हम इसे बहुत लगाव रखते हैं और फरसामलिंग हमारे पास है कुछ कुछ
0: इस प्रकार से। ओ भाई, और क्योंकि अभी हम बड़ा सुंदर सुंदर संदेश की ओर बढ़ने वाले हैं, अनुराधा जी जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं भारत से और कुछ ज्ञान के बातें लेकर के, पर कुछ हमारे इतिहास और जो हम इस समय बात कर रहे हैं कि विवाह संस्कार कैसे करना चाहिए, दुल्हा के नाच होना चाहिए, इन बातों पर हम लोग ध्यान दें। और अब देखा जाए कि कभी कभी हमारे जो जैसे कि आपने कहा भी, अब जैसे कि पहले शायद विवाह और सस्ते में हो जाता था और अब कुछ उसका भी दादा का मोल का समय हो गया है, पर क्या हम अपना जो परंपरा पे इन्वेस्टेयर करते हैं या हम दूसरे के दिखाने वाला चीजों पे इन्वेस्टेयर करने लगते हैं ताकि खूब हाँ महंगा हो जाए, खूब ऐसा दिखाए कि हाँ हमने एक शादी में गए, इस पे क्या ख्याल आपका?
1: बात ये है कि उसका अंतरात्मा में क्या नाचत है ना, वो जो मांगे दिखावा करे भैया तो और शुक्रो ढर भाई अपने कॉफी में चाय में तो और मीठा हुई दुनिया के दिखावे खातिर ना, लेकिन ये विवाह संस्कार जो है दैट इज सम हेयर स्पिरिचुअल, इट्स जैसे आप अब हम लोग कहते हैं ना कि जनेऊ संस्कार में आप गए थे, तो जनेऊ संस्कार में जो हम लोग के धागा मिलत है वो बस्तात आंख लगा द्री देला ना, उस पर भी देख सके कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, और फिर उस पे ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है,
0: देव
1: ऋण है ना, तो वहां पर हम लोग के कुछ न कुछ कि देखो बेटा कि 16 संस्कार में तो जनेऊ संस्कार भइल है, अब तो कहते हैं ज्ञान हासिल करे के दारना खाय आस गृहस्थ ऑफ ये केस फॉर संन्यास, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, आन खलीक है थे इवेंट है, तो इसमें हमारे देखे में दिखावा खतरनाक चाहिए करे के तो के जो चाहिए करे को ही कर ना, वांध डेथ एशिया और भविष्य और दैट इज नीट एन अफंटी फॉर वीकेंड
0: नहीं। और कहने के तात्पर्य यह है भाई, अब आप और हम और अब ऐसे सभी जो ये और धर्म क्षेत्र पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कहीं रामलीला हुआ करवाल जाए तो कहीं पर संस्कारों में सेवा में लगल हुए हैं, कहीं पर देखो शांता जी इधर भजन करवाते हैं उधर भजन करवाते हैं, रेडियो में जितने यहाँ पर और हमारे कॉलिग हैं सब कहीं कहीं, रोसिता जी जो कहीं तो नेल खरवा रहा है, और जॉनी भाई जो इधरेन इस एक्टिव बेसिक में अपन हिंदुस्तानी अपन हिंदुत्व के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए, या हम बस ऐसा भी कर सकते हैं कि घर पे बैठ के और टेलीविजन ले ले जो बटन दबाए तो मैं 300 कनाल से ज़्यादा होते या और जदवे होते होंगे और बस उसे देख करके अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं और कुछ अपना अपने शरीर से अपने के अपने संस्कार के लिए अपने सभ्यता के लिए अपने संस्कृति के लिए कुछ ना करें। तो इन बातों के लिए हम लोगों बैठे हुए रेडियो से और आपको ये संदेश कोशिश किया जाता है कि हम लोग कुछ ना कुछ आपके कानों तलक पहुंचा सके और कानों तलक जब पहुंचेंगे तो ज़रूर उस पर आप थोड़ा से कुछ कैसे कहेंगे शांता जी उसे कि कुछ ज़रूर कुछ तो कुछ करेंगे। मेरे ख्याल से शांता जी सोच में पड़ गया भाई।
1: भाई जी देखो हमारे निगाह में जो लड़का पैदा हुए है से है मेर मोख लखेदा हम लोग के दिमाग में दो दो वो हिंदू स्कूल है शाखा है हिंदी लेस है तो देखिए कितना लड़कन अब हिंदी लेस जा है हिंदू बासेस अंदरवेज फॉलो कर है और इसके कारण का है कि हम लोग जो अपन धरोहर लैली है वत ओंस धल रुख खरात इस वत ओंस फंडामेंट इस ना दी वेलवा अन द फॉलखंद जनरेशन दूर हेवन और इस पे का है कि जो हम लोग के रुख खरात जब चल गए ना तो हम लोग बिगाड़ के लौटा हो जाए खोए।
0: हाँ दोस्तों बस बिल्कुल जैसे भाई कह रहे देखा जाए भाई कि अब देखो जो हम लोग के यहाँ हॉलैंड में नई खतीन द्रियन तख्त से जो रखा गया बनाया गया हिंदी परिषद नई दलांत उसमें से मेर दान 30,000 getuigschriften uitgeschreven यानी कि हम लोग के जो अभी नहीं लिए हुए होंगे तो वो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि पछड़ गया क्योंकि कभी देर नहीं हुआ है पर अपने बच्चों को हिंदी ये संदेश हम लोग का भाषा कम से कम न रहे। हम ये बात पे विश्वास नहीं करते कि कोई कभी काल के करते हैं कि भाई वो लईफ है नई दलांत एन व दीन नई दलांत स्तप्रात ऐतरात मुझे अपना भाषा पर अपना जो हिंदी है हिंदुस्तानी है उसे नहीं भूलना चाहिए भी। और जैसे कि आपने वर्णन किया कि हमारे हिंदू स्कूल जो है तो हिंदू स्कूल अपना मेहनत जोर तोर से करते हैं कि हमारे बच्चों जो कम से कम कुछ हिंदू के लेकर के और आगे बढ़ते हैं ऐसा है कि नहीं।
1: सही बात है भाई। देखो एक दूसरा बात बात इफ स्टॉप या ना लिंक से ना रख सकता तो देखिए हु फेल यू हैज होल हियर एंड देन हाफ ना सेन और हिंदुस्तानी के यू हैज होल ना है ये सब बकड़न लोग चलावे है काहे कि बकड़ा लोग हम लोग के हिंदू धर्म के हिंदुस्तानी के यू हैज होल चलावे है वंस सीन भैया डेथ हैव द मेयर वार द फॉरन स्लेवन ना ता जो बकरवा जो के एको बुन अख्तखरों ना है वो गैल है खोच हाच के लाइल है यहाँ क्लिनिक खोलेल है यू खास होल खोले है सब चीज खोले है और बकरा लोग सब जा है सवेरे सवेरे सूर्य प्रणाम करे है मेडिटेशन करे है कोर्सेस देवे है लक्ष्मी अस्तकम करे है यहाँ पर दिनाख पे कितना इंस्टांसी से जो खातिस लस भी देवे है ना वारों और मैं सेल्फ तक क्यों ना उत्तेजित ले नहीं ताले नाले ना मटेरियल
0: मर मेंटल एंड फिजिक ओक वांट अब देखा जाए यहाँ पर दत्रा जो दवाई लिख दे भाई राधे जी तो जब दवाई जब कमती करने लगता है कमती करने पड़ता है दत्रा को तो अपोतेक वाला भी गुस्सा आने लगता है कि भाई अरे ये कैसे हो गया अभी हम लोग संदेश रखने वाले हैं और शांता जी भी एक और गीत चला देते हैं। शांता जी आपके क्या ख्याल है तो भाई राधे जी एक और गीत चला देते क्योंकि अभी अनुराधा जी जो हम लोग के साथ कनेक्ट होने वाले हैं आप सुनते रहना।

0: सुंदर सा गीत एक हमारे सूरीनामी कलाकार भाई राधे जी के कलेक्शन से निकाला गया। दोस्तों हम भाई राधे जी और भी संदेश रखने वाले हैं। राधे भाई और क्या सुनाने वाले हो आप
1: भाई जी? ये जो बैठक गाना हमारा है सरनाम के अंदर धरले हम लोग के खाते बहुत बड़ा दवाई है ना। जब काम से हम लोग घर आएला तब एक दो ही तीन गाना इसे सुन ले तो दिल में बहुत आनंद उठत है। और फिर भी आजकल तो देखत है अपने YouTube पे यहाँ यहाँ वहाँ जहाँ सब जगह चाहे क्वाको हो चाहे मिलन हो चाहे जहाँ बैठक गाना हम लोग के तो एकदम पनी अशोक जैसे बोले है दराई हुए है और लाइव परफॉर्मेंस हुए है अनेक अनेक कलाकार उत्पन्न हुए हैं। और हमारे बैठक गाना जो सिरनाम में हुआ था पहले और यहाँ तनी मनी परिवर्तन हो रहा है बाकी कोई बात ना है, मनोरंजन है और सब कोई चीज वाले चले है और बहुत आनंद है में है।
0: पर भाई इस पे मैं शायद विषय थोड़ा से मैं बदलना चाहता हूँ क्योंकि कुछ सुरनाम के गर्मी के ओर हम जाने वाले हैं। तो अब देखा जाए ये सुंदर सुंदर गीतों के साथ आप हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। सूरीनाम के बारे में उसके सूरीनाम में आप गाय गोरु पोसते थे?
1: हमारे पिताजी के पास तो गाय गोरु खसी बकरी सब रहा, मुर्गी हम लोग के सब के रहा ना। हम लोग तो सूरीनाम में शहर में ना रहते ही हम लोग पछवानी का रहते ही तो जमीन रहा दाना हच दा छोट मुख लखेद और घर में तो सवेरे सवेरे जो गाय के दूध दोहत है तो हम लोग खौलाए के पी के तब हम लोग जाते स्कूल और भाजी भात दूध सहित कभी कभी दही कभी कभी साढ़ी भात हम लोग खाए के तब जाते स्कूल।
0: पर भाई अब मन में कुछ और उठे हैं। मुर्गी आपने कहा कितने थे पिता के घर पे, बकरी भी थे और पर अब गत दिनों में एक अपना मित्र से बात कर रहे थे
1: जी।
0: तो कुछ बातें हम भूल गए, कितने प्रकार के मुर्गी होते थे? अनामू मुर्गी होते थे, पिरने की मुर्गी होते थे, अरे
1: रासफोरू
0: हाँ और अरे घर वाला ज्यादा
1: जी जी।
0: तो उन्होंने ये बात किया कि ये अनामू मुर्गी शायद मैं गलत कहते होंगे पर वो कैसा होते थे?
1: देखो उसके हम बहुत उकर बारे में ना बता पावे कारण के हम 9 बरिस के रह ली तब सरनाम छोड़ के हम लोग नहीं गई फैम से इवन तक में निधनान कह लिए। लेकिन हम जाने ला कि करिया वाला रहा मुर्गी, ब्रॉयन वाला रहा, उज्जर वाला मुर्गी रहा ना, बड़का छोटा सा रकम के रहा, अंडा देवे वाला मुर्गी लखोरन रहा और हमारा जी तो मुर्गी पोसा था वो लखोरन तो अंडा ले जाता है शहर में बेचे के तो ऐसे ऐसे सब के अपन काम रहा और गांव में बिकाता है जो उनको छोड़ के।
0: अब शांता जी इस पे जरूर कुछ संदेश रखने वाले हैं क्योंकि हाँ, और डोक्सी डोक्सा भी हुआ करते थे ना?
1: जी सही बात है।
0: और किस प्रकार की शांता आपके घर पे होते थे इन जानवरों?
2: हाँ तो ऐसे हम लोग छोटा छोटा रहे तब यानी यफ्रो और स्कूल हम लोग स्कूल भी खेले हुई मुर्गी के दरबा हम जाएंगे मुर्गी अनसंगे।
0: आप मुर्गी के पढ़ाते थे?
2: हाँ अरे छोटा रहिए तब जाने ढेर चीज देखिए तो मंगिए भी ओसने ना दून करे तब रास मुर्गी के दरबा हम लोग बैठ जाए तो रास मुर्गी के दरबा पार्त रहे और लखोरन जैसे राधे भाई बोले तो लखोरन के अपार्त रहा और लखोरन में इस ताल ब्रॉयन रहे
0: ऐसा होता है।
2: हाँ
0: और
2: डोक्सी अम्मा बाप एगो पेटी बनाए रहा तब जाए के खेत में से डेवका के खोता तूर के लावे यानी डेवका
0: हाँ हाँ हाँ।
2: तो कर डेवका खोतवा लाए के वही डोक्सी के पानी में जे धर दे तो डोक्सी के फरियारी रहत रहा
0: ओ देवका के खोता से खूब पेट भरते थे।
2: हाँ तो पनिया में धरिए तो देवको ने निकरे तो डोक्सियन खूब खाए नाच नाच के।
0: ऐसा भाई राधे इस बातों को पता था आपको?
1: नहीं ये बात के हमके तो पता ना था, कारण के हम लोग कहती जोका ना रहा
2: देखे तो जाय के स्पेशल उतके तूर के काट के लाई के डोक्सी के देवे तैदलक रहा डोक्सी वहां तो सब लड़का ना हम लोग तो छोट रही हम लोग जाए स्कूल उल तो हमा माई बोले ना इस सब चीज लड़का ना जाए करे लड़कन के जाए पढ़े के
0: ऐसा
2: तोर की ढेर चीज ढेर के उ मुंह डोक्सी ओक्सी डोक्सी ना रहा मन डोक्सी जब खवन छोड़ दिए रैन में रहे भी तो डोक्सी ढेर मोरसू करे तो
0: मोरसू करे तो
2: द रैन ओकर एकदम से पचा पच रहे और जो पानी बरस जाता पलो।
0: एक चीज और मैंने सुना था कि कोनो फिंगा वाला फोर फिंगा की फेफी
2: फिंगा
0: हाँ वैसा भी होते थे ना। पर राधे भाई शायद इस बात को भी आपको पता होगा कि कुछ कबूतर भी लोग अपने घर पे पोसते थे ना, जब हम लोग जब तनी जवान होने लगली तब मंगली कबूतर अपने घर पे पोसे, पर घर वाले माता पिता उसे कहते थे कि हाँ ये कबूतर जो जा करके घर के कुछ ले करके उड़ जाते हैं, घर में आमदनी नहीं होता या कुछ कुछ पुराने बातें जो शायद अब ख्याल नहीं आ रहा है, पर अभी ये कार्यक्रम को सुनने वालों शायद जो जिसको इस बात को पता होगा कि कबूतर काहे खात सब बोला था कि घर में ना पोसल जा। अब शांता तनी सोच में पड़ गए, पर ऐसे भी
2: राधे भाई साई जाना तो
1: देखो हमारे देखे में कि जैसे चिड़ई भइल है कबूतर भइल है ये सबके खपांगा खाप में धर के ना अच्छा है कि अरे नहीं गावल है गाना कि सोनवा पिंजरा में बंद भइल है राम चिड़े के गिरा उदास ना, यही पाए के गिरे है कि एक दूसर जीव के तो दुख ना पहुंचाओ एन एक दंग दत मुरेल अख्त खरोंदार फानेस फान कबूतर के तो कहे के वन ओके चाहेगा नतूर में रह के ओके चाहेगा उड़े के चाहे पत्ता खाई के फल वल खाई के तो रात दिन बंद कर ले रही है तब उगर घाटी ठीक ना है।
0: और शायद मेरे ख्याल से भी कुछ और रहा अच्छा भाई राधे, क्योंकि कहते थे कि हाँ ये घर का आमदनी आदि लेकर उड़ जाएगा या कुछ मर भूल गया हूँ। इसी प्रकार से कुछ जानवरों को घर में नहीं पालते थे लोग, और कुछ जानवरों जो जानबूझ के शिकारी लोगों ने अपने घर में पालते थे जैसे पिंगो पकीरा आदि, तो वो भी कभी काल के ऐसा ऐसा हादसा भी हो गया है कहीं कहीं परिवार में कि वारसा अख्तराफ स्पैत फनहादा।
1: हम जानी है कि लोग बेनवान से बंदर लायल है अपने घर में, वो कोई में पोसा था हर में खाना पानी देवा था और वो बंदर जब कांस पावे तो निकल के भाग जाए या तो काट ले के ना मैं ताल खफो फंदी हूँ। तो एक जाने के हम जाने उस सबके घर है बहुत बड़का रहना रहा तब हरद में बंदर के खाई देवा था तो बंदर एक दाई एगो लड़का क्या मुरिंग काट दे लोकर बहना एक कोचे बहना निकल के रहा एंड मुस्तर है मैं तालस दरों पंदरान और आज दिन तलक ओकर मुरी तनी टहरा है
0: हाँ। कोई कोई इस पे अब देखा जाए कि हम लोग का हरदम संदेश हमारे पुरखों ने रखते गए कि ये जानवर ये कुछ होते हैं पालने वाला जानवर ना, और कुछ होते हैं जो जैसे कि आप कह रहे थे कि चिड़िया आदि को और खुले आकाश में रहना है, और कुछ जंगली जानवर होते हैं, तो सबके अपना अपना स्थान होते हैं और कभी काल के और हादसा इसी प्रकार से हो ही जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है।
1: सही बात है।
0: क्यों ना हम एक और गीत की ओर बढ़ते हैं जो आपके चॉइस है और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए।
1: धन्यवाद।

0: जरा कह दो संवरिया से कि आया करे और ना जाया करे। संवरिया राधे राधे, आप कहाँ हो? संवरिया हाँ, संवरिया कह सकते हैं अपने अपना वेदर हेल्प को, और संवरिया भी कह सकते हैं अपना इष्ट देव के, ना?
1: सही बात है।
0: हाँ तो
2: आए राधे, हम सब यहाँ कार्यक्रम जो पहला भाग का समाप्ति करो।
3: भाई राधे, यहाँ कार्यक्रम जो हम सब पहला भाग के समाप्ति की ओर आकर पहुँचे हैं, आपको बहुत से धन्यवाद दिया जाता है, और यही आशा रखता हूँ कि इसी प्रकार से आप हम लोग के कार्यक्रम में सहयोग देते रहना। हम देख रहे हैं भारत से राजेंद्र सिंह जी इस समय हम लोग के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, तो हम उसे अंदर लाते हैं, और आपको बहुत से धन्यवाद दिया जाता है कि आप हम लोग के सहयोग
1: के बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम नमस्कार।
3: नमस्कार।

0: घटती जाए रे। और जैसे कि सुनने वालों, अभी आप सुनने वाले हैं कि राजेंद्र सिंह जी, हमारे मास्टर जी, जो भारत से हम सब के साथ जुड़ गए हैं, और आज क्या संदेश रखने वाले हैं। तो मास्टर जी, आपको हार्दिक से स्वागत करते हुए, आप ही का कार्यक्रम हम सब बना रहे हैं यहाँ पर, और आज खास करके जो 60 साल के होने वाले हैं, उस अंतर्गत में हम सबको कुछ संदेश देने वाला है। सर्वप्रथम आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है मास्टर जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, फोन हिंदुस्तानी रेडियो को, श्रोताओं को, सबको मेरा नमस्कार। और जो ज्योति का प्रकाश है प्रोग्राम का जो नाम हमारा है, उसका जो प्रकाश ज्ञान जो मिलता है उसके लिए लोग सुनने के लिए उत्सुक बैठे रहते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, अभी जो आपने सुना है गाना उमरिया घटती जाए रे, तो जो उमरिया है वो घटती जाए कितना साल बाद, 60 साल के जब ऊपर हो जाते व्यक्ति तो ढलान पे आ जाता है एकदम। जैसे बचपन से 18 साल 20 साल गया तो चढ़ाव पे आया, फिर बीच की जो स्थिति रहती है 25 से 60 के बीच की, वो समान रहती है, बिल्कुल एक तरफ रहती है। 60 के बाद जैसे बचपन में चढ़ता है, बीच में रुकता है और बुढ़ापे में घटता है, तो ढलान पे आ जाता है। इसी के उपलक्ष में कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम ये है, जो नागरिक हैं 55 से ऊपर की, वो अवश्य इसमें ध्यान दें, और उनके लिए जो फायदा है, फायदेमंद है, वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। और सबने इसी उमरिया पे जाना है, हम लोगों ने भी जाना है, लेकिन जो अभी हो चुके इस उम्र पे उनके लिए विशेष है। तो आप जानते हैं कि मन चाहे कितना ही जोशीला हो, पर 60 की उम्र पार होने पर यदि आप अपने आप को फुर्तीला और ताकतवर समझते हो तो ये गलत है। वास्तव में ढलती उम्र के साथ शरीर उतना ताकतवर और फुर्तीला नहीं रह जाता। आपका शरीर ढलान पर होता है, जिससे हड्डियां और जोड़ कमजोर हो जाते हैं। पर कभी कभी मन भ्रम बनाए रखता है कि ये काम तो मैं चुटकी में कर लूंगा, पर बहुत जल्दी सच्चाई सामने आ जाती है, मगर एक नुकसान के साथ। सीनियर सिटीजन होने पर जिन बातों का ध्यान रखा जाता है, ऐसी कुछ टिप्स मैं दे रहा हूं इस कार्यक्रम के द्वारा। धोखा तभी होता है जब मन सोचता है कि कर लूंगा और शरीर करने से चूक जाता है, परंतु एक एक्सीडेंट और शारीरिक क्षति, ये क्षति फ्रैक्चर से लेकर हड्डी इंजुरी तक हो सकती है, यानी कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए जिन्हें भी हमेशा हड़बड़ी में काम करने की आदत हो, बेहतर होगा कि वे अपनी आदतें बदल डालें, भ्रम न पालें, सावधानी बरतें, क्योंकि अब आप पहले की तरह फुर्तीले नहीं हैं। छोटी सी चूक कभी बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। सुबह नींद खुलते ही तुरंत बिस्तर छोड़ खड़े न हो, क्योंकि आंखें तो खुल जाती है मगर शरीर और नसों का रक्त प्रवाह पूर्ण चैतन्य अवस्था में नहीं हो पाता। पहले बिस्तर पर कुछ मिनट बैठे रहें और पूरी तरह चैतन्य हो लें। कोशिश करें कि बैठे बैठे ही स्लीपर चप्पलें पैर में डालें, और खड़े न होने पर भी मेज या किसी सहारे को पकड़कर ही खड़े हों। अक्सर यही समय होता है डगमगा कर गिर जाने का। गिरने की सबसे ज्यादा घटनाएं वॉशरूम या टॉयलेट में होती है। आप चाहे अकेले हो या पति पत्नी साथ हो, संयुक्त परिवार हो, लेकिन संयुक्त मतलब ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन बाथरूम में अकेले ही होते हैं। यदि आप घर में अकेले रहते हैं तो और अधिक सावधानी बरतें, क्योंकि गिरने पर यदि उठ न सके तो दरवाजा तोड़कर ही आप यह सहायता पहुंच सकेगी। वह भी तब जब आप पड़ोसी तक समय से सूचना पहुंचाने में सफल हो सकेंगे। याद रखिए, बाथरूम में भी मोबाइल साथ हो ताकि वक्त जरूरत काम आ सके। देसी शौचालय की बजाय हमेशा यूरोपियन, जो यूरोप में शौचालय होता कमोड वाला, उसको ही इस्तेमाल करना चाहिए 60 साल की उम्र वाले व्यक्ति को लिए, क्योंकि जब वो नीचे बैठता तो उठने में दिक्कत होती है। यदि न हो तो समय रहते बदलवा लें, इसकी तो जरूरत पड़नी ही है, अभी नहीं तो कुछ समय बाद। संभव हो तो कमोड के पास एक हैंडल लगवा लें, कमजोरी की स्थिति में इसे पकड़कर उठने के लिए जरूरी हो जाता है। हमेशा आवश्यक ऊंचे स्टूल पर बैठकर ही नहाएं। बाथरूम के फर्श पर रबड़ की मैट जरूर बिछा कर रखें ताकि आप फिसलन से बच सकें। गीले हाथों से टाइल्स लगी दीवार का सहारा कभी न लें, हाथ फिसलते ही आप डिसबैलेंस होकर गिर सकते हैं। बाथरूम के ठीक बाहर मूर्ति मैट भी रखें, सूती मैट कॉटन का मैट, जो गीले तलवों से पानी सोख ले। कुछ सेकंड उस पर खड़े रहें, सिर फर्श पर बैठ पैर रखें।